एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। आज शुक्रवार है। शक संवत सन 1948 के आषाढ़ मास की पांचवी तिथि तदनुसार 26 जून सन 2026 है। इस समय सुबह के 5:56 और 30 सेकेंड्स हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। कुछ क्षणों में सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

आपके साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों के विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में

0: श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरस का चैनल है। इस समय सुबह के 6:05 हो रहे हैं। लीजिए अब सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदन पाठ।

लीजिए सुनिए आज का चिंतन। शास्त्रों में कहा गया है, प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ ईश्वर पर निर्भर करता है और कोशिश ऐसे करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर करता है। ये था आज का चिंतन। आइए सुने भक्ति रचनाएं।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन झरोखा के अंतर्गत प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हमारा अगला कार्यक्रम है श्री रामचरित मानस गान भाग 231। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार है वायलिन वादक SL कंडारा। प्रस्तुति मनीषा जैन की। पुराने फिल्मी गीत सुनिएगा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुबह 7 बजे से। हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम 7:30 पर। पर 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष। 8:30 कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 8:30 पर। पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा संगीतकार इलैया राजा पर। दस बजे पिटारा के अंतर्गत हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण होगा।

रंग तरंग, ये कार्यक्रम दिन में 11 बजे से 12 बजे कार्यक्रम यादों की महफिल, दिन में 1 बजे कार्यक्रम होगा सुरीला सफर, इसमें हम शामिल करते हैं श्रोताओं की टिप्पणियां भी। वंदे मातरम एक जय घोष, ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे 2:15 पर, ये पुनर्प्रसारण होगा। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम सदाबहार नगमे, फोन इन कार्यक्रम हेलो सहेली का प्रसारण होगा दिन में 3 बजे। पिटारा के अंतर्गत शाम 4 बजे गीतों भरी कहानी सुनिएगा, उन दिनों की बात है, लेखक अरुण शेखर, प्रस्तुति रमेश गोखले की। छाया गीत कार्यक्रम शाम 5 बजे, ये पुनर्प्रसारण होगा। वैसे आप सुनते हैं रात 10 बजे कार्यक्रम छाया गीत, 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने, 6:35 पर कार्यक्रम संध्या रंजन का प्रसारण होगा। शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में होगी श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। फौजी साथियों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया जाएगा शाम 7 बजे से। इंद्रधनुष के अंतर्गत शाम 7:45 पर सुनिएगा प्रोग्राम गुलदस्ता। रात 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनिएगा नाटिका बजट एक कमाओ बीवी का, लेखन मनोहर वर्मा का है, निर्देशन गंगा प्रसाद माथुर का। चित्रलोक कार्यक्रम रात 8:15 पर। आपके लिए ये कार्यक्रम सुनिएगा रात 9 बजे से। रात 10 बजे आप सुनते हैं कार्यक्रम छाया गीत, ढलती जाए रात, ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे रात 10:30 पर। झरोखा में ये थी रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान भाग 231। प्रसंग है अयोध्या कांड।

अयोध्या लौट जाने के लिए श्री राम के आग्रह भरे वचन सुनकर राजा जनक तथा मुनिवर वशिष्ठ को कुछ भी कह सकने में संकोच होता है। भरत गंभीर असमंजस की स्थिति में है। एक ओर हृदय में श्री राम के लिए प्रेम और आदर का सागर उमड़ रहा है तो दूसरी ओर है स्वर्गीय पिता तथा स्वयं श्री राम के वचन की मर्यादा पालन का दायित्व। अंत में धैर्यवान भरत के स्नेह जनित शोक संताप पर विवेक ने विजय पाई। हाथ जोड़कर उन्होंने बड़ों से क्षमा याचना करते हुए श्री राम से कहा, हे नाथ, आप माता पिता मित्र गुरु परम हितैषी तथा अंतर्यामी हैं। ऐसे स्वामी का मैं ऐसा द्रोही हूं जिसका कोई सानी नहीं। मोह के वशीभूत होकर मैं पिता और आपके वचन का उल्लंघन कर यहां आया हूं। आपने मेरी ढिटाई को भी स्नेह और सेवा मान लिया, मेरे दोष को

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान भाग 231, प्रसंग था अयोध्या कांड।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी।
1: सभी संगीत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है और स्वागत है पंडित एसएल कंडारा जी का, तबला संगतकार श्री संतोष मिश्र जी का भी। पंडित जी, आज राग रागेश्री की बारी है।
2: अच्छा,
1: रागेश्री की चर्चा में इस राग के बारे में क्या हमें बताएंगे आप, इसका आरोह अवरोह और इसकी खूबसूरती?
2: जी, रागेश्री एक बहुत ही मधुर प्रकृति का राग है और बड़े रागों में भी इसकी

0: गणना होती है छोटे रागों में भी, छोटे रागों से मतलब लाइट अंग भी इसका बहुत अच्छा है।
1: जी जी,
0: जो सुगम संगीत में बहुत इसका इस्तेमाल होता है, इसके फिल्मों में भी कई गाने बने इस राग पे।
1: जी,
0: क्लासिकल म्यूजिक में राग रागेश्री के लिए मैं आपको इसके आरोह अवरोह बजा के स्पष्ट करता हूँ, फिर एक छोटी सी रचना रूपक में सुनाता हूँ।

इसमें गंधार शुद्ध, मध्यम शुद्ध, पंचम बहुत अल्प, फिर धेवत शुद्ध, निखात कोमल और फिर सात तार सप्तक का, ये आरोह हुआ इसका। अवरोह ऐसा है, तार सप्तक का सा, फिर कोमल निषाद, फिर धैवत शुद्ध, फिर अल्प पंचम लगता है कभी कभी, ज्यादा नहीं लगता, प्रोमिनेंट नहीं है, बहुत बहुत कम, और मध्यम प्रोमिनेंट है, शुद्ध मध्यम, गंधार और रिखव। और इसका जो मूल चलन है इसमें

0: क्या बात है पंडित जी, इस सुंदर सी बंदिश को सुनने के बाद रागेश्री राग पर आधारित गीत अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं जो मन्नदा की आवाज में है।
1: अरे बहुत सुंदर गीत है वो।
0: जी, फिल्म का नाम है देख कबीरा रोया।
1: जी जी, कौन आया
0: मेरे मन के द्वार।
1: मन के द्वार,
0: आइए सुनते हैं।

0: देख कबीरा रोया। इस फिल्म से रागेश्वरी राग पर आधारित गीत आप सुन रहे थे श्रोताओं। मन्ना डे की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल और मदन मोहन का संगीत। इसी के साथ वायोलिन का विहंगम संसार श्रृंखला की ये कड़ी अब यहीं समाप्त हो रही है। श्रृंखला की अंतिम कड़ी में आपसे कल फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 9वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने, तबला संगति संतोष मिश्रा की।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनी

0: की शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि
2: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 7 बजे हैं। आइए अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम नमस्कार अलवर। तो हेलो जी, नमस्कार। देखिए एक बार फिर से एक नया दिन और कार्यक्रम नमस्कार अलवर का एक और नया अंक, एक और नया एपिसोड लेकर आप सभी के सामने, आप सभी का अपना दोस्त सावन कुमार फिर से हाजिर हूं। मुझे ये पूरा उम्मीद नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और रेडियो प्रोग्राम्स का मज़ा उठा रहे होंगे। और इसी तरीके से अपने बारे में अगर बात करूं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं भी बहुत अच्छा हूं आप सभी की दुआओं से। तो चलिए साथियों, आज वापस से एक बार कार्यक्रम में मिल रहे हैं। तो कार्यक्रम में किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, किन किन चीज़ों के बारे में जानना आवश्यक है, और हर बार एक नया मुद्दा उठाते हैं, एक नई चीज़ के बारे में जानकारी करते हैं। तो आज किस चीज़ के बारे में जानकारी करने वाले हैं, आइए इस बारे में भी आपको बताते हैं। साथियों, आज 26 जून है और 26 जून का जो दिन होता है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी कि पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस और अवैध तस्करी यानी इनके रूप में मनाया जाता है, नशा निषेध दिवस के रूप में। और इन सभी चुनौतियों से निपटने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या ये चीज़ है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से आज के कार्यक्रम में बात करते हैं और इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो साथियों, मादक पदार्थों का दुरुपयोग, उनकी अवैध तस्करी आज के वैश्विक समाज के सामने सबसे गंभीर और जटिल चुनौतियों में से एक है, ये आप सभी को मालूम है। ये केवल एक समस्या बहुत छोटी समस्या नहीं है, दिखाई देने में आपको छोटी लग सकती है लेकिन एक व्यक्ति के जो स्वास्थ्य है उसको प्रभावित करने वाली समस्या नहीं है ये, बल्कि ये परिवारों को नष्ट करती है, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर देती है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को कमजोर करती है और वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा भी पैदा हो जाता है। इस भयावह संकट के प्रति दुनिया भर के लोगों को जागरूक करने और नशा मुक्त समाज के निर्माण के संकल्प को दोहराने के लिए हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध और अवैध तस्करी विरोधी दिवस मनाया जाता है। ये दिवस हमको ये याद दिलाता है कि नशीले पदार्थों का जाल कितना ज़्यादा गहरा है और इससे निपटने के लिए केवल कानूनी प्रयास ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके लिए एक सामूहिक संवेगात्मक और बहुआयामी प्रयास करने होंगे और एक दृष्टिकोण भी रखना होगा। देखिए, जब हम इसका

इतिहास और पृष्ठभूमि में जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस की स्थापना के पीछे एक बहुत लंबा इतिहास और वैश्विक रूप से उसकी चिंताएं जुड़ी है। 26 जून की तारीख का चयन भी ऐतिहासिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। ये तारीख चीन में अफीम के व्यापार के उन्मूलन के प्रयासों को समर्पित है। 19वीं सदी में ब्रिटिश व्यापारियों के द्वारा चीन में बड़े पैमाने पर अफीम का अवैध आयात किया जा रहा था, जिसने चीनी समाज को पंगु बना दिया। गुआंगडोंग में किंग राजवंश के अधिकारी लिनजेक्सू ने इस तबाही के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने 25 जून 1839 को समाप्त हुए कुछ दिनों के भीतर हुमैन गुआंगडोंग में लगभग 12,00,000 किलोग्राम अफीम को जब्त करके उसे नष्ट करवा दिया। इस घटना को अफीम युद्धों की शुरुआत और अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ पहली बड़ी संगठित लड़ाई माना जाता है। इस ऐतिहासिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए 7 दिसंबर 1987 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के माध्यम से हर साल 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध और अवैध तस्करी विरोधी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य नशीली दवाओं से मुक्त एक अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्यवाही और सहयोग को मजबूत करना था। तब से संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ और अपराध कार्यालय इस अभियान का नेतृत्व करता आ रहा है। अब वैश्विक परिदृश्य के अंदर हम इस चीज को देखते हैं तो नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी का जो दायरा है वो हर साल बढ़ता ही जाता है। UNODC के द्वारा जारी की जाने वाली वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट इस बात की गवाही देती है कि यह संकट किस तेजी से पैर पसार रहा है। दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी रूप में नशीले पदार्थों का सेवन लगातार कर रहे हैं। पिछले दशक की तुलना में इस बार 20% से अधिक की वृद्धि इसमें दर्ज की गई है। नशा करने वाले लोगों में से लगभग 4 करोड़ लोग गंभीर रूप से ड्रग का उपयोग उसके विकार या लत से पीड़ित होते हैं, जिन्हें तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है, पुनर्वास की आवश्यकता होती है, लेकिन उनमें से केवल 1% को ही ये इलाज मिल पाता है। वहीं पारंपरिक नशीले पदार्थों जैसे अफीम, गांजा, कोकीन के साथ साथ अब तो सिंथेटिक ड्रग्स जैसे कि फेंटालिन, मेथामफेटामाइन, एक्सटेसी का चलन बहुत ज़्यादा तेजी के साथ में बढ़ा है। ये दवाएं सस्ती, बनाने में आसान और अत्यधिक घातक होती हैं। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में फेंटालिन के ओवरडोज के कारण हर साल हजारों युवाओं की मृत्यु हो जाती है। नशीले पदार्थों का उत्पादन और उनकी तस्करी एक बहु अरब डॉलर का वैश्विक उद्योग बन चुका है। ये नेटवर्क इतना मजबूत और संगठित है कि कई देशों की सरकारों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ये खुली चुनौती देता है। दुनिया में अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन और आपूर्ति के दो सबसे बड़े और कुख्यात क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जहां से ये जो तस्करी है सबसे ज्यादा की जाती है, उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है गोल्डन क्रेसेंट, यानी कि स्वर्ण अर्धचंद्राकार। इसके अंतर्गत अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान आते हैं। ये क्षेत्र दुनिया में अफीम और हेरोइन के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर ड्रग कार्टेल अपना नेटवर्क चलाते हैं। वहीं दूसरा जो चीज है वो है गोल्डन ट्रायंगल, यानी कि स्वर्ण त्रिभुज, जिसके अंतर्गत म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के पहाड़ी क्षेत्र आते हैं। ये क्षेत्र दक्षिण पूर्वी एशिया में सिंथेटिक ड्रग्स और अफीम की तस्करी का एक मुख्य केंद्र है। इसके अलावा आधुनिक तकनीक ने अवैध व्यापार को और भी ज्यादा जटिल बनाया है। अब तस्कर खुले बाजारों के बजाय डार्क वेब, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स और क्रिप्टो करेंसी जैसे चीजों का उपयोग कर रहे हैं। इससे खरीदार और विक्रेता दोनों की पहचान छिपी रहती है, जिससे कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए इनको पकड़ना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। वहीं हम भारत में इस चीज का क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, अगर उसके बारे में बात करते हैं, उन चीजों को देखते हैं, तो देखिए भारत अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण नशीले पदार्थों की तस्करी के प्रति बेहद संवेदनशील है। भारत दुनिया के दो सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादक क्षेत्रों पश्चिम में गोल्डन क्रेसेंट और पूर्व में गोल्डन ट्रायंगल के बीच में स्थित है। इसे सैंडविच प्रभाव भी कहा जाता है। सीमा पार से ड्रोन और भूमिगत मार्गों के जरिए हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी पंजाब में एक बड़ी सामाजिक समस्या बन चुकी है। इसने वहां की युवा पीढ़ी को गंभीर रूप से प्रभावित किया है और इस बारे में हम सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। वहीं म्यांमार सीमा से सटे हुए राज्य जैसे कि मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड गोल्डन ट्रायंगल से आने वाले ड्रग्स की चपेट में है। हाल के वर्षों में अरब सागर, हिंद महासागर के रास्ते बड़े पैमाने पर ड्रग्स की जो खेपें हैं वो पकड़ी गई हैं, जो ये दर्शाती हैं कि समुद्री मार्गों का तेजी से उपयोग किया जा रहा है तस्करी के लिए। अब नशीली दवाओं के उपयोग के कारण क्या क्या होते हैं, चलिए इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये गीत।

तो साथियों, हम लोग बात कर रहे थे अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस और अवैध तस्करी के विषय में। इसमें हमने जाना कि ये नशा निषेध दिवस जो है, इसे मनाने के कारण क्या रहे, किस किस तरीके से ये हम लोगों को इफेक्ट कर रहा है, भारत पर क्या प्रभाव है, क्या इसकी संवेदनशीलता है। अब इसके बाद में एक चीज दिमाग में आती है कि नशीली दवाओं के जो दुरुपयोग हैं, इनके कारण क्या क्या होते हैं। तो देखिए, जब भी कोई व्यक्ति रातों रात नशे का आदि बनता है, तो क्या आपने ऐसा सुना है? नहीं सुना होगा, कभी भी नहीं होगा। इसके पीछे बहुत सारे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारण होते हैं, यानी कि व्यक्ति धीरे धीरे धीरे धीरे इस नशे के जाल के अंदर फंसता जाता है। ऐसा नहीं है कि आज सोए और कल सुबह उठते ही नशीले एक नशा करने वाले व्यक्ति बन गए, तो ऐसा नहीं है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जो बात आती है ना, वो आता है साथियों का दबाव। इसे कहते हैं पीयर प्रेशर। किशोरों और युवाओं में दोस्तों के साथ में तालमेल बिठाने या फिर कूल दिखने की चाह में पहली बार नशा चखने की प्रवृत्ति जो है, वो सबसे आम होती है। आप सभी लोगों ने महसूस किया होगा अपने समाज में, अपने आसपास के एरिया में। इसके बाद जो दूसरा नंबर आता है ना, वो आता है मानसिक तनाव और अवसाद का। इसके अंदर क्या है कि आधुनिक जीवन शैली में जो हमारा अकेलापन होता है, असफलता का डर होता है, पारिवारिक कलह होती है या फिर करियर का तनाव, लोगों को अस्थायी राहत के लिए एक नशे की ओर धीरे धीरे धकेलता हुआ जाता है। ये सभी कारण बहुत हद तक आप सभी लोग महसूस कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो कारण है, वो आता है फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का दुरुपयोग, यानी कि दर्द निवारक दवाओं जैसे कि पेन किलर्स और कफ सिरप डॉक्टर्स की पर्ची के बिना बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और इनकी लत बहुत आसानी से बन जाती है। और ये भी चीजें आजकल नशे का एक बेहद अच्छा साधन बनती जा रही हैं। यानी कि पहले लोग सोचते थे कि कफ सिरप से सिर्फ खांसी ठीक हो सकती है, लेकिन आज तो लोग उन चीजों का नशा कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके बाद अब चौथा जो कारण आता है, वो आता है ग्लोबलाइजेशन और आसान उपलब्धता, यानी कि सोशल मीडिया और स्थानीय पेडलर्स के नेटवर्क के कारण जो आज युवाओं के लिए नशीले पदार्थ है, उनको खरीदना बेहद आसान हो गया है। तो ये जो चीजें हैं, ये दुरुपयोग का कारण बन रही है। अब इसके बाद में यह आता है कि समाज, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर इस नशे की जो लत है, इस इलीगल जो पूरा कारोबार है, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, इसके बारे में जब हम बात कर रहे हैं ना, तो नशे का प्रभाव केवल नशा करने वाले व्यक्ति तक तो सीमित रहता ही नहीं है, ये हम सबको पता है। ये पूरे परिवार के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, पूरे समाज के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और इसका दायरा बहुत ज़्यादा व्यापक होता है। लेकिन सबसे पहला प्रभाव जो होता है, वो होता है स्वास्थ्य पर सबसे घातक प्रभाव।

नशीले पदार्थों के सेवन से मस्तिष्क की जो कार्यप्रणाली है वो प्रभावित होती है। इसके कारण बहुत सारी मानसिक बीमारियां, हृदय रोग, लीवर सिरोसिस और HIV एड्स दूषित सुइयों के इस्तेमाल के कारण ऐसी बहुत सारी घातक बीमारियां जो हैं वो फैलती हैं। ओवरडोज के कारण होने वाली असामयिक मौतें जो हैं वो परिवारों को तबाह कर देती हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो चीज आती है वो आती है सामाजिक और पारिवारिक विघटन। नशे की लत के कारण घरेलू हिंसा, तलाक और परिवारों का आर्थिक रूप से टूटना बहुत आम बात है। नशे की आपूर्ति के लिए पैसे नहीं होने पर लोग चोरी, डकैती और हत्या जैसे अपराधों का भी सहारा ले लेते हैं। नशीली दवाओं के कारण कार्यबल की उत्पादकता में कमी आती है। सरकारों को स्वास्थ्य सेवाओं, पुनर्वास केंद्रों और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर भी भारी बजट को खर्च करना पड़ता है, अन्यथा जो ये पैसा है ये अन्य विकास कार्यों में इस्तेमाल हो सकता था। अवैध ड्रग तस्करी से होने वाली कमाई का एक बड़ा हिस्सा आतंकवाद, हथियारों की अवैध खरीद और उग्रवादी संगठनों को फंड करने में भी किया जाता है। इसे नार्को टेररिज्म कहा जाता है, जो किसी भी देश की संप्रभुता के लिए एक सीधा खतरा है। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके बाद में हमारे सामने बात आती है कि इसका रोकथाम कैसे किया जा सकता है, इसका समाधान कैसे किया जा सकता है, क्योंकि अब हमने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जान ली, क्यों है, कैसे है, सब कुछ कर लिया। लेकिन अब सारी चीज़ें जानने के बाद में सवाल यही उठ जाता है कि किस तरीके से इसे रोका जाए। तो देखिए, इसके लिए एक बहुत ही बहुआयामी रणनीति जो है उसका इस्तेमाल करना होगा। वैश्विक महामारी से निपटने के लिए एक व्यापक और रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसे हम तीन जो पार्ट है उसके अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले तो नंबर पे आती है सख्त सीमा का नियंत्रण, यानी कि उन्नत तकनीकें जैसे होती हैं कि थर्मल इमेजर, ड्रोन्स और रडार का उपयोग करके सीमाओं पर जो गश्त है उसको बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरे नंबर पर जो चीज़ है वो है खुफिया जानकारी साझा करने के लिए इंटरपोल और विभिन्न देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच में समन्वय अनिवार्य होना चाहिए। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो चीज़ आती है, भारत में NDPS एक्ट जैसे कानूनों को और ज़्यादा कड़ा किया जाना चाहिए ताकि तस्करों में कानून का जो भय है वो बना रहे। इसके अलावा जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में और सामुदायिक स्तर पर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए। भारत सरकार का नशा मुक्त भारत अभियान इस दिशा में एक सराहनीय कदम है। नशे के आदि लोगों को अपराधी के रूप में नहीं देखें बल्कि मरीज के रूप में देखें। देश में पर्याप्त संख्या में किफायती और गुणवत्तापूर्ण नशा मुक्ति और पुनर्वास केंद्र जो है उनकी स्थापना होनी चाहिए, जिससे कि इन चीजों में कमी आ सके। जो लोग पूरी तरह से नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं उन्हें परामर्श, सुरक्षित चिकित्सा विकल्प और मानसिक सहयोग देकर समाज की मुख्य धारा में वापस लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो साथियों, बहुत सारे ऐसे ये चीज़ें हैं जिनकी सहायता से हम इस नशे जो है और अवैध व्यापार जो है इसके ऊपर रोक लगा सकते हैं। चलिए, इसके बारे में और भी थोड़ी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं ये गीत।

तो श्रोताओं, देखिए आज के प्रोग्राम में हम लोगों ने बात की अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस के विषय पर। नशा निषेध दिवस क्यों मनाया जाता है, किस किस तरीके से वैश्विक स्तर पर नुकसान कर रहा है, भारत में किस तरीके से नुकसान कर रहा है, क्या क्या

नुकसान हो रहे हैं, हम इन नुकसानों को किस तरीके से भरपाई कर सकते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने जानी। लेकिन लास्टली अब जब हम बात करते हैं ना इस दिवस के विषय में, तो देखिए ये चीज़ें हम लोगों को याद रखनी होंगी कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध और अवैध तस्करी जो है ये केवल एक दिन का औपचारिक आयोजन नहीं होना चाहिए, बल्कि ये हर नागरिक, हर परिवार, हर समाज और हर सरकार के लिए एक निरंतर चलने वाला संकल्प बन जाना चाहिए। नशा एक ऐसी दीमक है जो अंदर ही अंदर पूरे समाज को खोखला कर रहा है। यदि हमें अपनी युवा पीढ़ी को बचाना है तो और एक समृद्ध सुरक्षित भविष्य का निर्माण करना है तो भी हम लोगों को ड्रग्स को ना जिंदगी को हाँ, यानी कि से नो टू ड्रग्स से यस टू लाइफ, इस स्लोगन को अपने जीवन में उतारना होगा। जब तक हर व्यक्ति इस लड़ाई में अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेगा तब तक नशा मुक्ति विश्व का एक अधूरा सपना रहेगा। इस 26 जून को देखिए हम सब मिलकर भी एक स्वस्थ और नशा मुक्त समाज को बनाने का दृढ़ संकल्प लें और अपनी तरफ से हर वो कोशिश करें, हर मुमकिन कोशिश करें जिससे कि समाज नशा मुक्त हो सके। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम अपने स्तर पर क्या कोशिश कर सकते हैं, हम अपने स्तर पर यही कोशिश कर सकते हैं कि अपने आप को सुधारें। जब अपने आप को सुधारेंगे, हर व्यक्ति अपने आप को सुधारेगा, तो देखिए पूरा समाज जो है वो अपने आप सुधर ही जाएगा। तो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो अपने स्वयं के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। जब स्वयं के ऊपर काम करेंगे तो पूरे समाज के ऊपर काम होगा, पूरे देश के ऊपर काम होगा और बहुत अच्छा काम होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब देखिए बात फिर से वही आ जाती है कि बातें करने का तो आपसे बहुत अधिक मन है, मन करता है कि लगातार बातें करते रहें, अपने विचारों को साझा करते रहें, लेकिन अब देखिए घड़ी की जो सुइयां हैं वो ये इशारा कर रही हैं कि अब विदा ले ली जाए आपसे। तो जा रहे हैं इसी वादे के साथ कि एक बार फिर से इसी प्रकार से इसी समय पर इसी प्रोग्राम में फिर किसी दिन होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अपने दोस्त सावन कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार अलवर। अभी आपने सुना कार्यक्रम नमस्कार अलवर, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी अलवर का सर्विस का चैनल है। इस समय सुबह के 7:30 हुए हैं। आइए अब सुनवाते हैं आपको फिल्म संगीत।

0: कायाग्निक उदित नारायण और साथियों की आवाज में फिल्म साया से ये गीत आपने सुना। शब्द रचना रही आनंद बख्शी की और संगीत दिया अनु मलिक ने।
1: दी, ये देख कैसे?
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दीका,
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग।
4: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: I know pa, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: I know na.
6: RBI कहता है,
7: करो सही शुरुआत, बनो financially smart।

हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया और संजय छैल का लिखा ये गीत आपने सुना फिल्म चुरा लिया है तुमने से। आवाजें रही शान और गायत्री अय्यर और साथियों की। अली जी, कार्यक्रम का ये अगला जो नगमा है ये आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अशोका से। आवाजें हैं चित्रा सिंह और साथियों की, संगीत दिया है अनु मलिक ने और शब्द रचना है गुलजार की।

चित्रा सिंह और साथियों की आवाज में ये गीत हमने आपको सुनवाया फिल्म अशोका से। शब्द रचना रही गुलजार की और संगीत से सवारने का काम किया अनु मलिक ने।

जावेद अख्तर का लिखा, जतिन ललित का संगीतबद्ध किया और अभिजीत अलका याग्निक और साथियों की आवाज में गाया ये गीत, आपने सुना फिल्म चलते चलते से। और लीजिए फिल्म संगीत का ये अगला और आखिरी नगमा आपको सुनवा रहे हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाज में। फिल्म का नाम है फिजा, शब्द रचना है गुलजार की और संगीत से संवारने का काम किया है अनु मलिक ने।

अभी आपने सुना फिल्म संगीत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। कुछ क्षणों में सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा करें।

आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता

अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में

0: नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6000 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रुपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
2: जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा, नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
3: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी काराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
4: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी।

0: हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है। भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई NRC की जरूरत। लोकसत्य ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, NCERT की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक LPG आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरस का चैनल है। इस समय सुबह के 8:15 हो रहे हैं। आइए अब सुनवाते हैं आपको सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आपको सुनवा रहे हैं जगजीत सिंह की गाई हुई गजलें।

अभी आपने सुना सुगम संगीत एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 8:30 हो रहे हैं। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: सबदंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति

0: अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोबा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर, ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
2: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी, यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
3: Stephen, happy birthday to you!
4: Happy birthday to you, Stephen!
5: Thank you. How are you? Happy birthday, Stephen!
6: Thank you,
5: congratulations!
6: Thank you, John. Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
3: Oh, fine.
6: Thanks for coming in. Please come in. Please.
4: Oh, sure. Yes. Why not?
3: Come. Hey.
4: Come.
3: John, please come here.
4: Oh, sure.

जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था

प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुई।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
4: जी,
3: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
4: तो लीजिए सुनिए।
5: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently and they can communicate.
2: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर

0: उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
1: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
2: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ

0: ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
2: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
0: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
1: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
3: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
2: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
4: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
1: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
2: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहाँ स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
6: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
7: आग का गोला?
6: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ।
7: हाँ? ये कैसी पहेली है?

0: लाइट कर दे।
1: सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दू प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
2: सूरज।
1: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
0: बहुत आसान पूछते हो।
1: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं है।
0: अगली बार में बहुत मुश्किल।
1: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूँ, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियाँ तुम्हारे पास होती है ना?
2: हाँ।
1: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
0: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
1: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
3: वो तारा होता है।
1: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
4: वो रात और दिन भी बनाता है।
1: एकदम सही एकदम सही।
3: वो हमें धूप भी देता है।
1: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
0: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
1: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
0: विटामिन डी।
1: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत
3: और
1: अच्छे।
3: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: पेड़ों को खाना भी देता है।
1: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
0: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
1: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
0: हाँ।
4: जब ही तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
1: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
0: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
1: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
0: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
3: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
1: ना।
3: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
1: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता। तो बच्चों सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
0: वो बहुत बड़ा भी होता है।
1: बहुत बड़ा होता है
3: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
1: हम क्योंकि कहीं
0: दूर होता है, इसलिए
1: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
0: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
1: हाँ
3: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
1: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
2: सर्दी।
1: ऐसी वाली सर्दी ना। हाँ। अच्छी लगती है सर्दी।
0: हाँ। पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
1: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
3: नहीं
1: है। सूरज आग का गोला, लेकिन
2: सूरज आग का गोला लेकिन
1: फिर भी जीवन दाता है।
2: फिर भी जीवन दाता है।
1: धरती काटे चक्कर इसके।
2: धरती काटे चक्कर इसके।
1: लगे ये चलता जाता है।
2: लगे ये चलता जाता है।
1: सर्दी गर्मी बनते इससे।
2: सर्दी गर्मी बनते इससे।
1: ये दिन रात बनाता है।
2: ये दिन रात बनाता है।
1: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
2: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
1: सूरज ये
2: कहलाता है।
1: शाबाश सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
0: मौसी कर पहेली आज ही बता दो।
1: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है
3: जल्दी आना मौसी, आना।
1: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
0: हमने देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
1: मैं तो डर रही हूँ भाई। मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ?
0: वो भी दस पूछेंगे।
1: दस पहेलियाँ।

0: और चलो मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
1: मौसी
0: डर जाती
1: है। और आपके कुल मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
2: नहीं, 80 हो जाएंगे।
0: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुंचे मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आपने सुना प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM बैंड 103.1 MHz पर। ये आकाशवाणी अलवर का सरस का चैनल है। कुछ क्षणों में सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटाए। देश के विभिन्न हिस्सों में मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है और प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मॉनसून की पहली बारिश हुई। अगले 4 से 5 दिनों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत प्रदेश के प्रमुख शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में प्रस्तावित राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड को अधिसूचित करने की प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए हैं। इससे भवनों में ऊर्जा की खपत को कम किया जा सकेगा। मुख्य सचिव ने इस कोड के अनुपालन मैकेनिज्म को भी प्रभावी बनाने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश में भवन निर्माण के क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्रोत्साहन दिया जा सके। मुख्य सचिव ने यह निर्देश कल शासन सचिवालय में प्रदेश में एनर्जी ट्रांजिशन पर गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। मुख्य सचिव ने सरकारी भवनों में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि इससे राजकीय कार्यस्थलों पर बिजली की बचत को प्रोत्साहन मिला है। बैठक में ऊर्जा सचिव आरती डोगरा ने ग्रिड की स्थिरता, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के क्रियान्वयन सहित ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय रक्षा बलों का एक दल भारतीय नौसेना के 2 जहाजों के साथ समारोह में

भाग लेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। सुझाव साझा करने का आज अंतिम दिन है। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से रविवार को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जन्म से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और विशेष रूप से बनाए गए पोलियो बूथों पर ये दवा पिलाई जाएगी। इस दिन खुराक से वंचित रहे बच्चों को 29 और 30 जून को स्वास्थ्य कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज से उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने की 21 तारीख को आयोजित हुई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशूरा ए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य, न्याय और नेकी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। प्रदेश भर में इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले जाएंगे। पाली में बांस, लकड़ी और रंग बिरंगे चमकीले कागजों तथा कपड़ों से ताजिए बनाए गए हैं। जुलूस को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और यातायात मार्ग में बदलाव किया गया है। सवाईमाधोपुर में भी विशेष तैयारियां की गई हैं। मातमी धुनों के साथ विभिन्न मोहल्लों से ताजिए निकाले जाएंगे। इस दौरान समाज के लोगों ने छबील लगाकर ठंडे पेय पदार्थ पिलाने की भी व्यवस्था की है। चूरू में मुस्लिम समाज द्वारा बीती रात कत्ल की रात मनाई गई और शहर से 10 से अधिक ताजिए निकाले गए। इन जुलूसों में मोमिनों द्वारा हैरत अंगेज करतब भी दिखाए गए। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी की है। नए पासपोर्ट बनाने या पासपोर्ट को रिन्यू करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ये नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने का शुल्क ₹5,000 होगा। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने का शुल्क ₹3,500 होगा और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए राशि ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट का शुल्क ₹1,500 तथा 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट का ₹2,000 है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत की जा रही है। इस क्विज का उद्देश्य युवाओं को नशे के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ तथा नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। ये क्विज देश भर में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन क्विज में अगले महीने की 15 तारीख तक भाग ले सकेंगे। इसी कड़ी में प्रदेश में भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। सवाईमाधोपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और चिकित्सा विभाग की ओर से कल नशा छोड़ो खुशहाल जीवन जोड़ो थीम पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। सवाईमाधोपुर में बाघ संरक्षण के प्रयास बढ़ाने और वन्य जीवों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर मंथन के उद्देश्य से 5वां रॉयल रणथंबोर इंटरनेशनल टाइगर वीक ITW आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कंजर्व इंडियाज फाइनेस्ट टाइगर थीम पर आयोजित

0: आयोजित ये कार्यक्रम 28 जून तक चलेगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के वन्यजीव प्रेमी विशेषज्ञ शामिल होंगे।
1: 3 दिवसीय इस आयोजन में देश भर के नीति निर्माता, पर्यावरणविद, पर्यटन उद्योग और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि शामिल होकर बाघ संरक्षण तथा वन्य जीवों की सुरक्षा संरक्षण पर गहन मंथन करेंगे। इनमें पूर्व न्यायाधीश, पूर्व राज्यपाल, इकोलॉजिस्ट, फोटोग्राफर, मूवी मेकर अपने विचार रखेंगे। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरणीय सरोकारों को मजबूत करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को 11 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाएगा। कंजर्वेशन के अतिरिक्त वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, पेंटिंग प्रतियोगिता होगी तथा अग्रिम पंक्ति में तैनात वन कर्मियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत भी की जाएगी। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
0: प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मॉनसून की पहली बारिश हुई। राजधानी जयपुर में करीब 1 घंटे तक तेज हवाओं के साथ हुई बरसात से निचले इलाकों के घरों और दुकानों में पानी भर गया। कई स्थानों पर पेड़ गिर गए। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, कोटा, लूणकरणसर, दौसा, धौलपुर, झालावाड़ और जोधपुर सहित कुछ अन्य स्थानों पर भी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में आगामी 4-5 दिनों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि आज से जुलाई के पहले सप्ताह तक पश्चिमी तथा पूर्वी राजस्थान में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पीएमई ड्राइव योजना के तहत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटाए। देश के विभिन्न हिस्सों में मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। और प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मॉनसून की पहली बारिश हुई। अगले 4-5 दिनों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 9:10 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले प्रसारण।

थप्पड़ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। राघव चैतन्य की आवाज में शकील आजमी के बोल थे, अनुराग साइकिया का संगीत था। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों नाज मुहब्बत करते हैं।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

दोस्तों विविध भारती से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। दोस्तों नशा केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को खोखला कर देता है। ये एक ऐसी बेड़ी है जो व्यक्ति की उड़ान और उसके सपनों को छीन लेती है। अक्सर हम सुनते हैं कि लोग मस्ती या टेंशन दूर करने के लिए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन ये कब एक जानलेवा लत बन जाता है पता ही नहीं चलता। आज का दिन उन लाखों परिवारों के नाम है जिन्होंने अपने को इस लत के कारण खोया है, लेकिन आज का दिन सिर्फ गम मनाने का नहीं बल्कि संकल्प लेने का भी है, खुद को बचाने का और अपने परिवार को सचेत रखने का संकल्प। जो लोग इस दलदल में फंस चुके हैं उनका हाथ थामकर उन्हें सही रास्ते पर लाने का दिन भी है। दोस्तों नशीली दवाओं की अवैध तस्करी और दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में आपकी जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको अपने आसपास कुछ भी संदिग्ध लगे या अगर आपको लगता है कि कोई अपना मदद के लिए पुकार रहा है तो खामोश न रहें, मदद के लिए आगे आएं। नशा नाश की जड़ है और हमें मिलकर इस जड़ को काटना है। तो चलिए आज के इस दिन हम वादा करते हैं कि हम न सिर्फ नशा मुक्त भारत का सपना

रखेंगे बल्कि इसे पूरा करने के लिए अपनी छोटी छोटी कोशिश भी करेंगे। जिंदगी बहुत हसीन है दोस्तों, इसे किसी नशे की भेंट न चढ़ाएं, अपने हुनर को पहचानें, अपने सपनों को जिएं और नशे को कहें ना। आज 26 जून है और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 दिसंबर 1987 को स्थापित किया गया था, आज के दिन नशा मुक्ति के लिए। और इसका उद्देश्य है नशा मुक्त समाज का निर्माण करना, इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना सुनिए शिल्पा राव की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के बोल हैं, अमित त्रिवेदी का संगीत है।

0: इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना था, शिल्पा राव की आवाज, स्वानंद किरकिरे के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। यह है प्रोग्राम का आखिरी गाना।

एनिमल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। गरिमा के बोल थे श्रेयस पुराणिक का संगीत था। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: जिंदगी को गले लगाने की ये पुकार गुलजार साहब के लिखे एक गाने की है जो फिल्म सदमा से है, लेकिन यहाँ बातें गुलजार के बारे में नहीं, यहाँ बातें फिल्म सदमा के बारे में भी नहीं, बल्कि यहाँ बातें एक संगीतकार के बारे में जिसके नाम में आता है राजा।
1: आया है राजा लो गोरे लोगो, राजा के संग संग झुमलो झुमलो। आया है राजा
2: लो गोरे लोगो,
1: राजा के संग संग झुमलो झुमलो। शेरों का मैं हूँ शेरिया।

वो सही मायने में फिल्म म्यूजिक के राजा हैं। 1000 से ज्यादा फिल्मों में संगीत, 8500 से ज्यादा गाने और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक लंबी कतार जो सम्मान से उनके आगे सिर झुकाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे संगीतकार की बातें जो न केवल एक म्यूजिक कंपोजर है बल्कि एक गीतकार है, एक ऑर्केस्ट्रेटर है, एक म्यूजिक कंडक्टर है और है एक म्यूजिक मैस्ट्रो जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आज बातें इलैया राजा की। वो तो

इलैया राजा का जन्म 3 जून 1943 को हुआ था। मदुरई तमिलनाडु में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है थेनी, इसके पन्नियापुरम नामक गांव में जन्मा था एक बालक। नाम रखा गया आर ज्ञान थेसिकन। हालांकि जब इलैया राजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की तो उनके पिता रामासामी ने ज्ञान थेसिकन से बदलकर उनका नाम रख दिया राजैया। ये इसलिए क्योंकि गांव भर में इलैया एक बालक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और पूरे गांव के लोग उन्हें रासैया कहा करते थे। 14 वर्ष की उम्र में इलैया राजा अपने बड़े भाई पावलार वरदराजन की एक संगीत टोली में शामिल हो गए। ये संगीत टोली गांव गांव शहर शहर घूमती और अपनी संगीत प्रस्तुतियां करती। यही वो संगीत यात्रा थी जहां इलैया राजा ने सबसे पहले कोई धुन बनाई और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया।

जिंदगी की राहें बदली 1968 में इलैयाराजा अपने गांव से चले आए मद्रास, यानी आज का चेन्नई शहर। मकसद था संगीत सीखना। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन के एग्जाम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। क्लासिकल गिटार का एग्जाम उन्होंने दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। मद्रास में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा संघर्ष इलैयाराजा को करना पड़ा। उस दौरान दोनों भाइयों ने मिलकर कभी किसी नाटक में संगीत दे दिया, कभी मंच पर परफॉर्म करने लगे, कभी चर्च में कॉयर म्यूजिक में हिस्सेदारी कर ली, तो कभी कोई अलग अलग तरह के मशहूर हस्तियों के कार्यक्रमों में फिलर के रूप में इस्तेमाल हो गए। लेकिन आंखों में थे सुनहरे ख्वाब और संघर्ष का मादा था दिल में, तो डटे रहे। और इस तरह से इलैयाराजा की जगह बन गई जी के वेंकटेश की संगीत टोली में। यहां से इलैयाराजा के सीखने की और लगातार आगे बढ़ने की यात्रा शुरू हुई।

आगे चलकर इलैया राजा ने धनराज मास्टर नामक एक संगीतकार का शागिर्द बनना कबूल किया। यहां वो उनसे संगीत की बारीकियां सीखते रहे और यही वो हस्ती थी जिन्होंने इलैया राजा के नाम में आगे राजा जोड़ा। सन 1976 में फिल्म अन्नकिली में संगीत देने का मौका आया और इत्तेफाकन इलैया राजा बन गए संगीतकार। 1976 में अन्नकिली नामक फिल्म में जब उन्होंने संगीत दिया तो इस फिल्म का संगीत अचानक इतना लोकप्रिय हुआ कि तमिल सिनेमा में जैसे तूफान आ गया।

इलैया राजा ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की। सुनने वाले चकित रह गए कि ऐसे भी गाने बनाए जा सकते हैं। अचानक इलैया राजा की गिनती एक प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के रूप में होने लगी। इलैया राजा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जहां एक तरफ उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत की बारीकियों को अपने फिल्मी संगीत में अपनाया और एक अलग तरह का जादुई फ्यूजन तैयार किया।

बहरहाल अभी उनकी कुछ फिल्मों की बातें करते हैं। सन 1978 में उनकी फिल्म आई कज़ू हंदई, सन 1980 में आई मुडुपानी, इसी साल आई निजलगल, 1981 में नेत्रिकन नामक फिल्म आई और इसी बरस आई निजिंथई किलंथे, 1982 में कोजू कुवथु नामक फिल्म आई। चूंकि मेरा ताल्लुक दक्षिण भारत की भाषाओं से नहीं है, इसलिए अगर उच्चारण संबंधी कोई दोष होता है तो हम दक्षिण भारत के श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। इलैयाराजा की जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनमें शामिल है 1987 में आई फिल्म नायकन, जो उनकी 400वीं फिल्म थी, 1990 में आई फिल्म अंजलि। यहां महत्वपूर्ण यह है कि वो इलैयाराजा की 500वीं फिल्म थी। अब हिंदी फिल्मों की बात करें तो इलैयाराजा का हिंदी फिल्मों में आगमन हुआ कमल हासन के अभिनय वाली फिल्म सदमा के जरिए, जिसके निर्देशक थे बालू महेंद्रू। असल में ये फिल्म बालू महेंद्रू की तमिल फिल्म मुंदरम पिरई का हिंदी रीमेक थी।

0: सदमा की रिलीज के 4 बरस बाद इलियाराजा ने जिस फिल्म में संगीत दिया उसका नाम था कामाग्नि। उसके बाद राज सिप्पी की फिल्म महादेव में उन्हें संगीत देने का मौका मिला। सन 1996 में बालू महेंद्रू की फिल्म और एक प्रेम कहानी में उन्होंने संगीत दिया। वैसे आपको बता दें कि इलियाराजा ने रामगोपाल वर्मा की फिल्म शिवा के हिंदी संस्करण में भी संगीत दिया है और कमल हासन की फिल्म हे राम में भी उनका संगीत है। एक और हिंदी फिल्म है उनके संगीत से सजी हुई जिसका नाम है मुंबई एक्सप्रेस।
1: बंदर की डुगडुगी है, क्या शोर से बजी है,

साल 2007 में जब आर बाल्की ने फिल्म चीनी कम बनाई तो उसके लिए संगीतकार के तौर पर उन्होंने चुना इलैया राजा को, और यहां से आर बाल्की और इलैया राजा का एसोसिएशन शुरू होता है।

और फिर आई फिल्म शमिताभ, जिसके गाने लिखे स्वानंद किरकिरे ने, और इस फिल्म में था ये दिलचस्प गाना अमिताभ बच्चन की आवाज में।

आपको बता दें कि साल 2015 में जब इलैया राजा ने अपनी 1000वीं फिल्म में संगीत दिया तो जाने माने संगीतकार एआर रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मेस्ट्रो इलैया राजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा देते रहिए।

चूंकि इलैयाराजा के संगीत की बातें हो रही हैं और बातें हिंदी फिल्मों की भी हो रही हैं, तो आपको बता दें कि आशा भोसले से इलैयाराजा ने कुल 53 गाने गवाए विभिन्न भाषाओं में, और लता मंगेशकर से केवल 2 गाने उन्होंने गा...

चलिए राजा के जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, और वो ये कि जब इलैयाराजा अपना संगीत सीख रहे थे तब उनके ऊपर जर्मनी के क्लासिक संगीतकार बाख की शैली का बहुत गहरा असर पड़ा था। आगे चलकर इलैयाराजा ने अपना पहला फ्यूजन एल्बम बनाया हाउ टू नेम इट। इसके बाद उनका एक और एल्बम आया है जो वेस्टर्न क्लासिकल फ्यूजन एल्बम है और इसका नाम है नथिंग बट विंड।

यहाँ आपको इलैयाराजा के कुछ आध्यात्मिक एल्बम्स के बारे में भी बता दें। इस तरह का काम भी इलैयाराजा ने बहुत सारा किया है।

तांजलि राजविन रामन्ना मलाई एलिया राजविन ये सब ऐसे एल्बम हैं जिनमें आध्यात्मिकता का रस है। एलिया राजा का संगीत का ये सफर तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने कोने में इलिया राजा के प्रशंसक मौजूद हैं। अगर हम ये कहें कि इलिया राजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड हैं। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगमम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्रवीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त है इलिया राजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं।

0: वीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त है इलैया राजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पुरस्कार जब इलैया राजा को मिलते हैं तो पुरस्कार सम्मानित होते हैं।
1: देर से आते हैं, तेवर दिखाते हैं।

चूंकि इलिया राजा तमिलनाडु के एक ग्रामीण इलाके में पले बढ़े, इसलिए तमिल लोक संगीत जैसे उनकी रगों में बहता है। संगीत सीखते समय उन पर जो असर पड़ा वो पड़ा बाख, हाइडन, मोजार्ट और बीथोवेन का, इसलिए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी उनकी रगों में बहता है। और इसीलिए तमाम तरह की संगीत शैलियों को मिक्स करके जब वो संगीत बनाते हैं तो ये एक जादू सा रचता है।

इलिया राजा के निजी जीवन के बारे में आपको थोड़ी जानकारियां दे दें। इलिया राजा का विवाह जीवा से हुआ, जिनसे उनकी 3 संतानें हैं, कार्तिक राजा, भावथरिनी और युवान शंकर राजा। इलिया राजा के ये 3 बच्चे फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलिया राजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है, और चाहे वो कॉन्सर्ट्स में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते रहें, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलिया राजा ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहाँ तक कि अपने भाई को भी, इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलिया राजा का कहना है कि यह हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है, और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है। इलिया राजा ने अब तक 1523 फिल्मों में 8600 गाने बनाए हैं। तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। पूरी दुनिया में इलिया राजा 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहाँ इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना था। इस फिल्म का संगीत इलैयाराजा का है और इसके गानों से लोगों को बड़ा प्यार है।

संगीत दिया इलैया राजा ने, निर्देशन मणिरत्नम का था और ये मणिरत्नम की दूसरी फिल्म थी। सन 1985 इलैया राजा ने तमिल फिल्म पागल निलवू में संगीत दिया। ये वो फिल्म है जिसके जरिए मणिरत्नम ने तमिल सिनेमा में अपना कदम रखा था। 1985 में आई इदया कोविल, 1986 में आई मौन रागम, 1987 में नायकन आई जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, 1988 में आई अग्नि नटचित्रम, 1989 में आई गीतांजलि, 1990 में अंजलि आई और इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सन 1991 में इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार में भी भेजा गया था। इलैयाराजा और मणिरत्नम का साथ। सन 1991 में आई फिल्म थलपथी जो महाभारत के एक किरदार से प्रेरित थी।

अब आपको बताते हैं मणिरत्नम और इलैयाराजा के लंबे साथ के बारे में। सन 1983 में इलैयाराजा ने सबसे पहले मणिरत्नम की किसी फिल्म में संगीत दिया, वो थी पल्लवी अनु पल्लवी। ये एक कन्नड़ फिल्म थी। ये वो दौर था जब फिल्मकार मणिरत्नम सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1984 में मोहनलाल के अभिनय वाली उनारू में

जुलाई 1993 में इलैयाराजा ने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अपने सबसे बड़े और पहले काम को रिकॉर्ड किया था। इसे उन्होंने सिम्फनी नंबर 1 का नाम दिया था और इसे रिकॉर्ड किया गया था लंदन के प्रसिद्ध रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जाने माने कंडक्टर जॉन स्कॉट की निगरानी में। आपको बता दें कि रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा दुनिया के सबसे उत्कृष्ट पश्चिमी संगीत से जुड़े ऑर्केस्ट्रा में शामिल।

सन 2012 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इलैयाराजा को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। सन 2010 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इलैयाराजा की उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सन 2012 के समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में इलैयाराजा की फिल्म राम लक्ष्मण का एक गाना बजाया गया था। सही मायनों में इलैयाराजा एक लिविंग लेजेंड हैं। अपने काम के प्रति उनका जुनून, उनका समर्पण लाजवाब है। 9 भाषाओं में इतनी बड़ी तादाद में फिल्में करना और लगातार सक्रिय रहना और उत्कृष्ट काम करना उन्हें महान बनाता है।

0: संगीतकार इलैयाराजा का संगीत संसार लेकर आया था आज के फनकार। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि

0: बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45

FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं ये जरूरी संदेश।

0: युवाणी कार्यक्रम में हर बुधवार अब आप सुन सकेंगे अपनी पसंद का कोई भी गाना हेलो फरमाइश में। इसके लिए आपको डायल करनी होंगे हमारे स्टूडियो के नंबर और बताना होगा आपका मनपसंद गाना। हमारे फोन नंबर है 2940675। मोबाइल से कॉल करने पर एसटीडी कोड 0144 अवश्य लगाएं। हेलो फरमाइश के इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है बुधवार शाम 5:30 पर आपके अपने युवाणी में। सुनते रहें एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आपका अपना आकाशवाणी अलवर।
1: एफएम एंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। इस समय सुबह के 10:01 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले प्रसारण।
2: आपकी दुआएं, मेरा चूड़ी का काम है, मैं चूड़ी जो है साइकिल पर ले जाता हूँ।
3: अच्छा, साइकिल पर चूड़ियाँ लगा के आप बेचने जाते हैं?
2: जी हाँ, गाँव में जो रामपुरी के चारों तरफ गाँव है ना, उनमें जाता हूँ।
3: तो कैसे बांधते हैं चूड़ियों को साइकिल पे, गिरने का डर नहीं रहता है, चूड़ियाँ टूट जाएंगी तो?
2: अरे बांध के ले जाता हूँ मैं चूड़ी को बहुत अच्छी तरीके से।
3: अच्छा, फिर घर घर फेरी लगाते हैं?
2: अभी फिर मैं गाँव में जाता हूँ, फिर बच्चे खुद ही बता दे कल्लू ताऊ जी आ रहे हैं चूड़ी पहन लो, घर वाले बुला ले रहे हैं फिर।
3: अरे वाह, यानी आप बहुत फेमस हैं कल्लू ताऊ जी के नाम से ना?
2: जी।
3: अच्छी बात है।
2: चूड़ी बेचता हूँ कांच की।
3: कांच की चूड़ियाँ बेचते हैं, तो महिलाएं किस तरह की चूड़ियाँ ज्यादा पसंद करती, कौन सा रंग ज्यादा लेती हैं?
2: मैरून रंग ज्यादा पसंद करती हैं जी।
3: मैरून रंग पसंद करती हैं, चमकदार?
2: हाँ जी, मैरून रंग ज्यादा पसंद करती हैं, और रंग भी तो काफी हैं वैसे, बाकी ज्यादातर मैरून चलता है।
3: बहुत अच्छी बात है।
2: और कांच की चूड़ी है, शुभ मानते हैं इसको कांच को?
3: बिल्कुल, हमारे यहाँ सुहाग का प्रतीक मानते हैं चूड़ियों को, कांच की चूड़ियों को पहना जाता है।
2: जब मैं चूड़ी पहना देता हूँ तो नुचकारती है फिर चूड़ी, फेंटा नुचकारती है मेरा औरतें, ये सुहाग की चीज है ना
3: जी। तो एक चूड़ी ज्यादा देते हैं आप?
2: हाँ बिल्कुल, दो देता हूँ जी मैं तो।
3: अच्छा, दो दे देते हैं आप?
2: दो जो देता हूँ, जोड़ा ही भगवान तुम्हारा बनाओ रखे, जोड़ा ही मैं दे रहा।
3: अरे वाह, चलिए कल्लू जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बताइए अपनी पसंद का गाना।
2: फिल्म का नाम है जी आपकी परछाइयाँ, और आवाज है रफी जी, गाने के बोले ये है तमन्ना तेरे घर के सामने।
3: बहुत सुंदर, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी मैं जीतन यादव बड़ा गांव जिला गोना मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ मैम।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, दुकान पे बैठा हूँ, आपके नंबर मिला रहा था।
0: अच्छा, क्या दुकान है आपकी, किस तरह की?
1: किराने की दुकान है मैम।
0: अच्छा, सभी सामान रखते हैं?
1: जी मैम।
0: तो सुबह खुल जाती होगी कितने बजे, 8 बजे या 10 बजे?
1: 7 बजे खुल जाती है, रात के 10 बजे तक चलती है।
0: तो लंच में घर जाते होंगे या खाना साथ लेके आते हैं?
1: नहीं मैम, दुकान घर पे ही है और घर पे ही बैठा रहता हूँ, घर पे ही रेडियो है, विविध भारती का साथ है।
0: अरे वाह, फिर तो आपके मजे हैं कि जब हुआ एक बार घर के अंदर चले गए, खाना वाना खाया, पानी वानी पी, चाय वाय पी और आ गए, है ना?
1: जी जी।
0: मतलब घर के अंदर ही है तो और भी आराम हो गया है, घर के अन्य लोग भी आकर दुकान को संभाल लेते होंगे।
1: जी जी, और आने लोग आते हैं और विविध भारती को सुनते हैं और खासकर हेलो फरमाइश सुनते हैं तो बहुत आनंद आता है।
0: आपकी दुकान पे आके सुनते हैं श्रोता?
1: जी।
0: तो उन्हें बताइए कि मोबाइल पे न्यूज ऑन AIR ऐप जो है डाउनलोड कर लें और सुने।
1: जी मोबाइल पे सुनते हैं और दुकान पे ग्राहक आते हैं भी सुन के जाते हैं।
0: अच्छा लगता है हम लोगों को कि हमारे श्रोता इतनी शिद्दत के साथ हमें सुनते हैं। कैसा लगता है आप सबको हेलो फरमाइश कार्यक्रम?
1: अच्छा लगता है।
0: क्या अच्छा लगता है इसमें?
1: दोस्तों को श्रोताओं को मौका मिल जाता है बातचीत करने का और गाने अच्छे लगते हैं, सबसे बड़ी बात।
0: बिल्कुल सही कहा, बातचीत का मौका मिलता है और आपकी पसंद के गाने भी इसमें आते हैं, है ना?
1: जी।
0: तो चलिए आज आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज मजबूर फिल्म का गीत सुनना चाहता हूँ, रिम झिम बरसता जी बाहर पानी अंदर जी आग लगी है, मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में गीत है।
0: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये झमाझम गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार मंदाकिनी जी।
0: नमस्कार। अरे आपको पता है मंदाकिनी है इधर?
1: जी मैम आपकी आवाज से पहचान जाते हैं।
0: अरे तो हमारे कार्यक्रम बहुत शिद्दत से सुनते हैं, गहराई से सुनते हैं ना?
1: जी मैम।
0: नाम बताइए अपना।
1: जी मैम मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, जिला महोबा उत्तर प्रदेश से।
0: कैसे हैं सुनील जी?
1: बहुत बढ़िया मैम।
0: अच्छा
1: आप कैसे हो?
0: मैं भी अच्छी हूँ। अपने बारे में बताइए, क्या करते हैं आप सुनील जी?
1: जी मैम अभी तो हम भट्टों में काम करते थे राजस्थान में।
0: अच्छा राजस्थान में कहाँ?
1: जी भरतपुर में करते थे मैम।
0: और अब क्या कर रहे हैं इन दिनों?
1: अभी मैम छुट्टी हुई तो अभी घर आए, दो चार दिन हुए घर आए हुए अभी।
0: अच्छा तो भरतपुर में कैसा लगता है आपको, कैसा माहौल है वहाँ का?
1: जी मैम बढ़िया माहौल है, अच्छा लगता है वहाँ पे रहना, काफी साल हो गए अभी जाते जाते।
0: तो आपका परिवार कहाँ रहता है, महुआ में?
1: जी मैम।
0: तो आते जाते रहते होंगे ना, दिक्कत तो होती होगी अप डाउन करने से?
1: जी मैम दिक्कत तो होती है, अब ऐसा है कि 8 महीनों के लिए चले जाते हैं, तो 8 महीना वहाँ पे लगातार काम करना होता है भट्टों पे, तो 8 महीने अब फिर आपके प्रोग्राम तो हम 1 बजे रात से ही सुनना चालू कर देते थे।
0: अच्छा आपको टाइम मिल जाता था?
1: टाइम तो इतना रहता है कि हमको 1 बजे रात को उठना पड़ता था काम के लिए, तो आपका प्रोग्राम 1 बजे रात से ही चालू हो जाता था, फिर सुबह 11 बजे तक, फिर यहाँ पर 4 बजे से आपका प्रोग्राम चालू रहता था करीब 10 बजे तक रात को।
0: क्या बात है, इतना प्यार है आपको विविध भारती से कि रात को 1 बजे से कार्यक्रम सुनना शुरू कर देते हैं।
1: जी मैम आपका सखी सहेली का टेलीकास्ट दोबारा होता है 3 बजे रात को?
0: हाँ बिल्कुल।
1: तो रात में सुनना बहुत अच्छा लगता है आपका सखी सहेली कार्यक्रम।
0: अच्छी बात है आप लोग कार्यक्रम सुनते हैं, लेकिन ये जो काम आप करते हैं भट्टों का, ये बहुत मुश्किल काम नहीं है क्या?
1: जी मैम ये तो मुश्किल काम है, इसमें मेहनत बहुत है।
0: बहुत मेहनत है इसमें तो, और आपको बिल्कुल एक तरह से अपने आप को खपाए रखना पड़ता होगा।
1: जी मैम उसमें मेहनत काम ज्यादा पड़ता है,
0: और उसमें से भी आप समय निकाल कर विविध भारती सुनते हैं और खुश रहते हैं, बहुत अच्छी बात।
1: नहीं वो तो ऐसा है कि काम चलता रहता है, विविध भारती भी में चलता रहता है, उसके बगैर तो मन ही नहीं लगता हमारा, जो सुबह हुआ कि हम सीधा विविध भारती चालू कर देते हैं पहले।
0: अच्छी बात है,
1: सभी लोग सुनते हैं, फिर हम तो ऐसा है कि रात में बिजली रहती, काम बिजली में करना होता है रात को, तो एम्पलीफायर में लगा के रखते हैं, जब बिजली चली जाती है तो सिर्फ ब्लूटूथ स्पीकर में लगा के रखते हैं।
0: इतनी व्यवस्था कर रखी है आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। हमारे ऐसे जो दीवानगी वाले श्रोता हैं, दीवानगी की हद तक विविध भारती को प्रेम करते हैं, उनसे बात करके हमें अच्छा लगता है। बताइए सुनील जी आज कौन सा गाना सुनेंगे आप?
1: हेमलता जी का यह गाना है भीगा भीगा मौसम आया बरसे घटा घनघोर,
0: बहुत सुंदर। चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश।
0: हेलो
1: मंदाकिनी दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार, नाम बताइए अपना।
1: मंदाकिनी दीदी, मैं बोल रहा हूँ राम बाबू मालवीय, कोलार रोड भोपाल से।
0: स्वागत है आपका राम बाबू जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बढ़िया हूँ दीदी, आप सुनाओ आप कैसे हो और हमारे विविध भारती की संपूर्ण टीम कैसी क्या है?
0: सब अच्छे हैं, बताइए अपने बारे में। हाँ। राम बाबू जी,
1: अपनी ड्राई क्लीनिंग का काम है, लॉन्ड्री का, और वो काम वाम करते हैं और अपने परिवार के साथ में जो भी है जो दाल रोटी के लिए कमाते खाते हैं और बढ़िया आनंद मंगल से जितना परमात्मा ऊपर वाले देते हैं उसी में खुश रहते हैं और विविध भारती सुनते रहते हैं।
0: बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी इंसान को संतुष्ट तो रहना ही होगा एक हद तक, है ना? अगर हमारी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ जाएंगी कि हम असंतुष्ट रहेंगे तो फिर जिंदगी तो खराब ही होनी है, हमारा वर्तमान खराब ही होना है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: आज गाना सुनना चाहेंगे, फिल्म का नाम है पापा कहते हैं, उसमें गाना है की आवाज में, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते
0: ही। बहुत सुंदर गाना सुनना चाहते हैं आप।
1: वैसे दीदी आपके यहाँ के प्रोग्राम जो आपने नए शुरू किए वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, हमने चिट्ठियाँ भी भेजी है।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं?
1: संदीप कुमार मक्कड़, पींगा वाला चौक, गोरैया, पंजाब डिस्ट्रिक्ट जलंधर से आपका निमिष होता।
0: जी स्वागत है आपका संदीप जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं, आपका साथ है तो अच्छा, ना हो तो
0: और भी अच्छा।
1: जी हाँ जी हाँ।
0: बताइए क्या करते हैं संदीप जी आप?
1: मेरा वैसे फोटो फ्रेम और लेमिनेशन का काम है, इसके अलावा मैं गाता भी हूँ और लिखता भी हूँ।
0: अरे क्या गाते हैं और क्या लिखते हैं बताइए।
1: मैंने अपना हिंदी सॉन्ग रिकॉर्ड करवाया है, मैं लिखता भी हूँ, हिंदी सॉन्ग लिखता हूँ,

0: मैं सूफी सॉन्ग भी लिखता हूँ। गाने के कुछ बोल हैं वो सुनाना चाहूंगा।
1: गा के सुनाइए।
0: चलती ट्रेन में चलती चाय पीले पीले, तू मेरा हिंदू तो मुस्लिम भाई, पीले पीले आएगी सुस्ती मरेगी सुस्ती, एक्ट प्याली पीले भाई पीले पीले, ओ सब है मुसाफिर दिल के अच्छे, सब है मुसाफिर दिल के अच्छे, कान कहाँ पर उतरेगा भाई पीले, ओ चाहे मेरी गरम मसाला, पिएगा कोई किस्मत वाला, गोरा हो या बिल्कुल काला, खुल जाएगा दिल का ताला, कहता रहेगा कहने वाला, चलता रहेगा चलने वाला, सुन ले भाई सुन ले लाला, आगे मेरे फौजी भाई, तेरे पे कुर्बान में भाई, तुम हो सबकी जान हो भाई, बैठो तुम भी चाय है आई, बैठो तुम भी चाय है आई। ये है मेरे गाने के
1: क्या बात है।
0: और अंतरा सुनाया।
1: अच्छा जो लिखते हैं कैसी सूफियाना कविताएं लिखते हैं?
0: सूफियाना जैसे मैं सूफियाना भी सुनाना चाहूंगा। सब सियाने मिलते ने, सब सियाने मिलते ने, ते कमला कोई कोई, ओ बोलण वाले मिलते ने चुप कोई कोई, तांदा मेला मंदा मेला, तांदा मेला मंदा मेला, ते समझे कोई कोई, ओ सब सियाने मिलते ने ते कमला कोई कोई।
1: बहुत अच्छा लगा संदीप जी, अपने शौक को आगे बढ़ाइए, लिखते रहिए और इसी तरह गाते रहिए। अगली मुलाकात में फिर आपसे कोई नया गीत सुनेंगे, बताइए।
0: तो मेरी 30 तारीख को मैरिज एनिवर्सरी भी है, मेरी वाइफ ज्योति है उसके लिए डेडिकेशन है, उनको सुनाना चाहूंगा। फिल्म है बीवी हो तो ऐसी, गाना है फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक चेहरा जनाब।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: परम मालिनी दीदी, चारों सपन प्यार है, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: जी, मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्रीराधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका, बहुत पहले आपसे बात हुई भी है।
1: जी जी बिल्कुल, आपने सही पहचाना, मैं आपका वही जाना पहचाना श्रोता हूँ।
0: अच्छा, आपका नाम है शारदा
1: जी,
0: तो आपका ये नाम किसने रखा?
1: मेरे पिताजी ने रखा है, और मैं बसंत पंचमी के आसपास माँ शारदा की कृपा से प्राप्त हुआ था माता पिता को। तो मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, न छल न कपट न प्रमाद हूँ, मैहर की देवी माँ शारदा का प्रसाद हूँ।
0: बिल्कुल, वही हमने जानना चाहा कि ये जो नाम है महिलाओं का ज्यादा होता है शारदा, पुरुषों में बहुत कम ऐसे नाम सुनाई देते हैं, तो जानने की हमारी इच्छा हुई कि शारदा नाम क्यों रखा गया, कैसे रखा गया, तो आपने बता दिया है।
1: ये मेरे बहुत लंबे लंबे बाल भी हुआ करते थे लड़कियों जैसे, और मैं कॉलेज तक मैं यूं ही लंबे बाल रखा करता हूँ। गोरा चिट्टा रंग था मेरा और भोला सा चेहरा मासूम सा, तो बहुत से लड़के मुझे को लड़की समझ के लिए दोस्ती करते थे कि ये लड़की जरूर होगी।
0: हाँ।
1: लड़के की भेंट रहती है।
0: वाह, बहुत अच्छा लगा। देखिए, एक नाम के पीछे कितनी चीजें छुपी होती है ना, और अब कैसा लगता है आपको, अब लोग जानते हैं कि भाई ये तो शारदा प्रसाद जी हैं, शारदा कुमारी नहीं है।
1: सब लोग जानने लगे हैं शारदा प्रसाद प्रजापति हैं, और अब तो दाढ़ी मूछे सब हो गई हैं, तो लोग बात जानते हैं।
0: क्या करते हैं शारदा जी?
1: मैं घर पर रहता हूँ और बच्चों के साथ में आनंद पूर्वक आकाशवाणी और विविध भारती से जुड़ा रहता हूँ। रेडियो सुनना ही मेरा शौक है, दीवानगी है, जुनून है, और जब आकाशवाणी विविध भारती में हमारा फोन लगता है, सुरीली हर दिल की धड़कन, तो बस हृदय प्रफुल्लित गदगद हो जाता है। इतनी खुशी, इतनी प्रसन्नता होती है कि हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, बस ये तो महसूस करने वाली बातचीत होती है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और हम भी महसूस करते हैं अपने श्रोताओं की दीवानगी को। बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है विरासत है, कुमार सानू और चित्रा जी ने गीत गाया है, जावेद साहब ने लिखा है और अनु मलिक का संगीत है। गीत के बोल है, पायले छुनमुन छुनमुन, झांझरे रुनझुन रुनझुन,

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ जी दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मंदाग्नी जी बोल रही है?
0: हाँ जी हाँ जी
1: जी जी, गजराज ज्योति बात कर रहा था, रेला राजगढ़ ब्यावरा मध्य प्रदेश से।
0: अरे स्वागत है आपका गजराज जी, कैसे हैं?
1: दीदी बहुत अच्छे, मुझे आपकी जो आवाज है ना बहुत प्रिय लगती है।
0: क्या बात, ये तो आप लोगों का प्यार।
1: और शायद मैंने दीदी आपको बीकानेर से भी सुना है।
0: बिल्कुल सुना होगा, आप लोग तो वैसे भी दीवाने हैं आकाशवाणी के, रेडियो के, और हमारे श्रोताओं की वजह से ही तो देखिए ना आज आकाशवाणी कितना आगे निकल गया है।
1: जी जी जी,
0: बताइए गजराज जी आप क्या करते हैं, अपने बारे में थोड़ा बताइए।
1: मैं खेती किसानी का काम करता हूँ, और इसके अलावा जो समरसिबल रहते हैं खेतों के लिए पंप, उनकी रिपेयरिंग भी होती है हमारे यहाँ।
0: आपके पास मतलब शॉप है?
1: जी।
0: अच्छा आप करते हैं?
1: जी।
0: अरे वाह क्या बात है, तो फिर एक पन दो काज हो गया, खेत भी संभाल लिया और ये काम भी कर लिया,
1: और साथ साथ रेडियो तो हमको मिलता ही रहता है। विविध भारती तो
0: वो तो आपकी खुराक में शामिल है ना, हो सकता है एक रोटी कम खा लेते होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते आप श्रोता लोग।
1: नहीं भूलते हैं। जी जी जी,
0: बहुत अच्छा लगता है हमें। तो गजराज जी आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
1: सौदागर मूवी का है, इमली का बूटा बेरी का पेड़।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत है, सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाकिनी जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं बढ़ापुर बिजनौर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ मैम।
0: बोलिए, नाम बताइए।
1: नाम एम ताहिर है, यानी मोहम्मद ताहिर।
0: मोहम्मद ताहिर साहब, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: शुक्रिया मैम, बहुत बढ़िया, आपकी दुआएं हैं।
0: देखिए, ऐसा है कि आप अच्छे हैं तो अपने अच्छे कार्यों से अच्छे हैं आप, और ईश्वर की आप पर जो है अति कृपा है, अल्लाह की है ना।
1: जी जी, सब ऊपर वाले के कर्म से सब सही है।
0: क्या करते हैं ताहिर जी आप?
1: मैडम जी, मैं एक शॉपकीपर हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है।
0: अच्छा, किस विषय पर?
1: जी मैंने बाई इकोनॉमिक्स किया था।
0: तो आपने अपनी दुकान संभाल रखी है या अपने पिता की?
1: जी, पापा बैठते थे, उसके बाद मैं बैठता हूँ बस, अब उन्होंने फिलहाल रेस्ट के लिए।
0: किस तरह की दुकान है
1: ये? लेडीज की है, आपसे ही मुतालिक सारे सामान है इसमें, जैसे गिफ्ट होते हैं, बैंगल्स होती है और कॉस्मेटिक्स वगैरह।
0: तो आपने एमए इकोनॉमिक्स में किया, तो आगे कुछ और एग्जाम्स वगैरह नहीं दिए? या आपका उद्देश्य यही था कि पिता के व्यवसाय को संभालना है?
1: बात ये थी कि उसके लिए कहीं जाना पड़ता और पापा जी को मुझे अकेला कहीं भेजना मंजूर नहीं था।
0: अच्छा, हाँ, ये हमारे माता पिता का जो अति मोह है संतान के प्रति ना, उसमें वैसे अच्छी बात है कि हम ताउम्र माता पिता का साथ दे पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ छूट भी जाता है जिंदगी में। हालांकि कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ठीक है, आप खुश है तो सब अच्छा है।
1: बहुत बढ़िया जी।
0: तो बताइए, गाना कौन सा सुनेंगे?
1: फिल्म कन्यादान से मेरी जिंदगी में आते, रफी साहब की आवाज।
0: क्या बात है, तो कुछ और बात होती।
1: जी जी,
0: कोई खास मकसद इस गाने को सुनने का?
1: नहीं मैम, अल्फाज सही है, आवाज तो कोई कहने के दो राय है ही नहीं इसमें।
0: सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: उनकी जुल्फें,

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, नाम बताइए।
1: जी मैं जलंधर सिटी पंजाब से सोनू बात कर रहा हूँ। जी
0: सोनू जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं जी। आप मीनाक्षी जोशी जी बात कर रहे हैं?
0: हाँ जी।
1: हाँ जी मैडम जी, क्या नमस्कार आपको।
0: सुनते हैं हमारे कार्यक्रम
1: जी। मैं तो रेगुलर आपसे जुड़ता रहता हूँ फेसबुक के माध्यम से।
0: क्या बात है।
1: हाँ जी, बस क्या होता है ना, कभी कभी इबारत कुछ समझ में नहीं आती, फिर आप दो क्वेश्चन भी पूछते हैं।
0: आप जवाब देते हैं उसका?
1: हाँ जी, मैं जरूर पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जवाब दूँ आपको, और मेरा नाम जुड़ा रहे भारती के साथ में।
0: तो सवाल तो बिल्कुल सीधे साधे होते हैं, और एक कार्यक्रम को थोड़ा सा लाइवनेस बनाने के लिए करना पड़ता है, नहीं तो कार्यक्रम बिल्कुल उबाऊ हो जाएगा।
1: और विविध भारती का प्रोग्राम, लेकिन जब से स्टार्ट हुआ है विविध भारती का, तब से मेरे ग्रैंडफादर, फादर मेरे और मैं, वो कभी भी बोझ महसूस नहीं हुई। इतने बढ़िया प्रोग्राम होते हैं विविध भारती के।
0: मतलब आपके दादा की विरासत को आपके पापा ने संभाला और अब आप संभाल रहे हैं, है ना? जैसे हम उनके कामों को संभालते हैं कि भाई हमारे दादा की ये बिजनेस था और उनको बाद पिता ने और पुत्र ने संभाला, तो विविध भारती सुनने की भी आप लोगों ने ये एक ले रखा है प्रण कि हमारे दादाजी की सुनने की आदत को हम भी सुनने में डाल लेंगे।
1: उन्होंने कहा था ना, चैनल वो सुना जाए जिसमें अच्छी ज्ञानवर्धक बातें हों। वो रेडियो ऐसा माध्यम है कि कभी इसमें गलत जानकारी मिलती नहीं, सही मिलती है हमेशा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और आप लोग इतने प्यार और ईमानदारी से सुनते हैं। सबसे बड़ी बात ये, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग कार्यक्रम पेश करते हैं और आप लोग इतनी संजीदगी के साथ अपनी बात कहते हैं।
1: जी मैडम जी, देखिए आप जितने भी वीडियो पोस्ट करते हैं ना फेसबुक पर, वो सभी मैं देखता रहता हूँ और सभी मैं लाइक भी करता हूँ। तो आपने 90 साल का जो जश्न मनाया वो भी मैंने देखा।
0: चलिए तो आप बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको।
1: मैंने गाना सुना है जी दोस्ताना मूवी का, किशोर दा और आशा जी की आवाज में, बहुत खूबसूरत गीत है। दिल लगी ने
0: दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई
1: और आग जल पड़ी।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं संतोष जी आड़ा बोल रहा हूँ, ग्राम चिड़ा कंजर डेरा देवास जिले से।
0: स्वागत है संतोष जी, कैसे हैं आप?
1: जी बढ़िया है, ट्यूट हो गया हमको, सुनते रहते हैं आपका प्रोग्राम, बचपन से सुन रहे हैं जी। आज 44 साल की उम्र हो गई हमारी, और रेडियो समय से सुन रहे, जो सेल वाले शुरू स्टार्ट हुए थे।
0: कैसा लगता है रेडियो सुनने से, जिंदगी संवर गई आपकी?
1: रेडियो दीदी, हम है ना, हमारे फार्म हाउस पे मस्त सुना करते हैं, मजदूर काम किया करते हैं, और आपकी वीर भारती पूरी टीम को हम बधाई देना चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे लिए इतने सुंदर सुंदर कार्यक्रम लाते हो, फोन इन कार्यक्रम लाते हो, और गाने पुराने सदाबहार जो सुनाते हो, बहुत बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा, आप इतने गहराई से हमारे कार्यक्रम सुनते हैं और उनके बारे में अपने विचार भी रखते हैं। वैसे आप खुद क्या करते हैं संतोष जी?
1: जी खेती गृहस्थी का काम है, खेती गृहस्थी का।
0: तो अभी क्या है आपके खेत में?
1: जी अभी खाली पड़ा है, बस वर्षा दीदी का इंतजार है, जैसे पानी गिरता है तो हम सोयाबीन लगाएंगे दीदी।
0: तो सोयाबीन की खेती में कितनी मेहनत मशक्कत हो जाती है, कितना ध्यान रखना पड़ता है?
1: दीदी जो अब जो सोयाबीन की फसल है बिल्कुल बेकार हो चुकी है, सिर्फ ये मेहनत फसल है, जैसे पानी का इंतजार रहता है,
0: हाँ।
1: खेतों में चारा उगवाता है तो दवाई का इंतजार रहता है, डोरे लगाना पड़ता है, बेलों का समय रहा नहीं, ट्रैक्टरों से लगाते हैं और फिर भी चारा नहीं मरता, फिर डबल दवाई उड़ाते हैं, बिल्ली की दवाई उड़ाना पड़ता, बहुत कठिन का काम है ये सोयाबीन पैदा करना। उसके बाद भी फिर मौसम सहयोग नहीं देता है तो फिर बैठक भी बहुत कम होती है हम किसानों को, सोयाबीन की फसल में तो बहुत घाटा है।
0: सही कहा आपने, बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। तो फिर सोयाबीन की फसल को बार बार फिर क्यों बोते हैं, कोई कारण है खास?
1: मेहनत का तो है, फिर भी क्या है, इसमें नुकसान चीज नहीं होती। अभी हम मक्का लगा दें तो जंगली सुअर खा जाते हैं, मूंगफली लगा दें जंगली सुअर खा जाते हैं, रतालू की फसल करे तो वो भी जंगली सुअर खा जाते हैं, उड़द दाल वगैरह पैदा करते हैं तो हिरन खा जाती, हिरन की मौत है हमारे इधर।
0: अच्छा, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता होगा आपको, तो ये तो 24 घंटे की निगरानी हो गई।
1: जी ये क्या है, सोयाबीन में निगरानी नहीं रखना पड़ता है, दूसरी जो फसल है इसमें बरोबर निगरानी रखना पड़ता है।
0: तो इसलिए आप सोयाबीन को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देते हैं ना, कि सोयाबीन की फसल लग जाए। अपने गाँव के बारे में बताइए थोड़ा सा, कैसा है आपका गाँव?
1: हमारा गांव बहुत सुंदर है, ऐसे तो हमारे गांव के पोहे और समोसे कचौरी बड़े फेमस है।
0: क्या बात है, पोहे और समोसे?
1: यस,
0: मुंह में पानी आ गया हमारे, देखिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपने हम एक नई जानकारी दी है सोयाबीन की खेती के बारे में। तो संतोष जी अब गाना बता दीजिए।
1: गाना है वो प्यार हमारा अमर रहेगा याद करेगा जहाँ।
0: फिल्म का नाम क्या है?
1: मुद्दत।
0: मोहम्मद अजीज की आवाज़
1: जी।
0: चलिए तो सुनते हैं आपकी पसंद का गीत फिर।

0: आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें, ताकि हम अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर दे सकें। हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02228670288, दूसरा नंबर 02240024662। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय सुबह के 11 बजे हैं। लीजिए सुनिए ये संदेश।
1: जब जब आप करेंगे हमें याद, हम मिलेंगे आपको अपने ही पास। अगर आप हैं दुनिया के किसी भी कोने में और सुनना चाहते हैं आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल, तो आप हमें सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी। हमें सुनने के लिए आप जाइए अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर पर, वहां से कीजिए डाउनलोड न्यूज ऑन AIR ऐप। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जब आप लाइव रेडियो के ऑप्शंस पर जाएंगे, तो वहां आपको मिलेंगे रेडियो के ढेरों चैनल्स। इनमें से आप सर्च कीजिए अपना फेवरेट ऑल इंडिया रेडियो अलवर, जहां आप हमें पाएंगे अपने साथ, ओनली एट न्यूज ऑन AIR।
0: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से रिले प्रसारण।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

विविध भारती से रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और आज कुछ ऐसे गाने जिनमें हैं बारिश के छींटे। लता मंगेशकर की आवाज में ये गैर फिल्मी गीत, सुमित्रा कुमारी सिन्हा के बोल हैं।

0: लता मंगेशकर की आवाज में यह गैर फिल्मी गीत आपने सुना।
1: किसी मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है। गए सावन में ये दीवारें यूं सीली नहीं थी, न जाने इस दफा क्यों इनमें सीलन आ गई है, दरारें पड़ गई हैं। और सीलन इस तरह बहती है जैसे खुश्क रुखसारों पे गीले आंसू चलते हैं। हवा की सांस क्यों सहमी हुई है, मेरी वाकिफ थी जब आती थी कमरे में, मेरे सीने में भर जाती थी जैसे बादवां भरते हैं कश्ती के। ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये बारिश गुनगुनाती थी इसी छत की मुंडेरों पर, ये घर की खिड़कियों के कांच पर उंगली से लिख जाती थी संदेशे, बिलकती रहती है बैठी हुई अब बंद रोशनदानों के पीछे। दोपहरें ऐसी लगती हैं बिना मोहरों के खाली खाने रखे हैं, न कोई खेलने वाला है बाजी और न कोई चाल चलता है, न दिन होता है अब न रात होती है, सभी कुछ रुक गया है। वो क्या मौसम का झोंका था जो इस दीवार पर लटकी हुई तस्वीर तिरछी कर गया है।
0: मौसम का झोंका गुलजार की आवाज में आपने सुना, उनका ही ये कलाम ये कब आते हो एल्बम से था। और अब भूपिंदर की आवाज़।

0: चंद्रदास की आवाज में ये निदा फाजली का कलाम था। विविध भारती पर रंग तरंग।
1: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम रंग तरंग। हमें खेद है कि आखिरी गाना आप ठीक से नहीं सुन पाए। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। हम विविध भारती से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे।

0: प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स के महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। अमरीका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में लगे लोगों के प्रयासों की सराहना की है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: LPG की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक LPG की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली LPG आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने PNG कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, यादों की महफिल।

तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा, मुसाफिर

शैलेंद्र के बोल थे एसटी बर्मन की तर्ज फिल्म का नाम गाइड। यादों की महफिल विविध भारती से। अगला गाना आनंद बख्शी की आवाज में, उन्हीं की रचना है, फिल्म का नाम बालिका वधू।

0: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। इस समय दोपहर के 12:15 हो रहे हैं। लीजिए सुनिए ये संदेश।
1: आकाशवाणी के 9 दशक, जी हाँ, पूरे 90 साल।

0: आकाशवाणी आपके भरोसे का साथी, आपकी आवाज, आपके दिलों की धड़कन, निरंतर सेवा में समर्पित। ज्ञान, सूचना, मनोरंजन और संस्कृति का ये है अथाह सागर। पीढ़ियों से सदा है हमारा मार्गदर्शक, गांव से शहर तक है हर घर में इसकी गूंज। आकाशवाणी के 90 वर्ष, ये सिर्फ एक संख्या नहीं, ये है हमारी विरासत, हमारा गौरव। सुनते रहिए आकाशवाणी सदाबहार, सदा आपके साथ।
1: एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी अलवर का सर इसका चैनल है। लीजिए सुनिए विविध भारती मुंबई केंद्र से।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं यादों की महफिल। अशोक भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाजें, गुलशन बावरा, राहुल देव बर्मन, सत्ते पे सत्ता।

0: इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में सुनिए सुरीला सफर
1: समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। आज देश राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को नमन कर रहा है। उनकी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि साहित्य के एक तेजस्वी प्रकाश स्तंभ के रूप में उनकी रचनाओं ने भारतीयों की कई पीढ़ियों में देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव की भावना जगाई है।

0: उनका समृद्ध साहित्यिक योगदान आज भी लोगों को प्रेरित करता है और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारे सामूहिक संकल्प को मजबूत करता है। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी चट्टोपाध्याय जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा है कि उनकी अमर रचनाएं और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत विचार युगों युगों तक देशवासियों को राष्ट्र सेवा और मातृभूमि के प्रति समर्पण की प्रेरणा देते रहेंगे। इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाने वाला मुहर्रम आज पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश भर में जुलूसों के साथ मातम मनाया जा रहा है और मजलिसें आयोजित की जा रही हैं। राजधानी जयपुर में आकर्षक सजावट के साथ छोटे बड़े ताजियों के साथ बड़ी संख्या में मोमिन मातमी प्रदर्शन कर रहे हैं। दिन भर निकलने वाले ये जुलूस और ताजिये रात में करबला में सुपुर्द खाक किए जाएंगे। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में विशेष धार्मिक रस्में अदा की जा रही हैं। यहां दुआ, फातिहा और नियाज का आयोजन हो रहा है। जालौर में मेहंदी की रस्म अदा कर ताजिये मोहर्रम पोल से शुरू होकर विभिन्न मोहल्लों से गुजरते हुए बड़ी पोल पहुंचे हैं। यहां से इन्हें करबला के मैदान में ले जाया जा रहा है। कई स्थानों पर छबीलें लगाई गई हैं। सभी जिलों में जुलूस को लेकर स्थानीय प्रशासन ने आम लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और यातायात मार्ग में बदलाव किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान त्याग, साहस, दृढ़ विश्वास और मानवीय मूल्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत की गई है। ये क्विज देश भर में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन क्विज में अगले महीने की 15 तारीख तक भाग ले सकेंगे। इसी कड़ी में प्रदेश में भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। पाली में नगर निगम की ओर से बैनर और पोस्टर के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ, सुरक्षित तथा खुशहाल समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने का आह्वान किया जा रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी से जागरूकता फैलाने, नशा मुक्ति में लगे लोगों का समर्थन करने और युवाओं को नशे की बजाय आशा, स्वास्थ्य और उद्देश्य को चुनने के लिए प्रेरित करने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से आम जन से नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेने की अपील की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज से उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने की 21 तारीख को आयोजित हुई थी। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से रविवार को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जन्म से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और विशेष रूप से बनाए गए पोलियो बूथों पर ये दवा पिलाई जाएगी। इस दिन खुराक से वंचित रहे बच्चों को 29 और 30 जून को स्वास्थ्य कर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: चिराग खुलने लगा है, घटाएं बरसने लगी है। इस गाने में महिला स्वर किस गायिका का है ये बताइए।

ये सुदास के साथ हेमांति शुक्ला की आवाज बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात का जवाब दिया है और ये खुशी की बात है क्योंकि कम चर्चित गायिका को अगर आपने पहचान लिया इसका मतलब आप फिल्म संगीत के सही कदरदान है। पहला ही गीत बहुत खूबसूरत है, ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने ये रिपोर्ट की है कि यहाँ सिर्फ बादल छाए हैं, बारिश का इंतजार है। इसके अलावा एक और श्रोता का जवाब है कि आपका गाना क्या है, कहां से छाए बदरा, हमें मालूम है समुद्र से आए बदरा। एक और श्रोता है जो कहते हैं, कविता में कहती हैं, बादल के छोटे छोटे टुकड़े घूम रहे हैं हमारे शहर के आसमान में, जाने कब एक होकर बरसें, जाने कब प्यास बुझे सूखे अरमान की। भाई कविता करने की इन्होंने कोशिश की। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि मुझे पता था कि ये गाना बजेगा, ये मेरा पसंदीदा गाना है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं, सफेद बादल छाए हैं बिना पानी वाले, जाने कब होगी बरसात। एक और श्रोता है जिन्होंने कविता लिख भेजी है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को, मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन की यह कविता, मजा आ गया आपने कविता लिखी। फिलीपींस से एक श्रोता का मैसेज ये है कि मौसम खुशगवार है, सूरज देवता आंख मिचौली खेल रहे हैं और थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। एक और श्रोता अपने खेत पर बुवाई करते हुए सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहां बादल शादी में मुंह फुलाए फूफा की तरह घूम रहे हैं, नजर तो आएंगे पर किसी काम के नहीं है। क्या बात है भाई, आपकी इस बात और इसकी इस बात में जो व्यंग्य था उसमें बड़ा मजा आ गया है। एक और श्रोता है जिन्होंने रिपोर्ट किया है, तापमान 30 डिग्री, ठंडी हवा चल रही है, बादल छाए हैं। देखिए भाई, देश भर के मौसम का जो हाल है वो यहां पता चल जा रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि जब गर्मी बढ़ती है तो बारिश 2-3 दिन बाद हो जाती है, लेकिन अब 3 दिन हो गए बारिश नहीं हुई है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि घटा छाई है, किसी भी मिनट बरस सकते हैं बादल। तो ये है हमारे तमाम श्रोता जो अलग अलग शहरों से अपने शहर के मौसम को रिपोर्ट भी कर रहे हैं और उसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि उनकी तमन्ना किस गाने को सुनने की है और उनका गाना और हमारा गाना मैच हो रहा है या नहीं। ये तमाम बातें यहां चल रही हैं और उसके अलावा एक और चीज चल रही है, वो है तेज हवा। और हवाओं से मुझे पतंग की याद आ गई। चलिए आज पतंगबाजी से जुड़ी हुई कुछ यादें शेयर करें। जल्दी से मोबाइल उठाइए और कमेंट कीजिए पतंगबाजी से जुड़ी जो आपकी सबसे शानदार याद है वो लिख भेजिए। इस गाने के फौरन बाद पतंगबाजी वाले सारे कमेंट पढ़ूंगा मैं। तो शुरू हो जाइए, किसने किसकी पतंग काटी, किसने मांझा सूता, किसने पेंच लड़ाए और किसने बाजार से ताव लाकर पतंग बनाई।

महेंद्र कपूर और आशा भोसले की आवाजों में गुमराह फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना। और पतंगबाजी को लेकर कितने सारे कमेंट्स आ गए। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे पड़ोस में एक लड़का अक्सर पतंग पर एक प्रेम पत्र लिखकर अपनी प्रेमिका तक पहुंचाता था। वो अद्भुत दृश्य होता था। 90 के दशक में प्रेम पत्र का बड़ा क्रेज था। ये कमेंट। और इसके अलावा ये कमेंट कि हमारे गुजरात में पतंग मशहूर खंबात के बरोड़ा के जहां बनता है, हमारे गांव में दिवाली के बाद पतंग उड़ाने की शुरुआत हो जाती है, इन्होंने लिखा है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि करीब 50 साल बाद इस संक्रांति में मैं और मुझसे 2 साल बड़ा भाई, जो बचपन में बहुत पतंग उड़ाते थे, हम दोनों ने पतंग उड़ाई, मांझा सूता और करीब 3 पतंग काटी, मजा आ गया। एक और श्रोता लिखते हैं कि पतंग से सिर्फ ये याद आता है कि रफी साहब को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। हमको उड़ानी तो नहीं आती है, पर अपने भाई की चकरी जरूर पकड़ कर रखते थे। रफी साहब को ही नहीं बल्कि मन्ना डे को भी पतंग उड़ाने का बड़ा शौक था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पतंग बहुत बनाई लेकिन कभी किसी से पींच नहीं लड़ाया, बस ऐसे ही पतंग उड़ाने में मजा आता रहा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि हमीरगढ़ राजस्थान से हम लिख रहे हैं और कल ही तेज बारिश हुई है। उसके अलावा एक और श्रोता पतंग की बात पर लिखती हैं कि मेरे भाई कांच की बोतल को फोड़ कर पीस कर महीन करके उससे मांझा सूतते थे और मैं पतंग तो उड़ा नहीं पाती थी लेकिन लटाई पकड़ने का काम में

होता था। भाई बहुत सारे ऐसे श्रोता होंगे जिन्हें जो छोटे होंगे और उनके बड़े भाई या बड़ी बहन होंगी, जाहिर है कि पतंग उड़ाने का काम जो है वो बड़े भाई या बड़ी बहन को होता मिलता था और चक्री पकड़ने का काम छोटे भाई बहनों को मिलता था। तो आप में से कितने लोग हैं जिन्हें सिर्फ चक्री पकड़ने का काम मिला और आपने कई बार ये जोर दिया कि भाई मुझे भी तो दो, मुझे भी तो जरा पतंग उड़ाने दो। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि आज की इबारत पकड़कर मैं फ्लैशबैक में जा रहा हूं, मन को रंगीला करने वाली बारिश की कहानी बताना चाहूंगा कि शादी के अगले साल मैं और पत्नी बारिश के मौसम में अजमेर से लूनावाला खंडाला गए थे। किराए पर बाइसाइकिल ली और भीगते हुए दोनों घाटों तक चले गए। ना आसमां का पता था ना जमी का, बस खाइयों का नजारा था। अच्छा अच्छा, ना आसमां का पता हो ना जमी का, इस पंक्ति से उन्हें याद आ गई अपनी ये बात। एक और श्रोता लिखते हैं कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को हमारे यहां पतंगबाजी होती है। और इसके अलावा एक और श्रोता वो लिखते हैं कि जयपुर में हमारे यहां कल बहुत बरसात हुई थी। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बारिश में कॉलेज के वो दिन याद आते हैं जब परीक्षाएं मई जून तक खिंच जाती थीं और समझ नहीं आता था कि पढ़ाई करें या बारिश के मजे लें। इसके अलावा एक और श्रोता है, वो लिख रही है कि क्या बोलें, ये बारिश की कहानी आपके लिए, बादल आ भी जाए तो डिलीवरी का पता नहीं है, बड़ी दिक्कत हो रही है। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जो बारिश के इंतजार में हैं। और कई श्रोताओं ने जिस तरह से पतंग की यादें बांटी हैं, हो सकता है कि कुछ और श्रोता अभी रह गए हों और उनके कमेंट्स आते ही होंगे, तो उनकी बातें भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी। तब तक जरा आगे बढ़ते हैं और अब अगले गाने की तरफ, जो बहुत ही झुमा देने वाला गाना है। फिल्म का नाम प्रेम पुजारी, लता मंगेशकर की आवाज। इस गाने के गीतकार का नाम बताइएगा।

प्रेम पुजारी फिल्म का ये गाना गीतकार नीरज ने लिखा है। बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि हमारा बेटा 1000 रुपए की पतंग लाता है संक्रांति में, दोस्तों के साथ खूब उड़ाया करता था। अब पोते छोटे हैं और वो थोड़े थोड़े मजे लेते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो सूरत गुजरात में हैं और वो भी इसी तरह पतंगबाजी को याद कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट हैं। सौराष्ट्र गुजरात के हमारे कुछ श्रोताओं के ये मैसेज हैं कि किसान वहां बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे हैं ताकि बुवाई समय पर हो। अभी तक जमीन में बीज पड़ जाने चाहिए थे लेकिन देर हो चुकी है, बारिश नहीं आ रही है। एक और श्रोता ये लिख रहे हैं कि बचपन में पढ़ाई के दौरान मई जून में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान शाम को बहुत पतंग उड़ाई है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि ये सही बात है कि छोटा भाई मैं था तो बड़े भाई साहब पतंग उड़ाते थे और मेरा काम था चकरी पकड़ना, पर मैंने ये महसूस किया कि चकरी पकड़ना भी एक कला है। एक और श्रोता लिखते हैं कि ना तो मैंने चकरी पकड़ी ना पतंग उड़ाई, लेकिन आकाश में रंग बिरंगी पतंगों को देखने में बड़ा मजा आता था और जब पतंग कटकर आती थी छत पर तो जल्दी से उठाकर अपने बड़े भाई को दे देती थी। एक और श्रोता कहते हैं कि हमारे गांव में यदा कदा कुछ बच्चे पतंग उड़ाते हैं और खास त्योहारों पर उड़ाते हैं। बचपन की याद ये है कि 2 पैसे में 4 पतंग लेकर आते थे और उड़ाते थे। अहमदाबाद में 2 साल पहले 2 महीने मैं वहां रहा तो आसमान

पतंगों से भर गया था, जिसे देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। और इसके अलावा एक श्रोता लिखती हैं कि मुझे पतंग उड़ाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब रंग बिरंगी पतंगें आसमान में उड़ा करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि पतंग से पींच लड़ाने में मजा तो बहुत आता था, लेकिन कई बार ये होता था कि दूसरे की पतंग काटने के चक्कर में अपनी ही पतंग उड़ जाती थी। एक और श्रोता लिखते हैं कि मुझे चक्री पकड़ा दी जाती थी जो इतनी तेजी से घूमती थी कि डर लगता था। तो ये पतंग की बातें बातों बातों में इतनी दूर तक चली आई कि अब हम चल रहे हैं आसमां के नीचे।

ये बताइए कि आज सुबह से आपके होंठों पर आपके जहन में कौन सा गाना तैर रहा है। आज सुबह से वो कौन सा गाना है जो आपके दिलो दिमाग पर हावी है।

भाई ये गाना हो गया और बहुत सारे श्रोताओं के जो कमेंट्स हैं हमने शामिल करने की लगातार कोशिश की, और अभी भी जब भी कोई गाना खत्म होता है तो हम कोशिश करते हैं कि आप सभी श्रोताओं के जो कमेंट इस बीच में आए हैं वो सभी शामिल कर लिए जाएं। कई श्रोता ऐसे हैं जिन्हें ये लग रहा है कि भाई हाँ आपके गाने और हमारे गाने मैच हो रहे हैं। एक श्रोता

पता नहीं लपक झपक तू आर्य बदरवा गाने का जिक्र कर रहे हैं, और इसके अलावा एक श्रोता है जो आज रपट जाए तो हमें ना उठाइयो गाने का जिक्र कर रहे हैं, ये उनके जहन में गूंज रहा है ये गाना लपक झपक तू आरे बदरवा। इसके अलावा एक श्रोता के जहन में गूंज रहा है सिमटी सी शर्माई सी, एक और श्रोता है जिनके जहन में आज रपट जाए गूंज रहा है, तो किसी के जहन में सुरमई अखियों में नन्ना मुन्ना एक सपना दी जा रही। देखिए किसने तरह के गाने हमारे अलग अलग श्रोताओं के जहन में गूंज रहे हैं। एक श्रोता लिख रही है कि इतना समय ही कहां कि कोई गीत जहन में गूंजे, ऊपर से मौसम का मिजाज गर्म, हाय गर्मी उफ गर्मी यही उनकी जुबां पर है। चलिए भाई ठीक है। इसके अलावा एक और श्रोता है जिनकी जुबां पर सुबह से है नैनों में पतरा छाए, और इसके अलावा एक श्रोता है जो कह रहे हैं कि अकोला में हम शाम को समय निकाल कर बहुत पतंग उड़ाया करते थे, और इसके अलावा कई और श्रोता है जो बारिश की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बारिश के इंतजार में हम लोग बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि पतंग उड़ाने वाले कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका मांझे से हाथ ना कटा हो। अभी कुछ साल पहले एक हृदय विदारक घटना सुनी थी कि मांझे से किसी व्यक्ति के साथ कुछ हादसा हो गया था। उसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं कि शादी के बाद हम पहली बार मूवी देखने गए, अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी और हम दोनों के मुंह से निकला रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, आज भी ये हम दोनों का पसंदीदा गाना है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब अगले गाने की तरफ। आपके शहर में चाहे गर्मी हो चाहे बादल छाए हो, चाहे आप गर्मी से हो हलाकान या परेशान, पर कम से कम ये गाना तो हमारे साथ गुनगुना सकते हैं। किस फिल्म का है ये गाना ये बताइएगा, और साथ में ये भी बताइएगा कि जब मौसम सुहाना होता है तो आपके होंठों पर कौन सी पंक्तियां आती हैं।

पतंग की बातें क्या हुई, बहुत सारे श्रोताओं की बचपन की यादें ताजा हो गई हैं, कई श्रोताओं के कमेंट आ रहे हैं और वो सभी अपने बचपन को याद कर रहे हैं। एक श्रोता लिखती है, बरखा रानी जरा जम के बरसो हमारे ग्वालियर में भी, इसका मतलब उनके शहर में भी बारिश नहीं हुई है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अनवर को याद किया है, जिनकी आवाज में ये गाना था मौसम मौसम लवली मौसम। और एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है सचिन और पद्मिनी कोल्हापुरे की आवाजें। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे जहन में गूंज रहा है गाना छतरी न खोल बरसात में। और इसके अलावा थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये गाना था, ये भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा। एक श्रोता को ये कंफ्यूजन हुआ कि ये त्रिशूल फिल्म का गाना है, जो कि गलत जवाब है। उसके अलावा एक श्रोता ये हैं जिनका कहना है कि इस तरह के गानों को सुनकर मौसम अपने आप ही लवली हो जाता है। गीतकार का नाम है गुलजार, संगीतकार का नाम है खयाम साहब। तो फिर आगे बढ़कर जरा देखें, एक श्रोताएं लिखते हैं कि हमने कोलकाता में भी पतंग उड़ाई थी, विक्टोरिया मैदान में पतंगबाजी देखी, जवानी में बहुत लंबे लंबे पींच लगाए हैं, पतंग बहुत छोटी सी नजर आती थी जब आसमान में ऊंचाई पर उड़ा करती थी। एक श्रोता लिखते हैं कि दसवीं की बात है, बारिश का मौसम था, शाम का समय था जब मैं कोचिंग जा रहा था, रोड के किनारे काफी गहरी नाली खुदी थी, उसमें पानी भर गया था, बरसात हो रही थी, तो सोचा थोड़ी सी चप्पल इस पानी में धो लेता हूं, लेकिन जब मैं उसमें डूब गया, मेरा रजिस्टर छतरी के ऊपर तान में रखा हुआ था और मैं पूरा भीग गया था, लेकिन मेरी छतरी और मेरा रजिस्टर बच गया।

इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की कमेंट है। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मांझे पर हम चावल के आटे का घोल लगाते थे, मराठी में खड़ कहते हैं, इसमें कांच को कूट कर उसमें पाउडर मिलाते थे ताकि पतंग फटाफट काटी जाए। इसके अलावा एक श्रोता ये लिख कहते हैं कि कहाँ गया ये कमेंट। एक श्रोता कहते हैं कि विविध भारती के सुबह से गाने सुने तो जो गाना सुबह सुनाई देता है वही जहन में गूंजने लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि पतंग

बाजी के कार्यक्रम के बाद खाने की सामग्रियां खाई जाती हैं, ये शायद संक्रांति को याद कर रहे हैं, तिल के लड्डू और अलग अलग तरह की मिठाइयां, ये सारी चीजें याद की हैं। और इसके अलावा जो बहुत नीचे के कमेंट्स हैं जिनकी तरफ मैं जा रहा हूं पढ़ने के लिए, तो उनमें कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने, अब जैसे ये श्रोता है, इन्होंने कहा है कि हमारे पिताजी बहन भाइयों को पतंग बांट कर देते थे, खरीद कर देते थे, और मेरे बड़े भाई थोड़ी सी चीज की लालच देकर मेरी सारी पतंगें अपने कब्जे में कर लिया करते थे। ये बचपन की याद उनको आ गई है। और इसके अलावा कुछ और श्रोता है, एक श्रोता है जो लिखते हैं कि ननिहाल गर्मी की छुट्टियों में बहुत पतंगें उड़ाई हैं और 15 फीट ऊंची छत से गिरकर बगैर चोट खाए खड़े भी हो गए। ओहो हो हो, खतरनाक बात है भाई। एक श्रोता लिख रहे हैं कि 67 साल से ज्यादा की उम्र है और 15 से 20 पतंग और चरखियां एक समय में मेरे घर पर हमेशा होती हैं। आसपास कोई उड़ाता तो नहीं है, लेकिन मैं काफी ऊंची पतंग 1 घंटे तक उड़ाता हूं, ये बहुत ही अच्छा व्यायाम भी है। ओ भाई, ये श्रोताओं की बातें। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, तो चलिए देखते हैं कि क्या यही कैफियत आपकी है जो इन साहिबा की है। बारिश का इंतजार है और तमाम बातें हो रही हैं, तो बारिश में की गई किसी रेल यात्रा की यादें हमारे साथ साझा कीजिए।

कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिख रही हैं कि छुट्टियों के बाद नानी के घर से वापस आते समय पक्का बारिश होती थी, बस या ट्रेन से देखते थे, बहुत सुंदर दृश्य, पेड़ पौधे, धान रोपते किसान, बहुत सुंदर लगता था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं, बचपन में हम 12 सदस्यों का परिवार पैसेंजर ट्रेन का लंबा सफर बारिश में खिड़की के पास बैठने नहीं दिया जाता था, क्योंकि उस समय खिड़कियों में कांच नहीं हुआ करते थे, टीन वाला शटर डाल दिया जाता था। एक श्रोता और हैं जो लिखते हैं कि कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, बारिश में भीगकर ट्रेन पकड़ी और टाइम से पहुंचे तब मिली। इसके अलावा एक और श्रोता है, उन्होंने भी इसी तरह से बारिश के एक सफर की याद की है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि रेखा और विनोद मेहरा पर फिल्माएगा ये गाना बहुत ही बढ़िया है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लखनऊ में पतंगबाजी को याद किया है, और वो ये लिख रहे हैं कि जब मैं पतंग उड़ाती थी तो लड़की होने की वजह से वो लड़का मुझे डराता था, मैंने उससे पेंच लड़ाया और पता नहीं कैसे मैंने उसकी पतंग काट दी, फिर उसने भैया से शिकायत की। ये तमाम यादें देखिए, पतंग के बहाने कितने सारे श्रोताओं की यादें ताजा हो गई हैं। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। किस फिल्म

भाई ये गाना खत्म हुआ और कार्यक्रम के आखिरी मकाम तक हम आ चुके हैं। हमारे एक श्रोता का कमेंट आया जिसमें उन्होंने एक सुंदर कविता लिखी है, फटाफट पढ़ देते हैं। रिमझिम बूंदों का खिड़की को खटखटाना, लगता है आया है गुजरा हुआ जमाना, कागज की कश्तियों का वो पुराना, वो दौर पुराना, छत से वो गिरते हुए पानी को चुराना, उस ओंधी सी मिट्टी की खुशबू का आना, बचपन की वो यादें फिर से बुलाएं, कभी मन मुस्काए कभी आंख भर जाए, खिड़की पे बैठकर चाय का प्याला, यादों ने फिर कोई किस्सा निकाला, भीगा है मंजर ये दिल भी है गीला, मौसम ने पहना है ये रंग सुरीला। सुंदर कविता है और आप सभी ने जिस तरह की सुंदर यादें बांटी हैं, कुछ बारिश वाले रेल के सफर की यादें हैं जो कार्यक्रम में शामिल हम भले नहीं कर पाए हों, लेकिन हम इन सभी यादों को आराम से बैठकर पढ़ेंगे और आप सभी के की इन यादों के साथ एक पुराने जमाने का लुत्फ उठाने की कोशिश करेंगे। आपने इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया और इतने सारे कमेंट्स किए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी के सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी 2 दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे।

0: प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
1: For our business,
2: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
2: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
0: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाची के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्टाद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 एमसीसी C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदाद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

0: भारती से बोल रही हैं, आइए सुनिए सदाबहार नगमे।
1: वो जब याद आए बहुत

राजा मेहदी अली खां के बोल थे मदन मोहन की तर्ज थी और उन्हीं की आवाज साथ में लता मंगेशकर की आवाज वो कौन थी फिल्म के गाने का ये एक विशेष संस्करण था। इससे पहले कोहरा फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, कैफी आजमी के बोल थे, संगीत हेमंत कुमार का था।

किशोर कुमार की आवाज में दूर गगन की छांव में फिल्म का गाना था।

के डोले मनवा कि हियर में उठत हिलो। अरे पुरवा के झोंकवा में आई

0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गोदान फिल्म का गाना था, अनजान की बोल थी, संगीत पंडित रविशंकर का था। इसी के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम खत्म होता है। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

सखियो नमस्कार। इंतजार ऐसी खामोश कविता होती है जिसे हर दिल हर पल बिना शब्दों के लिखता रहता है। ये वो दीप होता है जो विरह की रातों में आशा की लौ जलाए रहता है। इंतजार वो फूल है जो खिलने से पहले ही खुशबू का एहसास कराता है किसी अपने की

0: वहां देखता हुआ मन मानो समय की दहलीज पर उम्मीदों के दीप सजाकर बैठा रहता है। इंतजार वो एहसास होता है जहां मिलने की खुशी से पहले यादों की महक दिल के आंगन को महका देती है। चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए हम सभी को झमाझम बारिश का इंतजार है, तो फिलहाल मुझे इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। देखते हैं किन किन सहेलियों से आज बातें होगी। और हमारा इंतजार हुआ खत्म और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमारी?
1: शीला सहनी, दिल्ली से।
0: शीला जी, क्या हाल चाल है? हाँ, शीला जी
1: अपना सही है, आप बताओ अपना हाल चाल।
0: जी हमारे भी हाल चाल बहुत अच्छे हैं। बताइए आप क्या करती हैं?
1: जूते लन का काम यहाँ होता है दिल्ली में, वही सब कर रही हूँ ऐसे फैक्ट्री में।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप व्यस्त रहती हैं, काम करती रहती हैं। मुझे एक बात बताइए, दिल्ली के क्या हाल चाल है?
1: दिल्ली में तो अभी थोड़ा गर्मी है और बाकी सब तो वैसे मौसम के हिसाब से चलते ही रहता
0: है। गर्मी से तो सभी परेशान हैं, पर मुझे एक बात बताइए कि गर्मी से राहत के लिए आप कौन से उपाय करती हैं, किस तरह से ऐसा कुछ करते हैं जिससे गर्मी कम लगे?
1: गर्मी के लिए क्या करेंगे, अपना सेहत पे ध्यान रखे हैं, धूप ऊप का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: यही तो सबसे बड़ी बात है कि हमें खूब पानी पीना है और बाहर निकलते वक्त छाता लेके
1: पी लो, ठंडा पी लो, जिसका होता है लस्सी पी लेते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और ये बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: मैम नीलकमल फिल्म का कोई सा सुना दीजिए।
0: सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: मैं निशा पाठक एयरपोर्ट रोड इंदौर से लगाया है।
0: निशा जी, क्या हाल चाल है
1: हाँ
0: आपके?
1: जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। बस ये मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मैं आपकी बहुत बहुत बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ,
0: क्या बात है,
1: विविध
0: शुक्रिया।
1: भारती की खास तौर पर।
0: जी जी
1: और मैं सालों से, आप समझ लीजिए, बचपन से विविध भारती सुनती चली आ रही हूँ और हेलो सहेली भी हमेशा सुनती हूँ। सखी सहेली तो फेवरेट है ही मेरा
0: अच्छा जी, निशा जी, आपके बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: जी। मैं सीनियर सिटीजन हूँ और दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, दो पोते हैं, उन्हीं के साथ में रहती हूँ
0: यानी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
1: जी। हाँ, ये समझ लीजिए कि रिटायरशिप में कर रही हूँ अब
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। हाल ही में
1: जी।
0: हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, तो क्या आप योगा करती हैं? योग से जुड़ी
1: जी
0: हुई हैं?
1: हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि मैं करीब 2010 से मैंने योगा को अपनाया है और मुझे उस योगा से बहुत बहुत फायदा मिला है।
0: किस तरह से फायदा है वो भी थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मुझे कमर में तकलीफ हो गई थी और मुझे थोड़ा वो भी है, ब्लॉकेज में भी थोड़ी है दिक्कत, तो उस वजह से फिर मैंने प्राणायाम भी शुरू करा और तीन चार आसन जो मेरे कमर से और स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित हैं वो आसन भी मैं करती हूँ। तो उन सब आसन और प्राणायाम से मुझे बहुत लाभ मिला। तो मेरी दवाइयाँ करीब करीब आप जो चल रही थी सिर्फ वो ही चल रही हैं, उसके आगे नहीं बढ़ी।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यानी आप जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं, साथ साथ अपना भी ध्यान रख रही हैं और पूरे परिवार
1: जी
0: के साथ
1: हाँ,
0: खुशहाल हैं।
1: सारी महिला समाज से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप घर गृहस्थी में भी ध्यान दीजिए, किंतु अपनी तरफ भी ध्यान दीजिए और अपने जो आपके शौक रह गए हों उन्हें आप, सीनियर सिटीजन जब आप बन जाती हैं तो आप कम से कम उन शौक को इस समय में आप पूरा कीजिए।
0: ये तो बहुत अच्छा संदेश दिया है। और बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: बंदिनी फिल्म का है, जिसको सुनकर मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। अब के बरस भेज भैया को बागुल, सावन में लीजो बुलाए।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना है और हम
1: जी
0: सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो मैम, नमस्कार। पूनम
0: नमस्कार। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: यादव लुधियाना से। हाँ
0: पूनम यादव लुधियाना से।
1: जी मैम,
0: पूनम जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: लेकिन मैं तो मतलब बस हाउस वाइफ हूँ मैडम जी।
0: हाउस वाइफ होना भी बहुत बड़ी बात है ना पूनम जी, पूरे परिवार का ख्याल
1: हाँ
0: रखती हैं आप, है ना?
1: हाँ जी मैडम जी,
0: और कौन से शौक हैं आपके?
1: हमारे शौक तो मैडम जी बस सिलाई कढ़ाई।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा शौक है ना, सिलाई करना,
1: हाँ
0: कढ़ाई करना, बुनाई करना। ये तो महिलाओं को इन्हें बचपन से सिखाया ही जाता था पुराने जमाने में, और ये कला जो
1: हाँ
0: होती है ना, अद्भुत है
1: जी
0: ये कला, हर कोई नहीं सीख सकता ये, है ना? और अभी
1: हाँ
0: लुधियाना
1: जी,
0: की क्या हालचाल है?
1: बहुत बढ़िया तो अब से बारिश होके अभी है, थोड़ा गर्माई, थोड़ा हवा, थोड़ा मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का।
0: यानी अभी आप मौसम का लुत्फ उठा रही हैं।
1: सारे मौसम आने बहुत ही जरूरी है मैडम जी, जिंदगी में हर मौसम अगर नहीं आएगा तो हमारी जिंदगी नहीं चलनी है।
0: क्या बात है। तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: एक प्रसाद फिल्म का गाना है, बॉबी देओल का, मतलब नहीं हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते दी।
0: नमस्ते, कहाँ से फोन लगाया और कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: जी मैं श्वेता भारती, जिला इंडिया ग्राम हिंसा से बोल रही हूँ।
0: क्या हालचाल है आपके?
1: बढ़िया है दीदी, आप बताओ कैसी हो?
0: जी हम भी मज़े में हैं, और आपसे बात करके और भी हम मज़े में हो गए, और भी खुश हो गए, है ना?
1: हम भी बहुत खुश हो गए, कॉल लग गया।
0: वैसे आप बताइए कि आप करती क्या है जिंदगी में?
1: जी दीदी घर पे रहते, घर के काम करते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और घर के काम करते करते खुद के लिए कभी वक्त निकालते हैं कि नहीं? एक अपने खुद के लिए कभी कभी ऐसा लगता है ना, ये काम करने में मुझे ज़्यादा आनंद मिलता है, यानी मुझे सिलाई करने में ज़्यादा आनंद मिलता है, या फिर मुझे गीत गाने में आनंद मिलता है, या फिर रेडियो
1: नहीं,
0: सुनने में?
1: मुझे गाने में आनंद मिलता है, रेडियो सुनती हूँ,
0: गाती भी है,
1: बहुत ज़्यादा सुनती हूँ, बहुत खुश हूँ विविध भारती से। जी दीदी
0: जी, और गाती भी हैं आप?
1: जी दीदी गाती हूँ।
0: तो गुनगुना के बताइए।
1: अच्छा गुनगुना के भी सुनाओ।
0: सुनाइए।

0: क्या बात है, कितना सुंदर भजन सुनाया आपने। तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए।
1: जी।
0: और आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जीत फिल्म का सुना दीजिए दीदी, कोई
0: तो जीत फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: भी सुना दीजिए।
0: जी ठीक है, जीत फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सई देशपांडे बोल रही हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से।
0: सई जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, स्केचिंग, पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब करती हूँ, और पब्लिशर भी हूँ। पुस्तकें पब्लिश हुई हैं हमारी, और पहले तो वैसे मैं हाउसवाइफ थी, बट मैंने हॉबीज अपनी डेवलप की और लेखन भी किया, तो लेखिका, कवयित्री, गायिका भी हूँ, और मेरा मेन प्रोफेशन अभी फिलहाल ये है कि मैं पेंटिंग और स्केचिंग करती हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर हैं, सारी
1: जी
0: कलाओं में आप निपुण हैं, है ना?
1: जी जी
0: और आपने संगीत कहा कि आप संगीत सीखी हुई हैं, तो कौन सा संगीत का प्रकार है, यानी आप शास्त्रीय संगीत सीखी है या सुगम संगीत, किस तरह के गाने आप गाती हैं?
1: जी मैं शास्त्रीय संगीत सीखी हुई हूँ, बट अभी फिलहाल मैं सुगम संगीत गाती हूँ और सेमी क्लासिकल गाती हूँ।
0: और जैसे आपने कहा कि पहले आप हाउसवाइफ थी, तो ऐसा होता है ना कि आमतौर पर महिलाओं को ऐसा लगता है कि हाउस वाइफ है, हम तो सिर्फ हाउस वाइफ हैं, पर घर संभालते हुए अपने हॉबी के लिए वक्त निकालना और आगे चल के उसी का प्रोफेशन चुन लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप उसी दौर से गुजरी हुई हैं कि आप पहले हाउस वाइफ थी, उसके बाद में आपने धीरे धीरे सारी कलाओं को सीख कर उसमें पारंगत हो गई हैं और आप अब प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। तो हमारी जो सखियां हैं, अन्य सखियां, उन्हें भी आपके बारे में सुनकर अच्छा लगेगा, तो अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जब मैं हाउसवाइफ थी तो तब मेरे एक्चुअली सास ससुर भी थोड़े एजेड थे और बच्चे भी छोटे थे, तो मैं पूरी तरह से परिवार की सेवा कर रही थी, यानी उनकी तरफ पूरा ध्यान देना। और मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ स्टेशन रहते थे, तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे थी, इसलिए मैंने उस वक्त घर के अंदर रहकर ही जो कुछ मैं कर सकती थी उतना किया, अपनी हॉबीज को डेवलप करती रही, टैलेंट्स को, यानी जैसे स्केचिंग है तो उसमें मैं खुद को डेवलप करती रही। और फिर आगे जाके मुझे उसमें फिर अपॉर्चुनिटीज मिली, बच्चे भी बड़े हो गए और घर से भी सपोर्ट था ही, यानी जहाँ जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती थी मैं करती थी, और अब तो मुझे ऑर्डर्स भी अच्छे आने लगे हैं और काफी प्रसिद्धि मिल चुकी है। तो मेरा ये कहना है सभी सखियों से कि अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी कुछ समय अपने लिए, खुद के लिए अवश्य निकालें, और जो कुछ भी आप में टैलेंट है उसको आप डेवलप करते रहें। भले ही उस वक्त आप बाहर ना भी जा पाए तो भी कम से कम 1-2 घंटा अपने लिए, खुद के टैलेंट के लिए निकालें और उसको डेवलप करते रहें, तो आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलती है।
0: ये तो बहुत अच्छा संदेश सारी सखियों के लिए आपने दिया। और एक सवाल आपसे कि ये सब काम करते हुए परिवार का आपको कितना सहयोग मिला?
1: जी ये जब मैं कर रही थी तो घर में, जब मैं जैसे अब बहुत से काम हमको करने पड़ते हैं, तो घर के सदस्यों ने घर के कामों में थोड़ी मदद अगर की तो हम हमको खुद के लिए भी टाइम निकालना पॉसिबल होता है। तो ये मेरे घर के सब सदस्य मुझे ये मदद करते हैं, और जब मैं बाहर जाती हूँ या मुझे कुछ ऑर्डर्स रहते हैं या गाने का कार्यक्रम होता है तो भी मुझे घर से बहुत सपोर्ट, मेरे हस्बैंड स्पेशली और बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं। तो घर के लोगों ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब घर

0: उसके अंदर का टैलेंट अगर वो डेवलप कर रही है तो उसको आप लोग सपोर्ट करें ताकि वो खुश रहे फाइनेंशियली भी। वो अगर इंडिपेंडेंट रहती है तो भी घर वालों को भी हेल्प उसकी होती ही है ना, तो घर वालों ने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे और अपनी हॉबीज को वो अगर प्रोफेशन में लेके आ रही है तो वो खुश भी रहेगी तो वो नेचुरली परिवार को भी खुश रखेगी।
1: ये बहुत सही बात आपने कही कि अगर एक महिला खुश रहती है तो पूरा परिवार खुश रहता है, और महिला को आगे बढ़ने में परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। तो ये हर अगर स्त्री को हर नारी को ऐसा सहयोग मिलता रहे तो हर नारी कुछ न कुछ आगे जाके बहुत अच्छा काम कर सकती है। और सही जी, जैसा आपने बताया कि आप गाती भी हैं, तो हम आपसे कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे।
0: जी जी, एक छोटे नवाब फिल्म का गीत है, लता जी ने गाया हुआ, आर डी बर्मन का संगीत है, वो मैं आपको सुनाती हूँ।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुरीली आपकी आवाज़ है और बहुत सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते रहिए। और
1: धन्यवाद
0: यही गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, यही गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है
1: जी? मेरा नाम जयश्री है।
0: कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: मैंने लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा से फोन लगाया है।
0: अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए इस बारे में।
1: जी ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में है और ये आपने सुना ही होगा डॉक्टर प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे के बारे में। तो उनका जो लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा में है वहाँ पे मैं काम करती हूँ।
0: क्या बात
1: और
0: है,
1: हाँ हाँ
0: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये हमने
1: जी
0: पढ़ा भी है उस बारे में और सुना भी है, और हमने उनके जीवन पर आधारित फिल्म भी देखी है।
1: जी
0: आप क्या काम करती है वहाँ पर?
1: यहाँ मुझे जो प्राथमिक कक्षा की जो शिक्षिकाएं होती है उनके साथ मुझे सहायक शिक्षिका करके काम करने का अवसर मिला है।
0: तो
1: हाँ,
0: वहाँ जाने की इच्छा कैसे जागृत हुई आपके मन में?
1: पहले तो मैंने ये लोक बिरादरी के प्रकल्प के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ मुझे पता था और पढ़ा भी था मैंने। मैंने प्रकाश बाबा आमटे ये फिल्म भी देखी थी जिसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला और तभी से मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मुझे कुछ समय यहाँ आकर काम करने का अवसर मिले। तो मैंने उनसे पूछताछ की तो मुझे ये अवसर अभी मिला है।
0: तो कैसा लग रहा
1: और
0: है आपको वहां जाकर?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ का वातावरण बहुत शांत है और प्रकृति के करीब है। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है और यहाँ का सेवा भाव और सादगी मेरे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है। तो इसलिए मैं यहाँ बहुत खुश हूँ यहाँ आकर।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है,
1: जी
0: क्योंकि जब हम अपनी खुशी से जीते हैं, यानी अपने खुशी का
1: जी
0: काम करते हैं, तो उसमें हमें अलग ही आनंद मिलता है, और आज वो खुशी आपको महसूस हो रही है। तो यहाँ की
1: जी
0: शिक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आप कि किस तरह से शिक्षा दी जाती है बच्चों को?
1: हाँ हाँ मैं जरूर दूंगी। मेरे विचार से यहाँ पे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और यहाँ पे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है ये वो केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं होता है बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास, स्वावलंबन और सामाजिक संवेदनशीलता निर्माण करना ये भी यहाँ यही की शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो यहाँ जीवनोपयोगी शिक्षा पर ज्यादा ये दिया जाता है, वो शिक्षा ज्यादा दी जाती है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, ये प्रकृति के सानिध्य में बसा हुआ है, तो बच्चों को बहुत करीब से प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलता है, नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: आपको भी वहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है, तो
1: जी
0: बताइए रेडियो कब सुनती हैं आप?
1: रेडियो में एक्चुअली मैं यहाँ आई तब यहाँ पे टीवी वगैरह कुछ है नहीं तो ज्यादातर मैं रेडियो सुनती हूँ और सखी सहेली ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कभी कभी न्यूज भी सुनती हूँ तो विविध भारती पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो रेडियो तो मैं सुनती रहती हूँ।
0: तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सारी जानकारी सुन के। तो बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: हमको मन की शक्ति देना यह प्रार्थना गीत बहुत पसंद है और यह गीत फिल्म गुड्डी का है जिसमें जया बच्चन जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। गीत इसलिए पसंद है क्योंकि यह गीत हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
0: तो यानी हमें मन से समृद्ध बनाता है ये गाना, तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो हमारे मन को हमेशा हमें मजबूत बनाए रखना है। तो चलिए जयश्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली। कौन
1: हेलो सहेली,
0: सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं कल्पना ठाकरे बात कर रही थी।
0: कहाँ से फोन लगाया?
1: मैं तहसील जुन्नार देव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं पार्षद रह चुकी हूँ, मेरा पार्लर भी चलता है, और महिला मोर्चा अध्यक्ष रह चुकी हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है ना?
1: जी हाँ, जी।
0: और आज आपकी आवाज़ में खुशी झलक रही है। क्या पहली बार फोन लगाया है आपका विविध भारती में?
1: हाँ, पहली बार ही फोन लगाया है, और बहुत पहले से मैं प्रयास कर रही थी, लेकिन आज मेरा कॉल लगा। बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: चलिए, ये मैंने कहा ना, आपकी खुशी आपके आवाज़ में झलक रही है। वैसे कल्पना
1: हाँ
0: जी,
1: जी
0: हर किसी की खुशी की एक अलग परिभाषा होती है। तो यानी
1: जी
0: किसी को किसी चीज़ में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज़ में खुशी मिलती है। तो आपकी खुशी की क्या परिभाषा है?
1: देखिए, खुद की खुशी के लिए तो हर कोई तत्पर रहता है। मुझे

0: कारण लोगों के जीवन में खुशियों के पल आए, इसलिए मैं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए हर संभव काम करती हूँ। जानकारी देती हूँ उनको, उनके फॉर्म भरना, बैंक के काम कैसे करना उन्हें बताती हूँ।
1: ये तो बहुत अच्छी बात लगी आपकी कि आप दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ लाने की कोशिश करती हो, जिसमें आप हर संभव प्रयत्न करती हैं कि उन्हें हर तरह से मदद मिले। तो इस बारे में हर कोई नहीं सोचता है, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है और इसी सोच के साथ आप खूब आगे बढ़िए। अब बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: जो संगीत का पहले से ही काफी शौक रहा है और यहाँ छोटे मोटे फंक्शन में भी मैं गालियाँ करती हूँ। मैं अपनी एक खास सहेली के साथ अपने कॉलेज के दिनों में एक गाना गाया करती थी जो मेरी पुरानी यादों को ताजा कर देती है, मैं वही गाना सुनना चाहती हूँ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा।
1: तो ये गाना गुनगुना के बताइए आप।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, कैसे हो? मंजू,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें? मंजू जी, कहाँ से लगाया फोन?
1: हाँ जी, हरियाणा हिसार से।
0: हिसार, हरियाणा से मंजू जी से बात हो रही है। बताइए मंजू जी,
1: हाँ जी,
0: क्या करती हैं आप?
1: मेरा सिलाई का काम है। हाँ
0: सिलाई का काम करती है, और सिलाई करते
1: जी,
0: करते रेडियो सुनती है।
1: हाँ जी,
0: कौन से कार्यक्रम सबसे अच्छे लगते हैं आपको?
1: विविध भारती के सुबह से लेकर शाम तक के।

0: रहते हैं, सारे ही अच्छे लगते हैं।
1: सारे कार्यक्रम पसंद है। और जैसे कि महिलाएं दिन रात काम करती हैं, खुद की ओर ध्यान नहीं दे पाती। 21 तारीख को सभी ने विश्व योगा दिवस मनाया, विश्व संगीत दिवस हम सभी ने मनाया। तो आप योग
0: हाँ
1: करती
0: जी,
1: हैं, व्यायाम करती हैं?
0: थोड़ा बहुत बस घर पे कर लेते हैं सुबह। ये
1: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: कन्यादान पिक्चर का है, लिखी जो खत तुझे वो फूल बन गई।
1: जी, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

सारे बन गए

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: बिहार पटना से इंदु चौबे।
0: इंदु जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया।
0: बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: या तो बहुत कुछ सुना लीजिए, पर आप तो निश्चिंत कीजिए, जिम्मेवार

0: कुछ भी नहीं है, बस आराम से मजे से बीज भारती सुनना, कुछ कुछ अपना किताबें पढ़ना, अपना दिनचर्या मेंटेन करना, लोगों से मिलना जुलना, बस ऐसी जिंदगी।
1: बहुत सुंदर जिंदगी जी रही हैं, यानी यूं कह लीजिए कि जिंदगी का बड़ी खूबसूरती के साथ लुत्फ उठा रही हैं, है ना?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: हाँ, और विविध भारती सुनती हैं आप?
0: बहुत बचपन से,
1: बचपन
0: मतलब गानों के प्रति शौक हुआ किशोरावस्था से सबसे।
1: और ये बताइए कि अभी हाल ही में हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, साथ ही संगीत दिवस मनाया, तो योग और संगीत का आपके जीवन में क्या महत्व है?
0: संगीत तो रच बस गया है, योग भी मैं करीब 10 साल से कभी कंटिन्यू, ऐसे तो मैं 20 साल से कर रही हूँ। मुझे साइटिका का अटैक हुआ तब से मुझे उस समय योग नहीं करके एक्सरसाइज ही सिखाया गया, और मैंने 3 महीना उस तक योग किया। अब तब से मैं नियमित रूप से घर में या बाहर कहीं भी रहूं मैं जरूर करती हूँ।
1: ये बहुत अच्छी बात आपने कही।
0: हाँ, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, और आपको तो सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि मैं 10 साल से थायराइड से पीड़ित थी, और इधर 2 साल

0: तब से मुझे उस समय योग नहीं करके एक्सरसाइज ही सिखाया गया, और मैंने 3 महीना उस तक योग किया। अब तब से मैं नियमित रूप से घर में या बाहर कहीं भी रहूं मैं जरूर करती हूँ।
1: ये बहुत अच्छी
0: और
1: बात आपने कही।
0: हाँ, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, और आपको सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि मैं 10 साल से थायराइड से पीड़ित थी, और इधर 2 साल से मैं कोई थायराइड का दवा नहीं ले रही हूँ। मेरा वजन भी कम हो गया और मैं अपना जो दिनचर्या है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उम्र के साथ तो आता ही है, लेकिन मैं आराम से डेली बीच में वॉक करती हूँ।
1: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि योग ने आपके जीवन में कितने सारे बदलाव
0: हाँ
1: लाए, सकारात्मक बदलाव लाए, जिसके
0: जी
1: बदौलत
0: जी
1: आप तंदुरुस्त जीवन जी रही है। तो हर महिला
0: मुझे
1: को ऐसे ही करना चाहिए कि कितने भी व्यस्त जिंदगी क्यों ना हो, योग को महत्व देना है। अपनी सेहत का हमें ध्यान रखना है। अगर हम अपना सेहत का ध्यान रखते हैं तो हमारा परिवार भी तंदुरुस्त रहेगा। और जब हम योग
0: बिल्कुल
1: करते हैं ना, तो हमारा देखा सीखे बच्चे भी करते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो भी तंदुरुस्त रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: लंबे हाथ का प्यार की राह दिखा दुनिया में, रफी जी की आवाज में।
1: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये
0: जी
1: गीत।

0: फिर से 4002462, दूसरा नंबर है 2867-0288, फिर से 2867-0288, और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें ताकि अन्य सखियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिले। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक नम्र विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फ़ोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारे सखियों के फ़ोन नहीं लग पाते। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है अनुश्री गुप्ता, संपादन नम्रता टिकोड़े का, हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस प्रकार हैं 400-24662,

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं अरुण शेखर की लिखी गीतों भरी कहानी, उन दिनों की बात है। वाचन स्वर अरुण शेखर का।
2: ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल से इमोजी भेजकर इश्क जाहिर करने का जमाना नहीं आया था। मोबाइल जैसी चिड़िया का उद्भव भी नहीं हुआ था। गूगल नाम का जिन्न भी तब तक अस्तित्व में नहीं आया था। जो भी खोजना हो किताबों से ही खोजना होता था। किताबें लाइब्रेरी में होती थी, साथ ही एक दूसरे को पढ़ती हुई निगाहें भी। रास्ता लोगों से ही पूछना होता था। रास्ते पूछने में कई बार रिश्ता बन जाता था। ये उन दिनों की बात है जब रिश्तों में अलाव थे, जब रिश्तों में ताव थे, जब रिश्तों में हाव भाव थे, जब रिश्तों में जान थी जिसे लोग हथेली पर लेकर घूमते थे, जब शहरों में रिक्शे पर जा रही लड़कियों के पीछे पीछे आशिक उन्हें उनके घर के पास तक छोड़कर आते थे, जब विश्वविद्यालय के नवनियुक्त अध्यापक साइकिल से भी नौकरी पर आते थे, जब लड़के दूर बैठे बैठे मजाक मजाक में लाल वाली, हरी वाली, लंबी वाली, सांवली वाली, गोरी वाली आपस में बांट लिया करते थे, जब अनजाने में ही किसी को अपना बना लेने का चलन था।

0: मैंने प्यार किया फिल्म की धूम थी। उसका एक संवाद बहुत प्रसिद्ध था, दोस्ती का एक उसूल होता है मैडम, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने प्यार किया कि कैप जिस पर लिखा होता था फ्रेंड फैशन में थी, तो टोपियां तो थीं पर कबूतर नहीं थे जो प्रेम पत्र ले जाते, तो ऐसी मंडली में कोई न कोई कबूतर बना लिया जाता था जो बिना शरारत के जस का तस प्रेम पत्र पहुंचा देता था। ये उस समय की बात है जब कई लड़के शहर में रहने के ठिकाने के चक्कर में वकील बन जाते थे, मतलब विश्वविद्यालय से कोई न कोई कोर्स करते ही रहते थे, कहीं न कहीं एडमिशन लिए ही रहते थे, जिसमें लॉ सबसे सही रहता था क्योंकि 5 साल की छुट्टी, और अगर एक दो बार फेल भी हो गए तो सुने पर सुहागा, जिससे हॉस्टल में रहने की परमानेंट व्यवस्था बनी रहे। जब लाइब्रेरी में जोड़े प्रेम की पींगे बढ़ाते थे, किताबों की अदला बदली होती थी और ये किताबें लिफाफे का काम करती थी। ये बात चल रही है नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ की, हालांकि यहाँ लक्ष्मण पार्क भी है, जब तब लखनपुरी का जिक्र होता रहता है।
1: ये

जब सिनेमा हॉल के आसपास से गुजरने पर भी घर में डांट पड़ती थी। जब जय भारत सिनेमा हॉल में पुरानी फिल्मों के टिकट 3 रुपए और साइकिल पार्किंग के 25 पैसे होते थे, जब इश्क करना बड़ी हिम्मत का काम हुआ करता था, उस समय मवाली, कसम पैदा करने वाली जैसी फिल्मों के साथ सरस्वती चंद्र, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में भी हॉल में लगती थी। तो ये कहानी है श्रीमान एक्स की, जो बहुत संघर्षशील कलाकार हुआ करते थे, परंतु प्रेम के मामले में बिल्कुल फिसड्डी थे। वैसे देखा जाए तो कला का मूल प्रेम ही है। अब किशन भगवान को ही ले लो, सबसे बड़े कलाकार और सबसे बड़े प्रेमी।

0: श्रीमान एक्स की 12वीं तक की पढ़ाई लड़कों वाले स्कूल में ही हुई। समझिए, यहाँ तक का जीवन पूरी तरह सूखे में गुजर गया। जब विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ तो वहाँ कन्याएं भी थी और हिंदी की क्लास में तो बहुतायत से, यानी हरियाली ही हरियाली। पहली बार कोएड, यानी कि जहाँ लड़के लड़कियाँ साथ पढ़ते थे, इस बात का अनुभव हो रहा था। अब समझिए कि श्रीमान एक्स की प्रेम कहानी शुरू होने का मौसम बन चुका था। उनके जीवन में अब तक प्रेम की फुहार तक न पड़ी थी, इसलिए बहुत ही खड़ूस टाइप के व्यक्ति बन गए थे श्रीमान एक्स। एक बार एक नाटक में प्रेम का अभिनय करना था। उसमें अपनी प्रेमिका से प्रेम का निवेदन करने वाले दृश्य का रिहर्सल करना था। श्रीमान जी के हाथ पैर सब कांपने लगे अपनी प्रेमिका का दुपट्टा छूने में। इतने में ही श्रीमान एक्स के पसीने छूट गए। तो प्रेमिका का अभिनय कर रही मोहतरमा ने समझाया कि आप आराम से अभिनय कीजिए, इतना घबराने की बात नहीं है। तो श्रीमान जी थोड़ा सहज हुए।
1: बाजू।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू।

ये उन दिनों की बात है जब जाड़े का मौसम था, रंग बिरंगे लिबासों से सजे धजे लोग आते थे। हालांकि गरीबों के लिए मौसम बहुत दुखदाई भी होता है, जैसे तैसे रातें कटती हैं। नए साल की शुरुआत होने वाली थी, इस बीच एक कन्या श्रीमान एक्स को अच्छी लगने लगी। जी हाँ, अच्छी लगने लगी। सुंदर सांवली सलोनी, लहराते गेसू, मोरनी सी चाल, सुराहीदार गर्दन, कुल मिलाकर रीतिकालीन कवियों की नायिका सी लगती थी। क्लास में नायिका भेद के वर्णन के दौरान वो सुश्री वाई के सपनों में खो जाते थे। हेलो हाय का कोई अवसर नहीं मिल पाता, कारण कि वो हमेशा अपनी एक सहेली के साथ रहती थी। खैर, मौसम मंगड़ाइयां ले रहा था, हवाओं में ठंड थी पर भावनाओं में पर्याप्त गर्मी थी, जिसका एहसास श्रीमान एक्स को बखूबी हो रहा था।

तो नए साल की आहट से श्रीमान एक्स के दिल में मुशायरे होने लगे, कवि सम्मेलनों की झड़ी लग गई। इश्क मोहब्बत का गाना जो भी सुनते उन्हें लगता उन्हीं के दिल की आवाज़ है। हालांकि कड़े संघर्ष के दिन थे, घर त्याग चुके थे, इसलिए अपनी पढ़ाई, रहने खाने के खर्च सबकी व्यवस्था करना आसान नहीं था। खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल मुश्किल से मिलता था, राशन कार्ड था नहीं, इसलिए विश्वविद्यालय में जाते समय भी साइकिल में 5 लीटर वाली प्लास्टिक की पिपिया यानी कि डिब्बा बंधा रहता था, जो उनकी अमीरी का ढोल पीटता रहता, उनके संघर्ष की महागाथा का ऐलान कर रहा होता। इसी में से प्रेम के लिए भी कुछ वक्त चुराना था। देखा जाए तो यही एक एहसास था जो ठंडी में भी गर्मी का एहसास बनाए रखता था। इसी के सहारे दिन गुजर रहे थे।

0: कर जाए।
1: तब नए साल और त्योहारों में ग्रीटिंग कार्ड भेजने का चलन था, उसमें फूल पत्ती बनाने, शेरो शायरी लिखने का फैशन था। कार्ड की तरह तरह की दुकानें रंग बिरंगे कार्डों से सज उठती थी। एक महीने पहले से ही लोग कार्ड खरीदने भेजने में जुट जाते थे। सारे रिश्तेदारों दोस्तों को कार्ड भेजे जाते थे, रिश्ते के अनुसार उसमें हिंदी अंग्रेजी भाषा में शुभकामनाओं का गुलदस्ता भेजा जाता था। 2 रुपए से लेकर 100-200 तक के कार्ड होते थे, एक से एक डिजाइन के कार्ड। किसी में घर बना होता, किसी में क्रिसमस ट्री, तो किसी में दिल को चीरता हुआ तीर भी होता, यानी विभिन्न प्रकार के कार्डों की धूम रहती। श्रीमान एक्स के मन में विचार आया कि यही सुनहरा मौका है सुश्री वाई को हलो बोलने का। अब कैसा कार्ड खरीदा जाए, कुछ सोच नहीं रहा था, ऐसा कोई पूर्व अनुभव भी नहीं था, और दूसरी बात, सुश्री वाई की पसंद नापसंद की कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, कविता लिखने की समझ जरूर आ गई थी, पर दिलभेक शायरी उनके पास नहीं थी जो सीधे सीधे असर कर दे। वो तो अज्ञे, धूमिल, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती के दीवाने थे। इसमें कनुप्रिया काम आ सकती थी। आप गलत समझ रहे हैं, कनुप्रिया उनकी कोई दोस्त नहीं थी, बल्कि धर्मवीर भारती की अद्भुत रचना। इस उधेड़ बुन में, इस असमंजस में

मुक्तिबोध की ये कविता बचपन में पढ़ी थी जो अभी तक जस की तस बैठी थी। मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती हैं। मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। इस कविता के भाव जैसा ही था श्रीमान एक्स का भाव, तो सबसे मजबूत हथियार कविता ही थी। कार्ड कैसा भी खरीदा जाए पर कविता शानदार लिखी जाएगी। समस्या ये थी कि कोई ऐसा मित्र भी नहीं था जिसके साथ अपनी भावनाएं साझा की जाएं, तो जैसे तैसे कार्ड खरीदा गया।

कुछ ही दिन बाकी रह गए थे नववर्ष के आगमन में। मौसम भी अपनी रंगत बदल चुका था। छात्र संघ के चुनाव भी कुछ ही दिनों में होने वाले थे, इसलिए नुक्कड़ सभाएं चल रही थी। बाहरी नेताओं का आना जाना भी शुरू हो चुका था, जो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे थे। इस मौके पर कई प्रतिनिधि पर्चे और गुलाब के फूल बांट रहे थे। श्रीमान एक्स को लगा ये अवसर भी हो सकता है सुश्री वाई को फूल देने का, लेकिन अपने ही विचार को उन्होंने खंडित कर दिया, ये सोचकर कि ये तरीका सही नहीं है। हालांकि प्यार और वार में सब जायज है कि कहावत सुनी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते थे। श्रीमान एक्स का मानना था कि हर कहावत तर्क संगत हो ऐसा भी नहीं है। कई कहावतें तो परिस्थितियों वश बना ली गई थी, पर हर परिस्थिति में उन्हें लागू करना ठीक नहीं। साथ ही उन्हें किसी नेता के पीछे घूमना पसंद नहीं था। कलाकार मन बहुत विद्रोही और भावुक होता है। उन दिनों बहुत सारे नेता विश्वविद्यालय में इसलिए एडमिशन लिए रहते थे कि उनको चुनाव लड़ना है,

पिताजी की उम्र को होने को आए थे, पर प्रण था कि बिना चुनाव जीते विश्वविद्यालय नहीं छोड़ना है, सो अभी तक लगे पड़े थे। इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं थीं कि चुनाव जीतने के जितने भी हथकंडे हो सकते थे सब आजमाए और वो काम भी आए। खैर, ये तो हुई माहौल की। इसी माहौल में बहुत सारे प्रेम प्रसंग हिलोरे ले रहे थे, लेकिन जो खुद भंवर में हो उसे दूसरे का डूबना कहाँ दिखाई देता है, इसलिए इस मामले में कोई किसी और से कुछ सीखना नहीं चाहता।

ढाला लिबास क्यों, रेशम पहनो कपास क्यों, फन ये जादूगरी का है, अरमा तुमको परी का है, तो किप

हाथ डाल ए गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास है तेरे होंठों की प्यास है, ए दिल भर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब गा।

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा

आखिर वो दिन आ ही गया जब श्रीमान एक्स को सुश्री वाई से हैप्पी न्यू ईयर बोलना था। कार्ड खरीद लिया गया था पर उस पर दिल के जज्बात उतारना बाकी था। सोचा चलो विश्वविद्यालय में ही लिख देंगे। बड़े उत्साह, घबराहट और न जाने कितनी भावनाओं की खिचड़ी के साथ पहुंचे। अब खिचड़ी क्या, तहरी कहना ज्यादा सही रहेगा। कौन सी भावना का प्राधान्य है समझ में नहीं आ रहा था। साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी की, हिंदी विभाग की तरफ पहुंचे कि कोई दिखाई नहीं दिया। सोचा चलो बरामदे में बैठकर कुछ न्यू ईयर की कविता बनाई जाए। अचानक सुश्री वाई की झलक दिख गई। अब श्रीमान एक्स के हाथ कांपने लगे। कुछ ठीक से लिखा नहीं गया। उन्हें बुलेट मोटरसाइकिल की धक धक सुनाई पड़ने लगी, लेकिन वो उन्हीं के दिल की धड़कन थी जो बेतहाशा धड़क रही थी। जैसे तैसे कुछ सामान्य सा लिखा, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, आप सदा प्रसन्न रहें। मतलब जैसे आशीर्वाद दे रहे हूं। ये लिखने में विरोधाभासी भावनाओं का ज्वार था। हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे बर्फ पड़ रही हो, 4 डिग्री तापमान हो। पसीना ऐसे छूट रहा था जैसे मई जून की दोपहरी हो। इन्हीं भावनाओं को समेटे हिमालय पर जाने जैसा साहस जुटाकर सुश्री वाई को खोजते खोजते श्रीमान एक्स मनोविज्ञान विभाग में पहुंचे। दूसरे तल पर सुश्री वाई अपनी सहेली के साथ खड़ी अपनी ही धुन में बतिया रही थी। पहले तो श्रीमान एक्स को लगा कि बस इनको ऐसे ही खड़े देखते रहें, उसकी मुस्कुराहट को जीते रहें।

0: लेकिन फिर ख्याल आया और सोचा कि बड़ी हिम्मत जुटाकर यहाँ तक आया हूँ, बात आगे बढ़ा ही दी जाए, फिर कब मौका मिले पता नहीं। फिर दोबारा इतनी हिम्मत जुटे न जुटे आगे बढ़ गए। कांपते गले से कहा, हेलो। वो बोली, जी कहिए। जी, कुछ नहीं, हैप्पी न्यू ईयर। मतलब हैप्पी में इतनी मुर्की थी कि कोई संगीत का उस्ताद सुन लेता तो पूछ बैठता, भैया कितने दिनों का रियाज है। बस इतना ही कह पाए थे श्रीमान एक्स, और बदले में थैंक यू मिल गया था। उस कंपन को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, उसका दोबारा अभिनय भी नहीं किया जा सकता। वो दिन है और आज का दिन, लोग पल भर के साथ में परिवार बना लेते हैं, लेकिन श्रीमान एक्स उन लम्हों को अभी तक किताबों में रखे गुलाब की तरह संजोए।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

उन दिनों की बात है। अभी आप सुन रहे थे अरुण शेखर की लिखी ये गीतों भरी कहानी। वाचन स्वर अरुण शेखर का था, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं।
3: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत कार्यक्रम में स्वागत करती हूं अपनी सभी सखियों का, आपकी प्यारी रेडियो सखी अर्चना उपाध्याय का प्यार भरा स्नेह भरा नमस्कार स्वीकार करें। उम्मीद करती हूं कि हमारी सभी सखियां खुश होंगी, स्वस्थ होंगी और गर्मियों की छुट्टियों का आनंद भी उठा रही होंगी और साथ ही साथ अपने पसंदीदा कार्यक्रम महिला जगत का इंतज़ार भी बड़ी बेसब्री से कर रही होंगी। सखियों, हम हाजिर हैं नए विषयों और रोचक जानकारियों के साथ। सखियों, हम महिलाएं अपने जीवन में दोहरी भूमिका निभाते हैं, घर के कामकाज के साथ साथ परिवार बच्चों की जिम्मेदारी और साथ ही साथ हमेशा हमारी कोशिश ये भी रहती है कि हम अपने परिवार के लिए कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकें, क्योंकि हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी फैमिली हर तरह से स्ट्रांग बने और समाज में हमारे परिवार की एक अलग पहचान बने। हमारी जो सखियाँ एजुकेटेड हैं वो तो सोचती ही हैं कि अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करें, लेकिन जो एजुकेटेड नहीं हैं उनकी भी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हम भी कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारा परिवार आर्थिक रूप से मजबूत बने। और इसीलिए सरकार द्वारा भी महिला उद्यमियों के लिए नई नई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिले और वो खुद को प्रूव कर सकें और परिवार में समाज में और देश में उनकी अलग पहचान बने और मान सम्मान भी मिले। जी हाँ सखियों, आपने बिल्कुल सही समझा, आज के कार्यक्रम में हमारे चर्चा का विषय भी यही है, महिला उद्यमिता हेतु केंद्र सरकार की योजनाएं। जानकारियों के अंतर्गत हम आपको बताने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस और मुहर्रम के विषय में भी बात करेंगे। विविधा में आज हम बताएंगे कि स्विमिंग पूल में नहाते समय कौन कौन सी सावधानियां जरूरी होती हैं। चलिए सखियों, शुरुआत करते हैं अपने पहले विषय से। सखियों, केंद्र सरकार महिला उद्यमियों के लिए उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त

बनाने और उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कई शानदार योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को आसान शर्तों पर लोन, सब्सिडी, अनुदान और मुफ्त प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। कुछ मुख्य योजनाओं के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY है। इस योजना का उद्देश्य छोटे व्यवसायों के लिए महिलाओं को बिना गारंटी के लोन देना। महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख तक का लोन मिलता है। इसे शिशु, किशोर और तरुण तीन चरणों में बांटा गया है। भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ाने के लिए उद्यमियों के रूप में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति के कारण देश में महत्वपूर्ण व्यवसाय और आर्थिक विकास हुआ है। देश में रोजगार के अवसर पैदा करके जनसांख्यिकी परिवर्तन लाकर और महिला संस्थापकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करके महिलाओं के स्वामित्व वाले व्यवसाय उद्यम समाज में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। देश में संतुलित विकास के लिए महिला उद्यमियों के सतत विकास को बढ़ावा देने की दृष्टि से स्टार्टअप इंडिया भारत में पहलों, योजनाओं और नेटवर्क और समुदायों को सक्षम बनाने और स्टार्टअप इकोसिस्टम में विविध हितधारकों के बीच भागीदारी को सक्रिय करने के माध्यम से महिला उद्यमिता को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को मासिक भत्ते प्रदान करता है, जिसमें स्टार्टअप इकाई में कम से कम 50% इक्विटी के साथ महिला संस्थापक, सह संस्थापक और स्टार्टअप फंडिंग और प्रोत्साहन के लिए अधिसूचना में निर्धारित अन्य मानदंडों को पूरा करने के लिए पात्र होते हैं। सखियों, दूसरी योजना की बात करें तो ये है उद्यम निधि योजना। सखियों, इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME में लगे महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसमें भी ऋण सीमा अधिकतम 10 लाख रुपए तक है। सखियों, सरकार की एक और अच्छी योजना है स्टैंड अप इंडिया स्कीम योजना। योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों के बीच हरित क्षेत्र ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने को बढ़ावा देना है। इसमें ऋण सीमा विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का बैंक ऋण दिया जाता है। सखियों, सरकार की एक और अच्छी योजना है जिसका नाम है उद्योगिनी योजना। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना में महिलाओं को 3 लाख तक का लोन और आय के आधार पर 30% तक की सब्सिडी दी जाती है। सखियों, महिला उद्यमियों के लिए ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एक डेवलपमेंट योजना, इसको शॉर्ट में ट्रेड भी कहा जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण, परामर्श और ऋण दिलाकर सशक्त बनाना है। इसमें सरकारी अनुदान ग्रांट के साथ साथ बैंकों के माध्यम से प्रोजेक्ट लागत का 70% तक का लोन मिलता है। इस योजना के माध्यम से लाभ उठाकर महिलाएं एक सफल उद्यमी बन सकती हैं। सखियों, जिन महिलाओं का मन घरेलू कामकाज में ज्यादा लगता है उनके लिए अन्नपूर्णा योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य व्यापार जैसे टिफिन सेंटर, कैटरिंग, फूड वेंडिंग है, जिसका जैसा व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाओं की मदद करना है। इस योजना के तहत 50,000 तक का लोन प्रदान किया जाता है। सखियों, सरकार द्वारा महिला उद्यमियों के लिए एक और योजना है जिसका नाम है महिला उद्यमिता मंच WEP वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। इसका उद्देश्य नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया एक मंच है। ये मंच भी एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सखियों, हम आगे भी आपको जानकारी देंगे इसके बारे में। पहले सुनते हैं एक मधुर गीत।

सखियों, उम्मीद है गीत आपको पसंद आया होगा। सखियों, हम बात कर रहे थे महिला उद्यमिता मंच के बारे में, WEP वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म। इसका उद्देश्य नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया एक मंच है। ये मंच एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो महिला उद्यमियों को वित्त पोषण, नेटवर्किंग और मेंटोरशिप यानी मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये योजना महिला उद्यमियों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, बैंकों और निवेशकों से ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करने में मार्गदर्शन प्रदान करता है। नेटवर्किंग का मतलब एक ऐसा समुदाय बनाना जहां महिलाएं अपने विचार साझा कर सकें और समान विचारधारा वाली संस्थाओं से जुड़ सकें। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा मेंटरशिप और प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें व्यावसायिक विशेषज्ञों द्वारा मुफ्त मार्गदर्शन, कौशल प्रशिक्षण और सलाह उपलब्ध कराई जाती है। सखियों, इस योजना के द्वारा सरकार महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट को भी बढ़ावा दे रही है, यानी महिलाओं को केवल लाभार्थी के दायरे से निकालकर राज्य और देश की अर्थव्यवस्था में सक्रिय भागीदारी निभाने का मौका दिया जा रहा है। सखियों, WEP योजना का ये प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से 4C के सिद्धांत पर काम करता है। पहला सी यानी कम्युनिटी, समुदाय, परस्पर सहयोग और जुड़ाव के लिए। दूसरा सी यानी कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण और कौशल विकास और प्रशिक्षण के लिए। तीसरा सी क्रेडिट, एक फाइनेंशियल असिस्टेंट, ऋण और वित्तीय सहायता, पैसों की पहुंच के लिए। और चौथा और अंतिम सी कंप्लायंस, अनुपालन, कानूनी और व्यवसायिक पंजीकरण संबंधी जानकारी के लिए। इसमें आवेदन करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। योजना का लाभ लेना और उसको लेने के लिए अपना व्यवसाय पंजीकृत करने के लिए महिला उद्यमी WEP की आधिकारिक पोर्टल पर जा सकती हैं। वेबसाइट पर रजिस्टर या साइन अप विकल्प का चयन करके अपनी व्यक्तिगत और व्यवसायिक जानकारी भरें। इसके बाद पोर्टल के माध्यम से आवश्यक इनक्यूबेशन, मेंटरशिप या लोन से जुड़ी सुविधाओं का चयन कर सकती हैं। अधिक जानकारी और पंजीकरण के लिए आप WEP की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। सखियों, जब महिला उद्यमी सफल होती है तो वो अपने परिवार और समुदाय में शिक्षा, पोषण, कल्याण और बच्चों के स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निवेश करने की अधिक संभावना रखती है। इसके अलावा उनके व्यवसाय अपने समुदायों को आवश्यक सेवाएं और अवसर प्रदान करने की अधिक संभावना रखते हैं। सखियों, आज मुहर्रम है, इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना। इसे मुस्लिम समुदाय में अत्यंत पवित्र माना जाता है। मुहर्रम खुशी का नहीं बल्कि त्याग, सत्य और न्याय की याद का समय माना जाता है। इस अवसर पर इमाम हुसैन और साथियों के बलिदान को याद किया जाता है। सखियों, उम्मीद करती हूँ कि अभी जो हमने आपको योजनाएं बताई महिला उद्यमियों के लिए, वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। और चलें अब एक और गीत सुनते हैं। तो चलिए सुनते हैं एक और मधुर गीत।

सखियों, उम्मीद है ये गीत भी आपको पसंद आया होगा। सखियों, आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है। नशा मुक्ति दिवस नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 26 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नशे के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करना और एक नशा मुक्त समाज का निर्माण करना है। नशा मुक्ति के लिए सकारात्मक वातावरण बनाना और युवाओं और आमजन को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। इस दिन विभिन्न विभागों और गैर सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा रैलियों, संगोष्ठियों और जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाता है। और इसके अतिरिक्त भारत में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को एक प्रस्ताव पारित करके यह तय किया था कि एक नशा मुक्त अंतर्राष्ट्रीय समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 26 जून को यह दिवस मनाया जाएगा। तब से हर साल इस दिन दुनिया भर में विशेष अभियानों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और उम्मीद की जाती है कि लोगों में जागरूकता आएगी और समाज में समझदार लोग नशे से दूर रहेंगे। सखियों, आज हम विविधा के अंतर्गत आपको बताने वाले हैं स्विमिंग पूल में नहाते समय कुछ सावधानियां रखना बहुत ही ज़रूरी होती है। सखियों, स्विमिंग पूल के पानी में क्लोरीन मिला होता है। यह पानी को साफ करने के लिए मिलाया जाता है। इसकी ज़्यादा मात्रा बहुत ही नुकसानदायक होती है, इसलिए जब भी पूल में नहाने का मज़ा उठाने जाएं तो कुछ सावधानियां ज़रूर याद रखें। गर्मी के मौसम में ज़्यादातर लोग स्विमिंग पूल में नहाने का मज़ा उठाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके नुकसान भी हो सकते हैं? ये एक ऐसा मज़ा है कि मज़ा तो मिलता है, लेकिन बाद में यदि कोई प्रॉब्लम हो जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए ये स्विमिंग जो है एक तरह का एक्सरसाइज भी है जो सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इसीलिए जब भी नहाने के लिए स्विमिंग में उतरें तो कुछ सावधानियां रखें। स्विमिंग पूल के पानी को साफ करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। ये पानी को साफ करने का काम करती है, लेकिन अगर क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो यह स्किन को नुकसान भी पहुंचा सकती है। इससे स्किन इन्फेक्शन, टैनिंग और सनबर्न जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने इंजॉय को शानदार बना सकते हैं। इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल में नहाते समय कुछ बातों का ख्याल भी रखें। पानी को साफ करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा हानिकारक हो सकती है। इसलिए जब भी स्विमिंग पूल में नहाने जाएं तो पता करें कि पानी में क्लोरीन की कितनी मात्रा है। अगर पानी में क्लोरीन की ज़्यादा मात्रा है तो नहाने से बचें, इससे स्किन संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए स्विमिंग पूल के पानी का pH वैल्यू 7 से 8 हो तभी नहाएं। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तब फंगल इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। काफ़ी लोग इस इन्फेक्शन की चपेट में आ जाते हैं। स्विमिंग पूल में नहाते के दौरान इस इन्फेक्शन के बढ़ने का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। घर्षण की वजह से शरीर में जहाँ ज़्यादा नमी होती है वहाँ फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। अंडरआर्म्स में, जांघों में, स्तन के नीचे और पैर की उंगलियों में फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। कई बार एक संक्रमित से दूसरे को भी ये बीमारी पहुंच सकती है। इसलिए जब भी स्विमिंग पूल में नहाएं तो ये सावधानियां रखें। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संक्रमण भी पहुंच सकता है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। सखियों, उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अब सुनते हैं एक और मधुर गीत।

उम्मीद है सखियों आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है, तो हम अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आपकी प्यारी रेडियो सखी अर्चना उपाध्याय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:23 हो गए हैं, समय हो चला है युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी का। बिना देरी के सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आज के युवाणी कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त भारती। कहते हैं जीवन में हर चीज़ की एक सीमा होती है। जब कोई बात, कोई आदत या कोई भावना अपनी मर्यादा से आगे बढ़ जाती है तो उसका परिणाम अक्सर नुकसान के रूप में सामने आता है। यही कारण है कि हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि अति के बाद क्षति निश्चित है। फिर चाहे वो क्रोध हो, विश्वास हो, प्यार हो या हमारी इच्छाएं हो, हर चीज़ अपनी सीमा में ही सुंदर लगती है। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा बोलना रिश्तों को कमज़ोर कर सकता है और ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना दूरियां बढ़ा सकता है। अत्यधिक विश्वास भी कभी कभी धोखे का कारण बन जाता है और अत्यधिक अहंकार भी इंसान को अकेला कर देता है। दोस्तों, हम प्रकृति से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा बारिश बाढ़ ला सकती है। जैसे नदी अपने किनारों में बहती है तो जीवन देती है, लेकिन जब वो सीमा तोड़ देती है तो विनाश लाती है। जैसे सूरज की किरणें ऊर्जा देती है, लेकिन उसकी भी अधिक तपिश परेशानी का कारण बनती है। कई बार हम रिश्तों में भी ऐसा ही कर देते हैं। रिश्तों से ज़्यादा हम दूसरी अन्य चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते हैं, जैसे काम को, पैसे को, सफलता को, और रिश्तों को तो हम पीछे छोड़ते चले जाते हैं, जिससे रिश्ते भी कमज़ोर हो जाते हैं। ये चीज़ें हमें थोड़े टाइम के लिए सुकून दे देती हैं, पर हमेशा के लिए शांति नहीं दे सकती। जब हम रुककर पीछे देखते हैं तो एहसास होता है कि अति ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया। जीवन का असली सौंदर्य ही संतुलन में है। ना तो किसी चीज़ की कमी अच्छी होती है और ना ही उसकी अति। जो सीमा में रहता है वही सुरक्षित रहता है और जो अति कर बैठता है वो अक्सर क्षति का सामना करता है। कई बार लोगों की सोच ये होती है कि जितना ज़्यादा होगा उतना ही बेहतर होगा, लेकिन बाद में वो ही नुकसान का कारण बन जाती है। ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें, ज़रूरत से ज़्यादा हस्तक्षेप या ज़रूरत से ज़्यादा शिकायतें रिश्तों की खूबसूरती को ही कम कर देती हैं। दोस्तों, ज़िंदगी कोई प्रतियोगिता नहीं है जहाँ हमेशा जीता जाए, जहाँ हर चीज़ में सबसे आगे निकलना ही हमारा उद्देश्य हो। जीवन एक सुंदर सी यात्रा है जहाँ उतार चढ़ाव काफ़ी हैं, लेकिन इन्हीं उतार चढ़ावों में हमें संतुलन बनाना आना चाहिए।

बार जब हम संतुलन बनाना सीख गए तो ये यात्रा और आसान लगने लगती है। हर चीज़ अपनी सीमा में ही सुंदर लगती है। जैसे दीपक की लौ भी हद में रहे तो उजाला करती है, और हद से आगे बढ़ जाए तो आग बन जाती है।

आज की इस विविधा में हम लाए हैं कुछ जानकारियाँ, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग बात को बार बार या दोबारा कहने के लिए कहते हैं,

तो ये आम बात नहीं है, बल्कि कम सुनने की समस्या भी हो सकती है। सुनने की क्षमता कम होना केवल बढ़ती उम्र की समस्या नहीं है, बल्कि आज के समय में तो ये तेज़ आवाज़ जो हम सुनते हैं, लंबे समय तक ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ बीमारियां या फिर हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी कई चीज़ें हमारी सुनने की क्षमता पर असर डाल सकती है। दोस्तों, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सुनने की समस्या अक्सर धीरे धीरे शुरू होती है। शुरुआत में व्यक्ति को लगता है कि आसपास बहुत शोर है और सामने वाला साफ नहीं बोल रहा, लेकिन असल में ये सुनने की क्षमता में आ रही कमी का संकेत हो सकता है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग सालों तक इस समस्या को पहचान नहीं पाते, और जब तक इलाज के बारे में सोचते हैं तब तक परेशानी काफ़ी बढ़ चुकी होती है। हमारे जो कान होते हैं वो आवाज़ तो सुनते ही हैं, साथ साथ वो मस्तिष्क तक सही जानकारी भी पहुंचाने में भूमिका निभाते हैं। जब सुनने की क्षमता कम होने लगती है तो व्यक्ति को बातचीत को समझने में, लोगों से जुड़ने में भी मुश्किल हो सकती है, और लंबे समय तक यदि समस्या हम नज़रअंदाज करते रहे तो इससे तनाव, अकेलापन और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियों का खतरा भी बढ़ सकता है। दोस्तों, सुनने की क्षमता कम होने का पहला संकेत ये होता है कि कई बार लोग आवाज़ तो सुन लेते हैं लेकिन शब्दों को ठीक तरह से समझ नहीं पाते, खासकर ऐसी जगहों पर जहाँ बहुत सारे लोग एक साथ बात कर रहे हों या आसपास शोर हो, वहाँ बातचीत समझना मुश्किल लगने लगता है। ऐसे में कुछ शब्द या अक्षर जो हैं साफ सुनाई नहीं देते, जिससे बातचीत भी अधूरी लगती है। एक संकेत ये भी है कि व्यक्ति सामने वाले को बात को बार बार दोहराने के लिए कहता है, और जब ये स्थिति ज़्यादा बार होने लगे तो इसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। सुनने की क्षमता में जो कमी आ रही है उसका एक और संकेत जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की आवाज़ बढ़ाना भी माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति को टीवी, मोबाइल या रेडियो की आवाज़ पहले की तुलना में ज़्यादा तेज़ रखनी पड़ रही है तो ये कानों की बदलती क्षमता का संकेत हो सकता है। चूँकि बदलाव धीरे धीरे होता है इसलिए लोगों को इसका जल्दी एहसास नहीं होता। जैसे हम फ़ोन पर बातचीत करते हैं तो उसमें भी हमें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आमने सामने बात करते टाइम तो हम चेहरे के भावों से, होठों की गतिविधि से और बॉडी लैंग्वेज से हम अर्थ समझ लेते हैं, लेकिन जब हम फ़ोन पर बात करते हैं तो एकमात्र ज़रिया होता है बात समझने का, वो है आवाज़। ऐसे में फ़ोन पर बातचीत करने में भी समस्या हो सकती है। इसके अलावा सीटी, घंटी या भनभनाहट जैसी कानों में आवाज़ सुनाई देती है तो ये भी एक संकेत हो सकता है। यदि ऐसी आवाज़ें लंबे समय तक बनी रहे तो दोस्तों हमें डॉक्टर या एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए।

0: दी हाँ? ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दिखा हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग
2: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है
4: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
2: आई नो ना
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
6: दोस्तों पुर्तगाल के महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कौन नहीं जानता जिन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं और इस बार तो इन्होंने एक ऐसा महारिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जिसे आज तक दुनिया का कोई भी खिलाड़ी छू नहीं सका है। रोनाल्डो ने उज्बेकिस्तान के खिलाफ अब मैच का अपना पहला गोल दागा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में रोनाल्डो का ये पहला गोल था और इसी के साथ इस महान खिलाड़ी ने इतिहास भी रच दिया। रोनाल्डो ने 6 अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दुनिया के पहले और इकलौते फुटबॉलर बन गए हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इससे पहले कतर में हुए 2022 में फीफा वर्ल्ड कप के दौरान घाना के खिलाफ गोल करके 5 अलग अलग वर्ल्ड कप में गोल करने का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन उज्बेकिस्तान के खिलाफ आया ये गोल उनके लिए बेहद खास था। ये रोनाल्डो के करियर का कुल 9वां वर्ल्ड कप गोल था। साल 2026 में अपने पहले फीफा वर्ल्ड कप से लेकर और अब तक रोनाल्डो ने जितने भी वर्ल्ड कप खेले हैं उन सभी में कम से कम एक गोल ज़रूर दागा है। पुर्तगाल के स्टार रोनाल्डो के बाद अर्जेंटीना के दिग्गज लियोनल मेसी दुनिया के दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने थे जिन्होंने 5 अलग अलग वर्ल्ड कप में गोल किया था और ये उपलब्धि उन्होंने अल्जीरिया के खिलाफ गोल करके हासिल की थी। लेकिन अब रोनाल्डो ने 6 अलग अलग वर्ल्ड कप में गोल दागकर मेसी और दुनिया के तमाम फुटबॉलर्स से एक कदम आगे निकल गए हैं। मैच में अपना दूसरा गोल दागने के साथ ही रोनाल्डो ने एक और ऐतिहासिक कारनामा कर दिया। वे पुर्तगाल के लिए सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। पुर्तगाल के लिए वर्ल्ड कप में क्रिस्टियानो रोनाल्डो से ज़्यादा गोल किसी ने नहीं किए हैं। उन्होंने फुटबॉलर यूसेबियो का रिकॉर्ड तोड़ दिया जिनके नाम 9 गोल दर्ज थे।

रोनाल्डो ने पुर्तगाल के लिए वर्ल्ड कप में 10वां गोल किया है। इतना ही नहीं दोस्तों, रोनाल्डो वर्ल्ड कप में गोल करने वाले दूसरे सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बन गए हैं।

दोस्तों, इस्लाम धर्म के नए साल की शुरुआत मुहर्रम महीने से होती है, यानी कि मुहर्रम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना होता है। इसे हिजरी भी कहा जाता है। हिजरी सन की शुरुआत इसी महीने से होती है। यही नहीं, मुहर्रम इस्लाम के चार पवित्र महीनों में से एक है। इमाम हुसैन

और उनके फॉलोअर्स की शहादत की याद में मुस्लिम लोग मुहर्रम मनाते हैं। इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद के नाती थे जो करबला के जंग में शहीद हुए थे। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है, इसके लिए हमें उस समय की घटना के बारे में जानना होगा जब इस्लाम में खिलाफत यानी खलीफा का राज था। ये खलीफा पूरी दुनिया के मुसलमानों का प्रमुख नेता होता था। पैगंबर साहब की वफात के बाद 4 खलीफा चुने गए थे और लोग आपस में तय करके इसका चुनाव करते थे। लेकिन इसके लगभग 50 साल बाद इस्लामी दुनिया में घोर अत्याचार का दौर आया। मक्का से दूर सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया और उसके काम करने का तरीका बादशाहों जैसा था, जो उस समय इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ था। तब इमाम हुसैन ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। तब यजीद ने उसे समझाने और न मानने पर उसे मरवाने का आदेश दिया। मुहर्रम महीने में हुसैन अपने परिवार के साथ करबला में थे और वहीं पर यजीद की सेना भी आ गई और उन्होंने सेना को सही रास्ते पर लाने के लिए वो समझाइश देते रहे, लेकिन सेना नहीं मानी।

0: अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: आईना
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर शामिल होने की अपील की।
3: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
2: श्री शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही अपने आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज कहा कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि AI विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। चर्चा शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर केंद्रित रही। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों का त्वरित निवारण और व्यापार करने में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया पुरस्कार में भारत और ब्रिटेन के संबंधों को उन्नत बनाने में असाधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री गोयल ने कहा कि ये सम्मान सरकारों, व्यवसायों, शिक्षाविदों, संस्कृति और जीवंत प्रवासी समुदाय के उन सभी सेतु निर्माताओं का है जो दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में निरंतर योगदान दे रहे हैं। श्री गोयल ने कहा कि 15 अगस्त से प्रभावी होने वाला भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता ब्रिटिश संसदीय इतिहास में सबसे तेजी से लागू होने वाला

0: अपार समझौता बन जाएगा। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली प्राथमिकी में नामजद 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये प्राथमिकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल की सिफारिश के बाद दर्ज की गई थी। बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट मैच भारत और आयरलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। FM बैंड 103.1 MHz पर शाम के 6:05 हुए हैं। समय हो गया है कार्यक्रम विवरण का, आइए सुनते हैं।

लीजिए सुनेगा हमारे आज के शेष रहे विशेष कार्यक्रमों के बारे में विस्तार से जानकारी। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, समय रहेगा 6:23। तत्पश्चात आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी और 6:45 पर आप सुन सकते हैं राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। फिल्म संगीत सुनेगा शाम 6:10 पर और ग्राम भारती कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7:00, जिसमें आज चर्चा रहेगी अनार की उन्नत उत्पादन तकनीक। साथ ही साथ आप सुनेंगे भेंट वार्ता, खरीफ में बाजरा का अधिक उत्पादन कैसे लें। अर्चना बुनकर सहायक कृषि अधिकारी कृषि पर्यवेक्षक माधोगढ़ से आपको बातचीत सुनवाएंगे। साथ ही आप लेंगे जानकारी स्वचालित ड्रिप सिंचाई अपनाएं। आपका मनोरंजन करेंगे लोकगीत के साथ और आपको देंगे मौसम और बाजार भाव की जानकारी।

फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 7:30 पर और लोक संगीत सुनिएगा 8:15 पर। समाचार संध्या आप सुन पाएंगे 8:45 पर। 9:00 का समय रहेगा समाचार अंग्रेजी का और 9:15 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम। हिंदी में समाचार पुनः सुनिएगा 11:00 और हमारी आज की सभा समाप्त होगी हमेशा की तरह 11:05 पर।

लीजिए अब सुनिएगा हमारी कल की सभा में प्रसारित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनका प्रसारण समय। प्रातः 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 6:05 पर सुनिएगा वंदनवार चिंतन। कार्यक्रम झरोखा आप सुन पाएंगे प्रातः 6:23 पर और श्री रामचरित मानस गान सुनिएगा 6:35 पर। आप सुन पाएंगे संगीत सरिता नमस्कार अलवर, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 7 बजे। फिल्म संगीत प्रसारित किया जाएगा प्रातः 7:23 पर और समाचार प्रभात आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से, समय रहेगा प्रातः 8 बजे। सुगम संगीत सुनेगा प्रातः 8:15 पर।

8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम बातें फिल्मों की। फिल्मी गीत जो दिखाते हैं जिंदगी की राहें। स्वर होगा ललिता यादव का और प्रस्तुत करता होंगे शिव कुमार शर्मा। हिंदी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे प्रातः 9:00 आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से और 9:10 से आप सुन पाएंगे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण समय रहेगा 5:30 और 5:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला जगत। अभी आप सुन रहे थे हमारे आज और कल प्रसारित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनका प्रसारण समय। कार्यक्रम विवरण में हम बोल रहे हैं आकाशवाणी अलवर की सरिस्का चैनल से FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:10 हो चुके हैं, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में आप सुनने जा रहे हैं महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म हमराज का गीत। शाहिर लुधियानवी का गीत है और रवि का संगीत।

गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और आनंद बख्शी का गीत। श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। लीजिए सुनिएगा कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म आन मिलो सजना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप ये गीत सुनेंगे। आनंद बख्शी का गीत है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

लीजिए सुनिएगा कार्यक्रम का आखिरी गीत। अनुराधा पोटवाल कुमार शानू की आवाज में आप ये गीत सुनेंगे। आशिकी फिल्म का गीत है, समीर का गीत और नदीम श्रवण का संगीत।

0: फिल्म आशिकी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से FM बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, तत्पश्चात जिले की चिट्ठी और 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय आयोजन कल जयपुर में राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी की लॉन्चिंग होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मातम के बीच कर्बला में ताजिए दफनाए जा रहे हैं और प्रदेश में बीते 24 घंटों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज। मॉनसून के अगले हफ्ते तक और आगे बढ़ने की संभावना। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर जयपुर में कल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाले समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण अनुदान और सब्सिडी के डमी चेक प्रदान करेंगे। वेरिको की योजनाओं के लाभार्थियों को भी भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर सौंपेंगे। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी ODOP कॉफी टेबल बुक और रैम पोर्टल भी लॉन्च किए जाएंगे। समारोह में रिको की डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी के आवंटन पत्र और ऑफर लेटर भी प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, राज्य मंत्री KK विश्नोई सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। युवाओं और नई पीढ़ी में नशे तथा मादक पदार्थों के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने और उन्हें जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर देश प्रदेश में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। श्री शाह ने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान 1,18,00,000 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों को जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं।
2: इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 26 से 29 का जो रोडमैप है वो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस। इसका उद्देश्य है पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें। दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल। उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम रखे गए। डीग में जिला कलेक्टर राजकुमार कसवां की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें लोगों को नशा मुक्त भारत अभियान की जानकारी दी गई। नागौर में साइकिल जागरूकता रैली निकालकर नशा नहीं करने का संदेश दिया गया। जैसलमेर में माए भारत के स्वयं सेवकों

0: ने नशे के दुष्प्रभावों को लेकर आम जन को जागरूक किया। पाली के बाली में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान समाज को नशे के नुकसान से जागरूक किया गया और नशा मुक्त भारत के निर्माण में सहयोग करने का संदेश दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके तहत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। हालांकि जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल से आगामी 4 जुलाई से उड़ानें संचालित हो जाएंगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में पत्रकारों को बताया कि नए टर्मिनल से हवाई सेवाएं शुरू होने से पश्चिमी राजस्थान की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यहां पर्यटन और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।
1: जोधपुर का हवाई अड्डा केवल जोधपुर शहर के लिए नहीं अपितु पूरे पश्चिम राजस्थान के लिए एयर कनेक्टिविटी का एक बड़ा साधन है। जिस तरह की डिमांड बढ़ी थी, उस बढ़ी हुई डिमांड के चलते हुए हमारे पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत दबाव भी था और ये मांग थी, आवश्यकता थी कि हम एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनाएं। ये सपना 4 तारीख को साकार होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहीदों की याद में जुलूस के साथ ताजिए निकाले जा रहे हैं। इन्हें करबला मैदानों में परंपरागत तरीके से दफनाया जा रहा है। इससे पहले प्रदेश भर में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मजलिसें और धार्मिक सभाएं आयोजित की गई। जयपुर के रामगंज, दिल्ली रोड और चार दीवारी क्षेत्र में जगह जगह लंगर और पानी की छबीलें लगाई गई। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर मुहर्रम के मौके पर बड़ी संख्या में जायरीन ने फातिहा पढ़ी। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज मुहर्रम की 10वीं तारीख आशुरा के अवसर पर अजमेर दरगाह शरीफ सहित जिले भर की मस्जिदों में अकीदत और एहतराम के साथ विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में फातिहा पढ़ा गया। वहीं देश भर से आए जायरीनों द्वारा नमाज अदा कर अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है। दरगाह शरीफ से छोटे बड़े ताजियों का जुलूस निकाला जा रहा है, जिसे फजर से पहले झालरा के में सहराब किया जाएगा। नलमद हारिज, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आमजन से इस मॉनसून के दौरान अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने आज जयपुर के निमेड़ा स्थित एक गौशाला में आयोजित धार्मिक आयोजन में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति भारतीय मूल्यों का आधार है। राज्यपाल ने गायों को चारा खिलाकर लोगों को जीवों के प्रति करुणा और दया भाव बनाए रखने का आग्रह किया। देश को सर्वाधिक सैन्यकर्मी देने वाला झुंझुनू जिले के वायु सैन्यकर्मी सुरेंद्र मोगा के सर्वोच्च बलिदान को नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट में शामिल किया गया है। सार्जेंट मोगा ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के लिए प्राण न्यौछावर किए थे। उनके साथ 5 अन्य जवानों को भी वेबसाइट के रोल ऑफ ऑनर में सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही युद्ध स्मारक की 3D वॉल पर भी सुरेंद्र मोगा का नाम अंकित किया गया है। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में एक प्रश्न के उत्तर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद भारतीय सैनिकों की सही सूची देश को देने की बात कही थी। भीलवाड़ा में जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र की ओर से औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर लगाया गया। जिला महाप्रबंधक कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि इस अवसर पर युवा संबल मेला भी आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्यमी के तौर पर प्रोत्साहित करने और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना था। झुंझुनू जिले के कुतुबपुरा गांव में नाबार्ड और डालमिया सेवा संस्थान की ओर से आज नॉन वाटर शेड परियोजना का शुभारंभ हुआ। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर R. रवि बाबू ने ग्रामीणों को

वर्षा जल संरक्षण अपनाने और खेतों में अजोला और कम पानी की फसलें उगाने का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र में बैंकिंग सेवा के विस्तार और रोजगार परक प्रशिक्षण योजनाओं की शुरुआत की भी बात कही। और अब मौसम। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी और पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। इस दौरान दक्षिणी जिलों में भी कई जगह पर तेज बारिश रिकॉर्ड हुई। मौसम विभाग के अनुसार झालावाड़ जिले के अकलेरा में सर्वाधिक 5 सेंटीमीटर बारिश रिपोर्ट हुई। राजधानी जयपुर सहित आसपास के इलाकों में आज बादल छाए रहे और कई जगह पर बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और कोटा संभाग में प्री मानसून की बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। इस बीच मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ और भागों में भी आगे बढ़ा है। इसके अगले हफ्ते तक मध्य और उत्तरी भारत तक पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। IRCTC ने नया पर्यटन सर्किट डिवाइन ईस्ट टेंपल टूर शुरू किया है। इसके लिए भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी। प्रायोगिक तौर पर शुरू होने वाली इस 11 दिन की रेल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर जाने का मौका मिलेगा। इसके लिए IRCTC के टूरिज्म पोर्टल पर या IRCTC पर्यटन कार्यालयों पर बुकिंग कराई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय आयोजन कल जयपुर में राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी की लॉन्चिंग होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मातम के बीच कर्बला में ताजिए दफनाए जा रहे हैं। और प्रदेश में बीते 24 घंटों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज, मॉनसून के अगले हफ्ते तक और आगे बढ़ने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख अजय सिंह शक्तावत ने तैयार किया है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाने वाला मातमी पर्व मोहर्रम आज श्रद्धा के साथ मनाया गया। जिले में सुबह से ही रंग बिरंगे ताजिए निकाले गए। इस दौरान मोमिनों ने हैरतअंगेज प्रदर्शन किए। इससे पहले प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए शहर की निगरानी बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए। शांति समिति की बैठक में जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने जुलूस के दौरान अफवाह, नशा, गुंडागर्दी या अव्यवस्था फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। साथ ही आमजन से शांति और सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की। पिछले दिनों पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी चित्तौड़गढ़ प्रवास पर रहे। राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष ने चित्तौड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सहकारी संस्थाएं समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रभावी माध्यम है। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बैंक की प्रगति और आधुनिक बैंकिंग सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी संस्थाएं आम जन को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन ने दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में पूजा अर्चना कर राष्ट्र कल्याण की प्रार्थना की। इस अवसर पर 12 साल विश्वास के जन कल्याण के की थीम पर 3 दिवसीय

जिला प्रदर्शनी भी लगाई गई। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय वयोश्री के तहत राज्य सरकार एवं एलिम्को के सहयोग से इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और सांसद सीपी जोशी ने शिरकत की। शिविर में 800 वरिष्ठ नागरिकों को 75 लाख रुपए मूल्य के सहायक उपकरण वितरित किए गए। पिछले दिनों चित्तौड़गढ़ सांसद और एयरपोर्ट सलाहकार समिति के अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में उदयपुर में एयरपोर्ट सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद सीपी जोशी ने उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट को पश्चिम भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एवं विमानन केंद्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने एयरपोर्ट पर टर्मिनल विस्तार, वाईफाई, डिजिटल सूचना प्रणाली, रनवे विस्तार, कार्गो हब एवं एयरो सिटी विकास की संभावना पर विस्तृत रोड मैप तैयार करने का भी सुझाव दिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने भारतीय पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग, नगर परिषद और यूआईटी अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर ने दुर्ग पर हुए अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई कर अतिक्रमण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और अतिक्रमणों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में दुर्ग में विकसित की जाने वाली मूलभूत सुविधाओं, विद्युत साज सज्जा और यातायात प्रबंधन को भी प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ई वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण के लिए वेस्ट संग्रहण अभियान का शुभारंभ करते हुए ई वेस्ट रथ को रवाना किया गया। जिला कलेक्टर ने आमजन से पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने की अपील की। इसी कड़ी में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत चित्तौड़ दुर्ग पर महास्वच्छता अभियान चलाया गया। जिले में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संकल्प और उत्साह के साथ मनाया गया। जिले भर में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में योग गुरु सुरेश शर्मा और डॉक्टर मुकेश माली ने योगाभ्यास कराया। कार्यक्रम के दौरान योग स्थल पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का भी लाइव प्रसारण किया गया। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

पहलियां आज री खास खबरां अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस रे मौके माथे राज्य स्तरीय आयोजन काले जयपुर माए राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी री लॉन्चिंग वेला गृह मंत्री अमित शाह अंतरराष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस रे मौके नशे रे खिलाफ एकजुट होर युद्ध छेड़ने रो हेलो करियो हजरत इमाम हुसैन री शहादत रो प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम रे साथे मनायो जा रियो है मातम रे बीचे करबला माए ताजिया दफनाया जा रिया है और प्रदेश माए लाडला 24 घंटा माए कुछ एक थोड़ा माथे बिरखारी गतिविधियां जारी मॉनसून रे अगले हफ्ता ताई और आगे बदवारी आस समाचार रे साथे मैं संगीता शर्मा और अबे समाचार विगतवार अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस रे मौके माथे काले कार्यक्रम राख्या जावेला कॉन्स्टिट्यूशन क्लब माए होवण वाला इन जलसा माए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्योग तथा वाणिज्य विभाग री योजना वाला लाभार्थियां ने कर्ज अनुदान और सब्सिडी रा डमी चेक दिया जावेला वे रिकोरी योजना वाला लाभार्थियां ने भी भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर सौंपेला प्रदेश माए पहली दफा राख्या जा रिया इन कार्यक्रम रे चालता राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी ओडीओपी कॉफी टेबल बुक और रैंप पोर्टल भी लॉन्च करेला जलसा माए रिकोरी डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी रा आवंटन पत्र और ऑफर लेटर भी दिया जावेला कार्यक्रम माए उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और राज्य मंत्री के विश्नोई समेत वरिष्ठ अहलकार मौजूद रहेला आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है युवावां और नूवी पीढ़ी माए नशा और मादक पदार्थां रे बद्धता इस्तेमाल ने रोकने और वाने जाग

0: इकट्ठू करने खातिर ओ दिन मनायो जावे है। इन मौके माथे देश प्रदेश माए न्यारी न्यारी गतिविधियां राखी जी। नवी दिल्ली माए नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर री मीटिंग माए गृह मंत्री अमित शाह नशे रे खिलाफ एकजुट वेर युद्ध छेड़ने रो हेलो करो। वणा कहो कि मादक पदार्थां रो ओ कारोबार देश री सुरक्षा सामाजिक व्यवस्था आर्थिक हितां और युवावां रे भविष्य खातिर मोटो खतरो है। श्री शर्मा आध्यात्मिक नेतावां युवावां और मातावां सू इन अभियान माए मिलर भाग लेवारी अरज करी है। इन मौके माथे श्री शाह कहो के वारी सरकार रे कार्यकाल रे चालता 1,18,00,000 किलो सू 32 नशीला पदार्थां ने जप्त करो गयो है। वणा कहो कि ओ आंकड़ो नशीला पदार्थां री तस्करी रे खिलाफ सरकार री लगातार कार्रवाई ने दर्शावे है।
1: इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 26 से 29 का जो रोडमैप है वो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस। इसका उद्देश्य पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें। दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल। उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस माथे प्रदेश माए न्यारी न्यारी जगावा माथे कार्यक्रम राख्या गया। डीग माए जिला कलेक्टर राजकुमार कसवारी अध्यक्षता माए कार्यक्रम राख्यो जो इन माए लोगा ने नशा मुक्त भारत अभियान री जानकारी दी। नागौर माए साइकिल रैली निकालर नशो नी करने रो संदेश दियो। जैसलमेर माए भी भारत रा स्वयं सेवका नशा रे दुष्प्रभावां रा बारा माए जानकारी दी। पाली रा बाली माए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय री कानीसू कार्यक्रम राख्या गया। इन रे चालता समाज ने नशे रे नुकसान सू जागरूक करियो गयो और नशा मुक्त भारत रे निर्माण माए सहयोग करने रो संदेश दियो गयो। स्वास्थ्य मंत्रालय दवा नियमा माए संशोधन रो मसौदो जारी करियो है। इन रे तहत आयात करी जावण वाली दवावां री बचोड़ी वैधता अवधि यानी सेल्फ लाइफ आयात रे बखत कम सू कम 12 महीना होनो जरूरी वेला। हालांकि जैविक दवावां और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवावां खातिर मौजूदा नियम लागू रहवेला। इन खातिर आयात्री बकत कम सू कम 60% सेल्फ लाइफ होनो जरूरी वेला। मंत्रालय रे मुजब इन संशोधन सू दवावारी गैर जरूरी बर्बादी कम वेला और दवा भंडार रो बेहतर उपयोग वे सकेला। मंत्रालय स्पष्ट करियो है ओ प्रस्ताव केवल आयात रे बकत दवावारी बचोड़ी सेल्फ लाइफ सू जुड़ियोड़ो है। जोधपुर हवाई अड्डा माथे नुआ टर्मिनल सू आवती 4 जुलाई सू उड़ाना संचालित वेला। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर माए पत्रकारा ने बतायो कि नुआ टर्मिनल सू हवाई सेवावां शुरू होने सू पश्चिमी राजस्थान री कनेक्टिविटी बदली और पर्यटन और औद्योगिक विकास ने नुवी ऊंचाइयां मिलेली।
2: जोधपुर का हवाई अड्डा केवल जोधपुर शहर के लिए नहीं अपितु पूरे पश्चिम राजस्थान के लिए एयर कनेक्टिविटी का एक बड़ा साधन है। जिस तरह की डिमांड बढ़ी थी उस बढ़ी हुई डिमांड के चलते हुए हमारे पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत दबाव भी था और ये मांग थी आवश्यकता थी कि हम एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनाए। ये सपना 4 तारीख को साकार होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे।
0: ऐ समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सुन रिया हो। पैगंबर मोहम्मद रा नवासा हजरत इमाम हुसैन री शहादत रो प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम रे साथे मनायो जा रियो है। इन मौके माथे शहीदारी याद माए जुलूस रे साथे ताजिया निकालिया जा रिया है। इन्हें करबला मैदान माए परंपरागत रीत सू सुपुर्दे खाक करियो जा रियो है। इन सू पहलिया प्रदेश भर माए मुस्लिम बाहुल्य इलाका माए मजलिसा और धार्मिक सभावां राखी जी। जयपुर रा रामगंज दिल्ली रोड और 4 दीवारी खेतर माए जगह जगह लंगर और पानी री छबीला लगाई जी। अजमेर माए मुहर्रम रे मौके माथे खासो उछास देखियो जा रियो है। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती री दरगाह माथे फातिहा पड़ी और ब्यूरो माणा खबर नवीसू।
3: आज मुहर्रम की 10वीं तारीख आशुरा के अवसर पर अजमेर दरगाह शरीफ सहित जिले भर की मस्जिदों में अकीदत और एहतराम के साथ विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में फातिहा पढ़ा गया। वहीं देश भर से आए जायरीनों द्वारा नमाज अदा कर अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है। दरगाह शरीफ से छोटे बड़े ताजियों का जुलूस निकाला जा रहा है जिसे फजर से पहले झालरा के में सहराब किया जाएगा। नलमा दारीच आकाशवाणी समाचार अजमेर।

राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आम जनसू इन मॉनसून रे चालता 32 पेड़ लगाने रो हेलो करियो है। राज्यपाल आज जयपुर रा निमेड़ा थापी ते गौशाला माए राखीजा धार्मिक आयोजन माए भाग लियो। इन मौके माते वणा कहो कि सनातन संस्कृति भारतीय मूल्यारो आधार है। राज्यपाल गाया ने चारो खिलार लोगा ने जीवा रे प्रति करुणा और दया भाव बनाए राखने री अरज भी करी। देश ने सबसू 32 सैन्य कर्मी देवन वाला झुंझुनू जिला रा वायु सैन्य कर्मी सुरेंद्र मोगा रे सर्वोच्च बलिदान ने नेशनल वॉर मेमोरियल री वेबसाइट माए भेड़ो करियो गयो है। सार्जेंट मोगा ऑपरेशन सिंदूर रे चालता देश खातिर आपरा प्राण न्योछावर करया हा। मारे साथे दूजा 5 जवाना ने भी वेबसाइट रे रोल ऑफ ऑनर माए भेड़ो करियो गयो है। इनरे साथे ही युद्ध स्मारक री 3D वॉल माथे भी सुरेंद्र मोगा रो नाम लिखियो गयो है। ध्यान जोग है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद माए एक सवाल रे जवाब माए ऑपरेशन सिंदूर रे चालता शहीद भारतीय सैनिकारी सही सूची देश ने देने री बात कही ही। भीलवाड़ा माए जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र री कानिसू औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर लगायो गयो। जिला महाप्रबंधक कमलेश कुमार मीणा बता

देश ने सबसू बत्ती सैन्य कर्मी देवन वाला झुंझुनू जिला रा वायु सैन्य कर्मी सुरेंद्र मोगा रे सर्वोच्च बलिदान ने नेशनल वॉर मेमोरियल री वेबसाइट माए बेड़ो करियो गयो है। सार्जेंट मोगा ऑपरेशन सिंदूर रे चालता देश खातिर आपरा प्राण न्योछावर करया हा। मारे साथे दूजा पांच जवाना ने भी वेबसाइट रे रोल ऑफ ऑनर माए भेड़ो करियो गयो है। इनरे साथे ही युद्ध स्मारक री 3D वॉल माथे भी सुरेंद्र मोगा रो नाम लिखियो गयो है। ध्यान जोग है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद माए एक सवाल रे जवाब माए ऑपरेशन सिंदूर रे चालता शहीद भारतीय सैनिकारी सही सूची देश ने देने री बात कही ही। भीलवाड़ा माए जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र रिकानीसू औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर लगायो गयो। जिला महाप्रबंधक कमलेश कुमार मीणा बतायो कि इन मौके माथे युवा संबल मेलो भी राख्यो गयो। इनरो लखस युवावा ने उद्यमी रे तौर माथे प्रोत्साहित करने और स्वरोजगार खातिर प्रेरित करियो गयो है। झुंझुनू जिले रे कुतुबपुरा गांव माए नाबार्ड और डालमिया सेवा संस्थान री कानीसू आज नॉन वाटर शेड परियोजना रो शुभारंभ हुयो। नाबार्ड रा मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर आर रवि बाबू ग्रामीणा ने बिरखा रे पानी ने भिड़ो करने और खेता माए अजोला और कम पानी री फसलां उगाने रो हेलो करियो। इन मौके माथे वणा खेतर माए बैंकिंग सेवावां रे विस्तार और रोजगार परक प्रशिक्षण योजनावां री शुरुआत री बात भी करी। IRCTC नुओ पर्यटन सर्किट डिवाइन ईस्ट टेंपल टूर शुरू करियो है। इन रे खातिर भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन चलाई जावेली। प्रायोगिक तौर माथे शुरू होने माथे इन 11 दिन री रेल यात्रा रे चालता श्रद्धालुआ और सैलानिया ने उत्तर प्रदेश ओडिशा पश्चिम बंगाल और झारखंड रे खास तीर्थ स्थला माथे जावन रो मौको मिलेला। आ यात्रा दिल्ली माए सफदरगंज रेलवे स्टेशन सु शुरू वेली। रेलगाड़ी माए यात्रियां ने 3-स्टार होटल माए रुकाणो भोजन समेत एसी वाहना माए दर्शनीय स्थल माथे घुमाया जावेला। इनरे खातिर IRCTC रे टूरिज्म पोर्टल माथे या IRCTC पर्यटन कार्यालय माथे बुकिंग कराई जा सके है। अर अब मौसम प्रदेश माए लाडला 24 घंटा रे चालता पूर्वी और पश्चिमी भागा माए कुछ एक जगावा माथे बारिश की गतिविधियां दर्ज करी जी। इनरे चालता दक्षिणी जिला माए भी कई जगावा माथे तेज बिरखा दर्ज हुई। मौसम महकमे रे मुजब झालावाड़ जिला रा अकलेरा माए सबसू बत्ती 5 सेंटीमीटर बिरखा दर्ज हुई। राजधानी जयपुर समेत आसे पासे रे इलाका माए आज बादल छाया रिया और कई जगावा माथे बूंदाबांदी भी। महकमा रे मुजब आवता 2-3 दिना माए बीकानेर जयपुर भरतपुर अजमेर और कोटा संभाग माए प्री मानसूनरी बिरखारी गतिविधियां बण्योड़ी रह सके है। इन बीचे मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश रे कई और भागा माए आगे बढ़ियो है। इन रे अगले हफ्ते ताई मध्य और उत्तरी भारत ताई पहुंचने खातिर परिस्थितियां अनुकूल बण्योड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून ने आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम माए आपरा विचार साझा करेला। ओ मासिक रेडियो कार्यक्रम रो 135वां एपिसोड वेला। कार्यक्रम रो प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन रा सगला चैनला AIR न्यूज री वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप माथे करियो जावेला। साथे ही AIR न्यूज DD न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा यूट्यूब चैनल माथे इनरो सीधो प्रसारण भी वेला। हिंदी प्रसारण रे तुरंत पाछे क्षेत्रीय भाषा मा माए भी कार्यक्रम रो प्रसारण करियो जावेला। और आखिर माए खास खास खबरां आप एक कर फेरू सुनो। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस रे मौके माथे राज्य स्तरीय आयोजन काले जयपुर माए। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी री लॉन्चिंग वेला। गृह मंत्री अमित शाह अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस रे मौके नशे रे खिलाफ एकजुट होर युद्ध छेड़ने रो हेलो करियो। हजरत इमाम हुसैन री शहादत रो प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम रे साथे मनायो जा रियो है। मातम रे बीचे करबला माए ताजिया दफनाया जा रिया है। और प्रदेश माए लाला 24 घंटा माए कुछ एक थोड़ा माथे बिरखारी गतिविधियां जारी। मानसून रे अगले हफ्ता ताई और आगे बदवारी आस है। इन रे साथे ही प्रादेशिक समाचार रो ओ बुलेटिन अठे ही पुरोव्यो माणा। आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।

ग्राम भारती की चौपाल में बैठा सगला किसान बहन भाई ने घनी घनी राम राम। किसान भाइयों देखो, आज कार्यक्रम में सबसे पहले हम करेंगे चर्चा। चर्चा का विषय है अनार की उन्नत उत्पादन तकनीक। साथ ही सुनाएंगे आपको भेंट वार्ता, जिसका विषय है खरीफ में बाजरा का अधिक उत्पादन कैसे लें। वार्ताकार हैं अर्चना बुनकर, सहायक कृषि अधिकारी माधोगढ़ से बातचीत। साथ ही जानकारी की बात में आपके साथ साझा करेंगे स्वचालित ड्रिप सिंचाई अपनाएं। साथ ही देंगे बाजार भाव और उसी के साथ जरूरी जानकारी में खेत बचाओ अभियान के तहत आपको देंगे सूचना। किसान साथियों, सबसे पहले हम कर लेते हैं चर्चा। जैसे कि आपको पता ही है किसान साथियों कि अनार हम सब जगह लगा सकते हैं। इसकी खेती को मुख्य रूप से तापमान, प्रकाश, वर्षा आदि कुछ कारक ऐसे हैं जो प्रभावित करते हैं। वैसे तो अनार का पौधा बहुत कम तापमान से लेकर के और अत्यधिक तापमान तक अपने आप को जीवित रख लेता है। साथ ही ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा का स्तर चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, वहाँ पर भी ये अपने आप को जीवित रखने में सक्षम होता है। तो अब बात आती है कि अगर उन्नत तकनीक से हम कैसे उत्पादन अधिक लें और किस प्रकार से हमारी बागवानी को सफल बनाएं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी जो भूमि है वो कैसी हो। तो किसान साथियों देखो, अनार की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टी में हम सफलतापूर्वक कर सकते हैं, लेकिन इसके सफल उत्पादन के लिए सबसे जरूरी है जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी, क्योंकि यह मिट्टी जीवांश जो पदार्थ होते हैं उनसे प्रचुर मानी जाती है। साथ ही क्षेत्र विशेष के लिए किस्म का चुनाव करते समय उसकी उत्पादन क्षमता, पकाव की अवधि, बाजार मांग, भंडारण क्षमता, कीट एवं बीमारियों से लड़ने की क्षमता आदि बातों का ध्यान रखना भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। साथ ही रोपण करने के लिए नए पौधे खरीदते समय भी हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि पौधा उसी किस्म का तो है जिसकी हमें ज़रूरत है। साथ ही साथ हमें लेते समय ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पौधा स्वस्थ हो और रोग मुक्त हो। अब बात आती है कि कौन कौन से प्रमुख किस्में हैं जो हम लगा सकते हैं। तो कुछ किस्में हैं जैसे जालोर सीडलेस, भगवा सिंदूरी, गणेश, ज्योति, अरक्ता, मृदुला, एपी। इसमें जो हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसलें हैं उसमें भगवा सिंदूरी ये वर्तमान समय में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में ये बोई जाती है। फल का वजन भी लगभग 250 ग्राम से 400 ग्राम तक बहुत आकर्षक और केसरी रंग का चमकदार होता है। इसके बीज गोल आकर्षक लाल रंग के, नरम और मीठे होते हैं और निर्यात के लिए भी ये एक श्रेष्ठ किस्म है। साथ ही गणेश पुष्पन से लेकर फलों की तुड़ाई के लिए 145 से 155 दिनों की इसमें आवश्यकता होती है। इसका बीज भी कोमल, हल्के गुलाबी, रसदार, मीठे और खाने में स्वादिष्ट होते हैं। इसी प्रकार से ज्योति, इसके फल मध्यम आकार के, पीलापन लिए लाल रंग के होते हैं, बीजावरण लाल और बीज भी इसके भी मुलायम होते हैं। इसी प्रकार से आती है अरक्ता और मृदुला। मृदुला ये अच्छी उपज देने वाले संकर किस्म है जो गणेश एवं गुलसा रोज के क्रॉस से तैयार की गई है।

0: इसके फल का औसत वजन करीब 250 से 300 ग्राम होता है। इसके दाने गहरे लाल रंग के होते हैं। एक हमने बताया एबी, इसके फल छोटे या मध्यम आकार के लगभग 250 ग्राम के वजन के और पतले छिलके वाले होते हैं। दाने इसके स्वादिष्ट, मीठे और मुलायम और लाल होते हैं। अब बात आती है कि अच्छी उन्नत और उत्पादन तकनीक में खाद और उर्वरकों का भी हमको ज्ञान होना बहुत जरूरी है किसान साथियों। तो इसके लिए अनार में खाद और उर्वरक साधारणतः फरवरी माह में देते हैं, परंतु खाद और उर्वरक देने का समय ली जाने वाली बाहर पर भी निर्भर करता है। जैसे अंबे बाहर के लिए दिसंबर जनवरी, मृग बाहर के लिए मई जून और हस्त बाहर के लिए सितंबर अक्टूबर माह में खाद और उर्वरक दें तो हम अच्छी उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही साथ अनार के पौधों में सूखा सहन करने की क्षमता होती है, इसलिए अधिकतर शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र में ये उगाया जाता है जहाँ पानी की सीमित मात्रा में उपलब्धता होती है। सिंचाई का सही समय, कई कारक जैसे मृदा का प्रकार, मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, मौसम आदि पर भी निर्भर करता है। साथ ही जल भराव वाले क्षेत्रों में जल निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और आजकल किसान साथियों हम बूंद बूंद सिंचाई पद्धति को भी काफ़ी उपयोग में ले रहे हैं। ये उन क्षेत्रों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है जहाँ पानी की कमी होती है, जहाँ उर्वरता की समस्या होती है। इस विधि को काम में लेने से काफ़ी अधिक मात्रा में पानी की बचत भी होती है, साथ ही साथ फल की उत्पादकता भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से किसान साथियों यदि हम अच्छे भूमि, साथ ही साथ प्रमुख किस्में और समय पर खाद और उर्वरक दे करके और सिंचाई करके हम न केवल उत्पादन बढ़ाएंगे बल्कि हमारी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर पाएंगे। तो किसान साथियों ये तो थी चर्चा, अब हम आपको दे देते हैं एक जानकारी। उससे पहले आपको सुनवाते हैं भेंट वार्ता जिसका शीर्षक है खरीफ में बाजरा का अधिक उत्पादन कैसे लें। वार्ताकार हैं अर्चना बुनकर, सहायक कृषि अधिकारी माधोगढ़। तो किसान साथियों सुनो ये भेंट वार्ता।
1: किसान भाइयों राम राम। तो किसान भाइयों आज हम उपस्थित हैं ग्राम माधोगढ़ में और हमारे साथ हैं अर्चना बुनकर जी जो कृषि पर्यवेक्षक माधोगढ़ पंचायत समिति मालाखेड़ में लगी हुई। आज इनसे जानकारी लेते हैं बाजरे की फसल से ज्यादा उत्पादन कैसे ले। नमस्कार अर्चना जी।
2: नमस्कार राम राम किसान भाइयों। आज अपन बाजरे की फसल पे चर्चा करेंगे क्योंकि इस टाइम जो मौसम चल रहा है अब किसान बरसात का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही बरसात स्टार्ट होगी तो किसान भाई अपने राजस्थान में ज़्यादातर बाजरे की फसल का ही उत्पादन करते हैं।
1: जी अपना जी, जैसे ही अभी आप बता रहे जैसे मौसमी बरसात पहली बरसात होगी उसमें बाजरे की बुआई हो जाएगी, तो क्या कुछ गर्मियों में जो किसान भाइयों ने ग्रीष्मकालीन जुताई की है उसका किस फसल पे कोई ज़्यादा असर रहता है?
2: हाँ, ग्रीष्मकालीन जो जुताई, सबसे पहले तो मैं अगर किसान भाइयों ने मिट्टी जाँच करवाई है तो वो सबसे बेस्ट होता है।
1: मृदा स्वास्थ्य कार्ड जिस किसान भाई ने नहीं बनवाया मिट्टी की जाँच करता है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड अवश्य बनवाने
2: अवश्य बनवाए। मिट्टी की गहरी जुताई से जो ये जड़ों में लगने वाले जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनके लार्वा वगैरह होते हैं वो गहरी जुताई से जो ये तेज धूप पड़ती है उससे नष्ट हो जाते हैं। तो किसान भाई का कहीं ना कहीं इसमें फायदा ही है, हमेशा गहरी जुताई करवानी चाहिए किसान भाइयों को।
1: तो अर्चना जी देखो बाजरे की फसल अपन किसान भाई बहुत ज्यादा उगाते हैं, बहुत प्रमुख उत्पादन के रूप में इसको लेते हैं, तो इसके ज्यादा उत्पादन लेने के लिए किस्मों की अगर बात की जाए तो बढ़िया जो किस्म अपने यहाँ बुआई की जा सकती है उनकी कौन कौन सी किस्में बुआई कर सकते हैं?
2: अपने यहाँ पे देखो बढ़िया किस्में हैं RHB 121, RHB 173 हो गई और जो हाइब्रिड पूसा, जो पूसा संस्थान है एग्रीकल्चर का दिल्ली में 445, ये किस्में बाजरे की फसल के उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी है। इनकी पैदावार 26 से 28 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है
1: जी। और अगर बीज दर की बात की जाए तो प्रति हेक्टेयर कितना बीज दर है और बीज बुआई करते समय क्या बीजोपचार आवश्यक है?
2: बीजोपचार में इसमें जो अपन ये बोलते हैं चेपा, उसके लिए अपने को बीज को नमक के घोल में, जैसे बोने से पूर्व नमक के घोल में उसको डुबो के और सुखा लेना चाहिए। जो बीज होता है, जो कहते हैं हल्का बीज होता है, वो पानी में ऊपर आ जाएगा और जो स्वच्छ बीज होगा वो नीचे बैठ जाएगा, उसको सुखा के अपने को फिर भी बुआई करनी चाहिए।
1: हाँ, वो एक तरह से बीज उपचार हो जाता है। और इसकी बीज दर क्या है प्रति हेक्टेयर?
2: बीज दर है इसकी जैसे अगेती किस्म के लिए तो है, क्योंकि अगेती में क्या है कि अंकुरण कम होता है, उसके लिए 5 से 6 किलो

0: किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और जो सामान्य बुआई के लिए 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है
1: जी। और बुआई करते समय क्या कोई खाद एवं उर्वरक और देसी खाद का इसमें क्या महत्व है?
0: देसी खाद का बहुत ज़्यादा महत्व है क्योंकि आजकल जो बीमारियां चल रही हैं वो केमिकल खाद से बहुत ज़्यादा है, तो देसी खाद, जहाँ तक मेरा मानना है कि किसानों को देसी खाद का ही उपयोग करना चाहिए। प्रति हेक्टेयर इसमें 10 टन के आस एप्रोक्स हमें देसी खाद बुआई से 1 महीने पहले
1: डाल देनी
0: चाहिए।
1: और रासायनिक खादों का
0: रासायनिक खाद का इसमें एनपीके में इसमें है, जैसे संकुल जो अपन संकुल किसमें लेते हैं, जैसे हाइब्रिड में तो हो गया कि 80 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 40 किलो ही पोटास, तो अपने को 2 या 3 मात्रा में देना चाहिए।
1: दो तीन बार में
0: देना चाहिए। एक बारी बुआई के टाइम दे दिया, फिर दूसरी बारी में अपने को टॉप ड्रेसिंग में देना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जो डीएपी होता है और पोटास होता है और वो तो पूरा अपन बुआई के समय देते हैं। यूरिया को 2-3 बार में देते हैं,
0: यूरिया की 2-3 बार में उसकी पूरी मात्रा।
1: हाँ, ये मतलब यूरिया का अगर छिड़काव बरसात होते समय करेंगे तो बढ़वार अच्छी मिलेगी,
0: बढ़वार अच्छी। और एक ये कि ये नहीं है कि भाई यूरिया अपने को देना है, जो अगर मृदा स्वास्थ्य कार्ड है किसान भाइयों के पास तो वो उसके रिकमेंडेशन के आधार पे ही दे। मेरा ये
1: अनावश्यक रूप से रासायनिक खादों का प्रयोग ना करें।
0: इससे क्या है कि किसान भाई के पैसों की भी बर्बादी होती है, दूसरा जो मिट्टी है अपनी वो भी खराब होती है कहीं ना कहीं
1: जी। और अगर बात की जाए इसमें, जैसे ही अपन फसल की बुआई कर दी और बरसात होती रहती है तो इसमें जो खरपतवार है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में उग जाते हैं, तो उसके नियंत्रण के लिए क्या खुरपी द्वारा करें या क्या रासायनिक नियंत्रण भी अपन कर सकते हैं?
0: रासायनिक नियंत्रण भी कर सकते हैं अपन, और जैसे अपन एक सबसे बेस्ट तरीका अपन ने गर्मी की गहरी जुताई कर दी, बाई दे थोड़ी सी भी बरसात है उसमें जो खरपतवार के बीज वगैरह हैं काफ़ी हद तक तो वो उसी में कम हो जाते हैं। उसके बाद भी अगर खरपतवार होते हैं तो अपने एक तो मानव द्वारा यांत्रिक भी उससे कर दी, एक रासायनिक विधि से एट्राजीन का प्रयोग कर सकते हैं। तो एट्राजीन में 50% WC की मात्रा, यानी ये ले लो इसमें 750 ग्राम से 1 किलो 1 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप काम में ले सकते हो।
1: रासायनिक रूप से ज्यादा अगर खरपतवार हो गया हो तो एट्राजीन अपन किसान भाई काम में ले सकते हैं। और इसकी अगर पकाव अवधि की बात की जाए तो कितने समय में
0: पकाव अवधि? देखो इसमें नॉर हाइब्रिड किस्मों के लिए 60 से 65 दिन में इसकी पकाव अवधि तैयार हो जाती है
1: जी। और इसमें क्या कुछ विशेष इसमें सावधानी की जरूरत होती है, जैसे कोई कीट बीमारी इसमें लगती हो तो उनका किस हिसाब से नियंत्रण अपने किसान भाई कर सकते हैं?
0: किसान भाई कीट नियंत्रण लगते हैं जब लगने के बाद अपन उपचार करते हैं तो उसमें पैसों का भी अपने नुकसान होता है, दूसरी बात पैदावार भी कम मिलती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट उपचार है कि बुआई से पहले ही आप बीज उपचार करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर लग जाता है रोग तो इसमें देखो एक तो चेपा लगता है, एक मृदु रोग मिल आसिता रोग लगता है, तो और जैसे टिड्डियों से भी
1: कीटों की बात की जाए तो टिड्डी का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा देगा,
0: बहुत ज़्यादा रहता है, दीमक का भी बहुत ज़्यादा प्रकोप रहता है, तो इसमें आप क्यूनाल फोस और कार्बेंडाजिम उपयोग ले सकते हो
1: जी जी। और इसमें ये जो बीमारी लगे इसके लिए क्या कुछ, जैसे आजकल जो चल रहा है नीम का तेल या
0: नीम का ऑयल? नीम का ऑयल वैसे तो ये अपने जो कृषि विभाग है उसमें सब्सिडी पे ही मिल रहा है किसान भाइयों को, तो वो अपने नज़दीकी कृषि पर्यवेक्षक है जो ग्राम सेवक है आपके ग्राम पंचायत में, उनसे जाके एक बार आप मिलके, और नीम ऑयल सबसे बेस्ट है, उसका कोई साइड इफेक्ट अगर आपने ज़्यादा भी यूज ले लिया तो उसका भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसमें।
1: तो कुछ किस्में ऐसी होती हैं जो रोगरोधी होती हैं
0: इसमें, जैसे RHB 223 हो गई और ये MP MH 17, ये रोगरोधी किस्में हैं।
1: और कुछ जगह जैसे बरसात की कमी होती है तो सूखा रोधी किस्में भी अपने किसान भाई बो सकते हैं
0: इसमें।
1: तो इसका अधिक उत्पादन अपने किसान भाइयों के लिए, इसका सूक्ष्म में अपने किसान भाइयों को थोड़ी सी विशेष जानकारी इसमें दे दें, क्या कुछ करना चाहिए वैसे अपने जो कल्चरल एक्टिविटी है उसमें?
0: कल्चरल एक्टिविटी में तो देखो किसान भाइयों सबसे मेन तो है कि आपको गर्मी की जुताई और एक मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो मिट्टी जाँच है वो आवश्यक रूप से करवानी है
1: जी।
0: क्योंकि उससे यह है कि वो पहले जो यानी एक तरीके से जो अपन बुआई करते हैं उससे पहले का ट्रीटमेंट है, उसके बाद अपने काफ़ी हद तक जैसे आपने मृदा जांच करवाई और आप दे रहे हो उसमें यूरिया दे रहे हो 80 किलो और उसमें रिकमेंडेशन 50 किलो ही आई है, तो 30 किलो अपन एक्स्ट्रा दे रहे हैं उसमें, तो वो पैसा कहीं ना कहीं अपना बचेगा। दूसरा आपने अगर मिट्टी की गहरी जुताई करवाई तो जो कीट वगैरह हैं उनके लार्वे वगैरह वो वहीं ख़त्म हो जाएंगे, अपने दवाइयों में जो पैसा जाता है वो बच जाएगा। दूसरा खरपतवार भी काफ़ी हद तक नियंत्रण होगा तो जो अपना श्रम लगता है खरपतवार हटाने में कहीं ना कहीं वो बच जाएगा, जो अपन केमिकल का प्रयोग करते हैं उसके पैसे बच जाएंगे। तो मोस्ट ऑफली ये है कि जब भी गर्मी की जुताई और मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं किसान भाई।
1: जो अपना किसान भाई है, अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी मौसमी बरसात भी हुई नहीं है, तो अब भी किसान भाई अपनी मृदा की जांच करा सकते हैं।

0: कोर्ट के अनुसार जो उनमें सिफारिश की जाए उसी हिसाब से खाते में उर्वरकों का प्रयोग करें, जिससे अपनी जो लागत भी कम आए और अपनी जो मिट्टी की भौतिक दशा भी सुधरी रहे। इसके अलावा अगर अटना जी बात करें, कई बार क्या होता है खड़ी फसल गिरने की एक डर रहता, तो ऐसी कोई किस्में भी आती हैं जिसमें गिरने का उसमें भय कम रहे?
1: वो देखो, गिरने का भय तो ये है कि जैसे ये किस्म है RHB 121, इसका तना क्या है थोड़ा मोटा होता है, तो इस वजह से इसमें गिरने का। और दूसरी बात, कई बार किसान भाई क्या करते हैं कि बीज की अत्यधिक मात्रा काम में लेते हैं, तो इसका भी एक डिस्टेंस होता है,
0: उचित दूरी पे बुवाई करें, मशीन द्वारा बुवाई करनी चाहिए,
1: द्वारा सीड ड्रिल का प्रयोग करें, छिटकवा विधि बहुत कम काम में ले, क्योंकि उससे पैदावार भी कम होती है, बीज का भी नुकसान होता है अपना,
0: और फसल के गिरने का खतरा
1: भी, फसल के गिरने का भी खतरा होता है, तो सीड ड्रिल का प्रयोग करें जिससे फसल कम से कम गिरेगी।
0: जी अर्चना जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।
2: तो किसान साथियों, ये सुनाई आपको भेंट वार्ता, खरीफ में बाजरा का अधिक उत्पादन कैसे ले। वार्ताकार थे हमारे साथ अर्चना बुनकर, सहायक कृषि अधिकारी माधोगढ़। ये सुनाई हमने भेंट वार्ता, और उम्मीद करें कि भाई आप लोगों को इससे काफी राहत और आप अच्छा उत्पादन भी ले पाएंगे। अब आपको सुनवाते हैं एक जरूरी सूचना। जैसा कि किसान साथियों आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन के वर्तमान दौर में खेत की मिट्टी को स्वस्थ बनाने एवं संतुलित पोषण प्रबंध नितांत जरूरी है। खाद एवं उर्वरकों के संतुलित उपयोग द्वारा उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। स्वस्थ मिट्टी, संरक्षित पानी और जागरूक किसान, यही समृद्ध खेती की पहचान है। कृषकों की रासायनिक खाद पर निर्भरता को कम करने, श्रम के खेत पर निर्मित जैविक आदानों व विधियों को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करने, पारंपरिक एवं उन्नत विधियों के समन्वित उपयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस माह में खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। खेत बचाओ अभियान ये हम किसान भाइयों के लिए अपनी खेती, मिट्टी, पानी और फसलों की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का एक प्रयास है। इसका उद्देश्य खेती की लागत कम करना, उत्पादन बढ़ाना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है। खेत बचाओ अभियान के मुख्य उद्देश्य जागरूकता कार्यक्रमों, खेत प्रदर्शन, किसान संवाद तथा स्थानीय अभियानों के माध्यम से उर्वरकों के विवेकपूर्ण उपयोग, प्राकृतिक खेती तथा अन्य सतत कृषि उपायों के प्रति किसानों एवं नागरिकों में जागरूकता और जनभागीदारी बढ़ाना है। खेत बचाओ अभियान का उद्देश्य क्या है? मिट्टी परीक्षण के आधार पर खाद एवं उर्वरकों का संतुलित एवं समन्वित उपयोग एवं रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करने हेतु किसानों में जागरूकता पैदा करना, वैकल्पिक उर्वरकों एवं संतुलित पोषक प्रबंधन पद्धतियों के उपयोग हेतु व्यापक जन जागरूकता बढ़ाना, जैसे कि यूरिया, DAP के विकल्प के रूप में NPK एवं SSP के उर्वरकों को बढ़ावा देना, साथ ही जैव उर्वरक, नैनो उर्वरक, जैविक खाद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। हरी खाद जैसे ढेंचा और ग्वार चावला के माध्यम से मिट्टी के गुणों में सुधार करते हुए पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाना है। पारंपरिक एवं आधुनिक कृषि पद्धतियों के समन्वय से मृदा स्वास्थ्य संवर्धन एवं जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। साथ ही जागरूकता कार्यक्रमों, प्रशिक्षण एवं फसल प्रदर्शनों के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना जरूरी क्यों है? किसान साथियों, प्राकृतिक खेती की विधियों जैसे जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, पंचगव्य तैयार करना, जैविक खेती की विधियों जैसे उन्नत तरीके से कंपोस्ट खाद बनाना, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद आदि विधियों को प्रोत्साहित करना है। साथ ही जो जनप्रतिनिधि श्रम किसी कार्य से जुड़े हैं, वे अपनी स्वेच्छा से अपनी कम से कम 25% कृषि भूमि पर प्राकृतिक खेती को अपनाकर अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। साथ ही साथ जैव उर्वरकों जैसे राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, PSB,

व अन्य जैव कंसोर्टिया के प्रचलन को प्रोत्साहित करना, साथ ही साथ नीम आधारित कीटनाशकों व अन्य जीव कीटनाशकों का उपयोग करना है। मिट्टी परीक्षण और उसके प्रोत्साहन करना है। गर्मी की गहरी जुताई, समतलीकरण एवं मेड़बंदी तथा इससे होने वाले लाभ की जानकारी के साथ साथ खेत की तैयारी, खड़ी व आड़ी जुताई के विषय में जानकारी देना, प्रत्येक 2-3 वर्ष में मिट्टी की जांच को बढ़ावा देना, साथ ही सोयल हेल्थ कार्ड की सिफारिश के अनुसार खाद एवं उर्वरकों का उपयोग को प्रोत्साहन देना है। डीएपी तथा यूरिया के विकल्प के रूप में 3 बैग एसएसपी प्लस 1 बैग यूरिया, एनपीके उर्वरक, टीएसपी 1 बैग, आधा बैग यूरिया जैसे विकल्पों को प्रोत्साहित किया जाए। जैविक खाद, गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट के प्रचलन को बढ़ावा देना। यूरिया डीएपी की अधिक खपत वाले जिलों में उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं दुरुपयोग को रोकने हेतु प्रवर्तन व्यवस्था को सुदृढ़ करना। जल संरक्षण एवं कुशलतम उपयोग को बढ़ावा देना। इसमें खेत में नेटबंदी, समतलीकरण, खेत में वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देना, फार्म पोन, डिग्गी आदि के माध्यम से वर्षा जल संचयन करना, संचित जल का ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई का उपयोग करना, साथ ही एकीकृत कीट प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देना, जीव कीटनाशकों के उपयोग को प्रोत्साहन, आवश्यकता होने पर ही सिफारिश अनुसार कीटनाशकों के न्यायोचित उपयोग करना, समय समय पर खेत का निरीक्षण कर रोगग्रस्त पौधों को अलग करना, और समन्वित कृषि प्रबंधन और फसल चक्र जिसमें एकल फसल पद्धति की अपेक्षा मिश्रित फसल को बढ़ावा देना, दलहनी और तिलहनी फसलों को फसल चक्र बढ़ाने को प्रोत्साहन करना, साथ ही फसल अवशेषों के प्रबंधन और उनके उपयोग की जानकारी देना, कृषि मशीनरी का सही उपयोग जिसमें आधुनिक कृषि उपकरणों का उपयोग को बढ़ावा देना, मशीनों की नियमित देखभाल करना, कस्टम हायरिंग सेंटर्स के माध्यम से मशीनरी उपयोग के प्रचलन को बढ़ावा देना। इस प्रकार से किसान साथियों ये जानकारी, स्वस्थ मिट्टी, संरक्षित पानी और जागरूक किसान, यही समृद्ध खेती की पहचान, खेत बचाओ अभियान के तहत हम आपके साथ कर रहे थे जानकारी साझा। अब करवा देते हैं आपका मनोरंजन, सुनवा देते हैं आपको एक छोटा सा लोकगीत।

किसान साथियों, ये सुनाया आपको लोकगीत थाने काचलियो बना लू। गायक कलाकार थे सीमा मिश्रा एवं साथियों के, और उम्मीद करें कि भाई आपने भी गीत का काफी मजा लिया होगा। अब आपके साथ साझा करते हैं जानकारी, स्वचालित ड्रिप सिंचाई अपनाएं। किसान साथियों, ड्रिप सिंचाई आज के वर्तमान समय को देखते हुए हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज के समय में वर्षा एवं स्वच्छ जल स्रोतों की उपलब्धता लगातार घटती जा रही है। आने वाले समय में सिंचाई के लिए प्रयोग होने वाले जल की मात्रा अगर इसी तरीके से हम पानी बर्बाद करते रहे तो बहुत ही कम रह जाएगी। इसलिए भविष्य में इस समस्या से बचने के लिए हमें कम जल में अधिक उत्पादन करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमारे किसान साथियों को सिंचाई के पुराने ढर्रों से हटकर स्वचालित ड्रिप सिंचाई पद्धति को अपनाने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। कम मानवीय हस्तक्षेप के साथ साथ स्वचालित तरीके से मृदा, मौसम एवं फसल का अध्ययन कर कम दबाव और नियंत्रण के साथ फसलों की जड़ों के समीप बूंद बूंद कर करके उसकी फसल की आवश्यकता के अनुसार एक समान मात्रा में पानी देना स्वचालित ड्रिप सिंचाई कहलाता है। आज के समय में सिंचाई के लिए उपयोग हो रही गैर अक्षय ऊर्जा और भूमिगत जल की बचत करना स्वचालित ड्रिप सिंचाई पद्धति का मुख्य उद्देश्य है। किसान साथियों, इस तकनीक के माध्यम के अनुसार एक सही समय पर समान जल प्रदान करके जड़ के समीप भूमि की नमी को लगातार बनाए रखना, ये इस स्वचालित ड्रिप सिंचाई का मुख्य उद्देश्य होता है। तो किसान साथियों, यदि हम वर्तमान समय में भविष्य में पानी के घटते हुए और अधिक उत्पादन या उपभोग की जो हम कर रहे हैं उससे बचने के लिए जरूरी है कि हम स्वचालित ड्रिप सिंचाई को काम में लें और अधिक से अधिक हम हमारी खेती को करके उत्पादन ले सके। किसान साथियों, अब हम ले लेते हैं आज के अलवर मंडी के भाव। आज के अलवर मंडी के भाव की हम बात करें तो सबसे पहले गेहूं के आज के भाव रहे 2450 से 2500 रुपए प्रति क्विंटल, जो 2200 से 2400 रुपए प्रति क्विंटल। चना 5200 से 5400 रुपए प्रति क्विंटल। आज के सरसों के भाव रहे 7200 से 7600 रुपए, और ग्वार 4000 से 5000 रुपए प्रति क्विंटल। और बाजरे की हम बात करें तो बाजरा के भाव रहे 1950 से 2000 रुपए प्रति क्विंटल। ये थे किसान साथियों आज के अलवर मंडी के भाव। और अब चलते चलते ले लेते हैं मौसम का हाल। मौसम की हम बात करें तो अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कहीं कहीं बादल छाए रहेंगे, साथ ही कहीं कहीं छिटपुट बरसात होने की संभावना भी बनी हुई है। इस प्रकार से किसान साथियों, ये थी आज के मौसम का हाल। और देखो, मन तो बहुत कर रहा है कि आपसे ऐसे ही बात करते रहें, लेकिन देखो घड़ी की सुई कह रही है कि आप लोगों से ले ले इजाजत। जय जवान, जय किसान।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम भारती। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 7:23 होने ही वाले हैं। लीजिए, बोलते बोलते शाम के 7:23 हो गए हैं। आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत में सुनिएगा ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम की शुरुआत में अभी आप सुन रहे थे फिल्म आए दिन बाहर के फिल्म का गीत। लता मंगेशकर की आवाज थी, आनंद बख्शी का गीत था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आगे बढ़ते हैं, अब सुनना वाते हैं आपको कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है आन मिलो सजना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आप सुनेंगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और आनंद बख्शी का गीत।

0: बरसों बाद ऊंट में निकली हूं। ऐसा लगता है कि वो
1: श्रोताओं, हम आपको सुनवा रहे हैं आंधी फिल्म का गीत। लता मंगेशकर, किशोर कुमार की आवाजों में गुलजार का गीत है, आर डी बर्मन का संगीत।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

कभी कभी ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। शाहिल लुधियानवी का गीत था और संगीत था खयाम का। श्रोताओं, फिल्म संगीत का प्रसारण किया जा रहा है आकाशवाणी अलवर की सरिस्का चैनल से। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है कहो ना प्यार है। उदित नारायण अलका याग्निक की आवाजों में आप ये गीत सुनेंगे।

असली नकली, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी का गीत था और शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म है कल, आज और कल। किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत सुनेंगे, हसरत जयपुरी का गीत और शंकर जयकिशन का संगीत।

आप सुन रहे थे आरजू फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी की आवाज भी हसरत जयपुरी का गीत था और शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम के आखिर में सुनिएगा ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म कन्यादान से। लता मंगेशकर की आवाज है, हसरत जयपुरी का फिर से ये गीत है और शंकर जयकिशन का संगीत।

फिल्म कन्यादान के इस गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम बोल रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:15 हुए हैं, समय हो गया है लोक संगीत का। लोक संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गफरुद्दीन मेवाती के गाई हुई लोक गाथा। आइए सुनते हैं।

0: राजस्थान होते बाघोड़ा के। ए बाघोड़ा कहां, अलवर जिला में। ए कौन बच पढ़ के बिस्मिल्लाह गुरु उस्ताद मनाऊं, मेरा बाघोड़ो बलवन डटल गुणवा का
1: गाऊं।
0: बच बाघोड़ा का नाम सु चले सिंह को रूप, मेरो यटल गांव में चौंडाव तो जामे हुआ सूरमा
1: भूप।
0: ए बाघोड़ा में कौन खुदा बकस बे, खुदा बकस देव के कौन जीवनी
1: देवनी।
0: ओ तो जीवने में जीवने देवने के कौन दो लड़का
1: मछली में खा।
0: एक को नाम भूलत ली रे को नाम देव। ओ कौन खुदा बकस कहा। ओ मंगल सिंह महाराज को राज तपे। ओ किशनगढ़ की चौकी में चौकीदारो करे, जैसे बच्चा दोनों भाई स्याणा होया तो दोनों को नाम लिखवा देवे। कहा किशनगढ़
1: में,
0: किशनगढ़ में स्कूल में जाक रहे, आप नौकरी पे जाक रहे। ए तीनों बाप बेटा सुबह जहाँ शाम को घर को आ जाए। ए जब इनमें थोड़ी सी सूरत समारी ए तो कौन गुजरी देव खान ने दोनों भाई ने कहा बना लिया। ए तीर कमंटा, तीर कमंटा बना ले, तीर कमंटा ने लेके नहीं। ए जंगल में भगा ढोलक रे के दावड़ान में गिरगल टोटलू बटेर। ए उन्हें मारन लग जावे जब सुदीनो बैठ गो। ए कहां पहुंचते दोनों भाई छोड़ के नहीं। ए चौकी में जरना, चौकी में पहुंच के जरना क्या अर्ज करते, कौन तू खुदा बकस में चू क्या।

0: सुनियो ए बोलो कहा बेटा बताओ स्कूल ना गया ए नुके स्कूल ना गया क्यों पढ़ोगा ना नुक ना पढ़ का करे नुक भाई छोड़ पिता भाई मारा हमें गिरगल टोटू हाथ बैठ गो सूत भाई पिता रब को सू करे मगवा देख तू धुन्नाली
1: बिंदु
0: एरा क्या क्या क्या क्या कही क्या कही बेटा क्या कही धुन्नाली बिंदु ए मेरी बात सुनियो भुरचड़ी जब मैं क्या बेटे को समझाता क्या

मिले अकरी, अब सुन घुरकली तो चू।

0: कौन? खुदा बकस में को बाप, बेटा हमारा ये काम नहीं। ए, मैंने दो क्लास पढ़ो, नौकरी लगो बेटा, तुम भी पढ़ जाओ कोई नौकरी
1: लग जाओ।
0: लेकिन समाज को ऐसे उस सबन का बच्चा खेलता कूदता डोले, इनको पढ़ना में मनी
2: ना लगे।
0: ए, जैसे यानी कही तो क्या कह रहे हो कश्मीर ने कही, ए, बेटा इलाज बिराजी बुरी है, चीज मिले अकली तो कहूं बेटा तुकु मैं ले दूंगा। मेरा बस की बिंदु को लाणो
2: ना है।
0: मंगल सिंह को राज है, अब अंग्रेजन को राज तपरो बेटा, हमारी तुम्हें खात्मा है जो हम दुनारी बिंदु खरीद सके। कह लगो
1: बकरी दे दूंगा,
0: सुन के या की बात है बाप की, घोचली बोलो रे बकरी। ए, बकरी तो वही भुतेरी जो तेने पहले लिए राखी है, रोजी न चलावे उन्हें। अच्छा फिर दोनों भाई आपस में झांक लखाया, घुर्जी मेवखा की मैं लखायो, मेवखा घुर्जी के नहीं
2: लखायो,
0: दोनों ने एक लेडल
1: करी।
0: ये बोलो बाप कभी भी दुन्नारी लाके
1: ला दे,
0: चल इशारो कर दे दोनों भाई, क्या जारी मेरी सलाम वाले कत्ते बाप, सलाम वाले करके क्या चलते पड़ते, क्या बात आगे कुछ।

0: रास्ता पर जाकर किशनगढ़ चौक से छोड़ के कहां को रात तो लेते हैं चौड़ा तक गिदाव राम ने के निकल के नहीं कहां जा पहुंचते जहां अपनी बकरीन ने छोड़ के नहीं गया दोनों भाई बकरीन पाके नहीं कहां जा बैठ जाते एक सिल के ऊपर बैठ के जब तेरा भाई समझा जो समझो नहीं पिता घनो मजबूत भाई छोड़ भी रहा तो सू कहूं अभी तुम हाथ दे बिठा ले
1: सूत
0: अभी हाथ है और सूत ऐसी तरह बिठा ले सुदीना है लगा लग जा जब अपना ही बड़बूता पे और कायदे ना पाई दोनों भाई लेके नहीं आवेगा जैसे ये दोनों भाई बैठा कहां
2: सिल्कों पर
0: गिदौड़ा में बकरी चल रही है देख रहा है ने ओ झू तीर कमंटा
1: उठा लिया
0: उतार के तीर कमंटा बड़ा क्या जानना क्या फिर सुनिला चालू दोनों भाई आगे आगे बकरी जा रहे हैं अब तीर कमंटा बड़ा लुकवारी देखी लोहड़ी बकरी का जग सिंह पीटियो घोड़े चिड़ी ने मेव खासू कही खून मेव खाने वाकू पर तान तलाक बकरी को सिंह
1: हटा दो
0: उड़ जाए बकरी भिब्या के धैर्य जैसी जमीन में जाके नहीं
3: गिर जा
0: झुंपड़ी बना पागल का बच्चा बाबू शाम को लड़ेगो बाप पूरा करो बकरी का टुक लग गई सांझ को देखो माई भी लड़ेगी बाबू भी लड़ेगा तेरे भाई कम से कम 2000 को नुकसान
1: कर दियो
0: ये बोला तो सुदीनो तो जब भी बैठोगे जब भी तो बाप के समझ में आएगी छोट सुदीनो लगान लग गए जी बोले लेकिन बात इन बातन में कुछ ना धरो लाला ऐसा कर दोनों भाई जैसे सिर पे बैठा दोनों भाई सिर पे बैठा है कौन जुल्लो कसाई 2500 की और नाती बछरान में कोसी में बेच के नहीं चलो
1: आओ
0: और ये दोनों भाई फोन बैठा
2: सिलन पे बैठा
0: सिर पे घाटी के मुंह बेटा जैसे ही चलो आरो लग धक लका धक लका धक लका धक या के निघा पर जाए कौन के घुटड़ी के ये इनमें एक होशियार मेव खाते सूदो करा लुके कोई चिड़िया उड़ी
2: अरे
0: ए लगत आन दे पिए तान दे जब बात कर ली ए जैसे इनके पिए आयो पास आते ही साथ में अनके ना कौन नुगा चार चाउंडी को जुल्ला कसाई कहा स्वर नुगा तुरंत पर लुगो यो बाड़क लुन ए तेल तमाकू दाल दरू लेके नहीं आयो ए झूठ बोल दिए कौन सु गुटड़ी सु गुटड़ी बोला रे मेव का देख रे का कह रो ई करो बस सही कह रो मगर बात देख रे याने देखे तो पीछे को नाटी बध्यान का जेवड़ा बंधा पड़ा नुक देख ले पागल को बच्चे इनु करो बालकन को तेल तमाकू नून मिर्च लेके नहीं आयो ए सही सही बता दे ये बोलो रानुक भाई मार चाहो छोड़ो कोशिश नाटी बछवान में बेच के नहीं
1: आरो।
0: चारो। जैसे याने कोशिश नाटी बछवान की कहीं बेचना की ए याने तो पता कितने पैसा है नहीं सुना अब खत्म जादना याने क्या काम करो खोल के देखे याने बोलो भाई मुपे तो 2500 रुपया कुल 2500 रुपया याने लिया रो याने तड़ाको खायो कौन ने कसाई ने ये बोलो रे भाई ऐसा मत करो मेरा बच्चा दृढ़क का खाके मर जाएगा मैं कहां से उनको दान कर लिया
2: खवाए दो
0: खवाऊंगो जैसे या नहीं कही ये बोला ना क्या पागल होगा पागल के बच्चों को 8वें दिन अपना नहीं आई सिल के नीचे सु लेके नहीं
1: चलो जाओ
0: जादना ये तो उधार के खातर ले रहा जैसे या न्यासू कही ये तो चल तो पड़ जा छोड़ के नहीं दोनों भाई पलट पर मैं आके नहीं गोश रोटी खा के नहीं जाना होटल पे क्या मतलब बनाते हैं क्या बात आगे

0: आऊं अपनों में बता चलो हूं नाम अरे प्रेम मत ढूंढियो मेरो बाघोड़ो
1: बड़वन
0: चल नाम कह करके ओ दोनों भाई छोड़ के डंडा 18 गज का डंडा पे सु महादेव सुमर के डंकार मार जा दूर जाके नी अरे ए उतर के कहां पहुंचते हैं स्टेशन पे जब स्टेशन पे पहुंच जाए छोड़ के नहीं अलवर की लेने क्या जाना भक्तपुर की लेन को बैठते दोनों भाई क्या?

0: वो भरतपुर की लाइन पे पहुंच जाए। जैसे दोनों भाई भरतपुर में जाके उतरा, कर्षण वाला कर्षण वालों जब ही पिछाण ले वे देख के लिए जो डके दौड़ा आदमी है सोई पत्तिन के पास आयो। रे भाई कौनो खा रहे हो रे भाया? ये बोले भाई जब से पूछो हाँ नहीं भाई मेरा नाम घुसड़िया को नाम बेव खान दोनों भाई अलवर का रहेंगे। तो कहाँ जा रहा हूँ भाई? हम तो अभी चला वासुआ रहा है लाहौर। अच्छा रानू के देख एक बात सुन, सोना ही सोना को जेवर है कौन पे? ओ एक अप्सरनी कहाँ कुम्हेर में और तंबू में मैं देख का कम से कम 1.5 किलो सोनो। अच्छा देखे एक घंटा एक को काम है। ओ थोड़ी देर में और टहल मिट जाएगी। घंटा एक को कसा लो प्यारो। ये बोला दोनों भाई यार सहज में कुम्हेर की गैल भी जावे हूँ कहीं चलता चल निकल चलंगा या काम है करता
1: चलेंगा।
0: दोनों भाई तीसरा कौन और मुखबर सहज में और हमारो काम हो जाएगा। तीनों का तीनों छोड़ के भरतपुर की स्टेशन है क्या पैदल पैदल चलते पड़ते कुम्हेर के लिए। क्या कुम्हेर में आके नहीं पहुंचते? कुम्हेर में आकर के देखे तो तंबू लगा हुए पील सूत मेज के ऊपर। भोचली बोलो कौन बने गया में

0: मैं को बोलो तू चलो जा, मैं को बोलो मैं तो बाहर खड़ा हूँ पूछवाल पक्कू ए भीतर तू ही
1: जाएगा
0: पांव को कुछ सच्चो है ए कौन को हुक्म देते घुसड़ी को घुसड़ी अंदर बन जा तनी काट के नहीं ए काई के तंबू की तंबू पर पलट दे भीतर बढ़ के देखे मेज के ऊपर 70 रुपया एक तलवार
2: रख रही है
0: तलवार के आमाजना की 70 घड़ी बना दे छोटी सी वजह जेब में
1: घर ले मैं
0: चल परे फटकारो मारे भाई तलवार बन के खड़ी
1: हो जावे
0: के चाहिए बाहर लिखो कौन घोटली अरे मेरे का पागल का बच्चा याने सहज में वैसे रात खराब कर दी याने झूठ बोले ही सोना चांदी को कोई माल बस मेज पे साहब लोटो पड़ो है मिलन पे खाली 70 रुपया एक तलवार ये बोलो रात वैसे ही खराब हो रही है ऐसा काम कर जो है वाई मेकेनी मेकेनी वाह जानना ओ जेब में धर के नहीं 70 रुपया तलवार बाहर निकल खा जाए बाहर निकल के 10 रुपया यादू पकड़ा दे कौन को चुस्त जैन यादू मुखबर को ओ दोनों भाई हूँ तो चलता पड़ गया जानना रातू रात में चल के क्या काला पहाड़ में के निकल के

0: श्रोताओं, लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गफरुद्दीन की गाई हुई लोक गाथा। लोक गाथा थी गुड़छड़ी। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है, FM बैंड 103.1 MHz पर।
1: जब जब आप करेंगे हमें याद, हम मिलेंगे आपको अपने ही पास। अगर आप हैं दुनिया के किसी भी कोने में और सुनना चाहते हैं आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल, तो आप हमें सुन सकते हैं कभी भी कहीं भी। हमें सुनने के लिए आप जाइए अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर पर, वहां से कीजिए डाउनलोड न्यूज ऑन AIR ऐप।
0: श्री आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है, FM बैंड 103.1 MHz पर। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, तत्पश्चात रात्रि 9 बजे आप सुनेंगे समाचार अंग्रेजी में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार।

0: मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपए है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज्ड कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, इस सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1 करोड़ 18 लाख किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से

अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकीन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकीन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देशभर में आशूराए मोहर्रम

0: एसआईटी का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकीन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकीन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदांबी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया, तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह लॉन्चेस 3-year विजन डॉक्यूमेंट for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. Center to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximize benefits of India-UK trade agreement. Death toll in Venezuela earthquakes rises to 589.

0: मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी और मुबारक बेगम की आवाज़ों में वो नगमा जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीत है शंकर जयकिशन का, फिल्म का नाम है हमराही।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए लता मंगेशकर।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी मन्नाडे और साथियों की आवाज़ों में। नगमा निगार हैं साहिर लुधियानवी, तर्ज है रोशन की, फिल्म का नाम है बहू बेगम।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को। बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर कर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: जिंदगी को गले लगाने की ये पुकार गुलजार साहब के लिखे एक गाने की है जो फिल्म सदमा से है, लेकिन यहाँ बातें गुलजार के बारे में नहीं, यहाँ बातें फिल्म सदमा के बारे में भी नहीं, बल्कि यहाँ बातें एक संगीतकार के बारे में जिसके नाम में आता है राजा।
1: आया है राजा, लोगो रे लोगो, राजा के

वो सही मायने में फिल्म म्यूजिक के राजा हैं। 1000 से ज्यादा फिल्मों में संगीत, 8500 से ज्यादा गाने और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक लंबी कतार जो सम्मान से उनके आगे सिर झुकाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे संगीतकार की बातें जो न केवल एक म्यूजिक कंपोजर है बल्कि एक गीतकार है, एक ऑर्केस्ट्रेटर है, एक म्यूजिक कंडक्टर है और है एक म्यूजिक मैस्ट्रो जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आज बातें इलैया राजा की।

इलैया राजा का जन्म 3 जून 1943 को हुआ था। मदुरई तमिलनाडु में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है थेनी, इसके पन्नियापुरम नामक गांव में जन्मा था एक बालक। नाम रखा गया आर ज्ञान थेसिकन। हालांकि जब इलैया राजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की तो उनके पिता रामासामी ने ज्ञान थेसिकन से बदलकर उनका नाम रख दिया राजैया। ये इसलिए क्योंकि गांव भर में इलैया एक बालक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और पूरे गांव के लोग उन्हें रासैया कहा करते थे। 14 की उम्र में इलैया राजा अपने बड़े भाई पावलार वरदराजन की एक संगीत टोली में शामिल हो गए। ये संगीत टोली गांव-गांव शहर-शहर घूमती और अपनी संगीत प्रस्तुतियां करती। यही वो संगीत यात्रा थी जहां इलैया राजा ने सबसे पहले कोई धुन बनाई और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया।

जिंदगी की राहें बदली 1968 में इलैयाराजा अपने गांव से चले आए मद्रास, यानी आज का चेन्नई शहर। मकसद था संगीत सीखना। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन के एग्जाम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। क्लासिकल गिटार का एग्जाम उन्होंने दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। मद्रास में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा संघर्ष इलैयाराजा को करना पड़ा। उस दौरान दोनों भाइयों ने मिलकर कभी किसी नाटक में संगीत दे दिया, कभी मंच पर परफॉर्म करने लगे, कभी चर्च में कॉयर म्यूजिक में हिस्सेदारी कर ली, तो कभी कोई अलग अलग तरह के मशहूर हस्तियों के कार्यक्रमों में फिलर के रूप में इस्तेमाल हो गए। लेकिन आंखों में थे सुनहरे ख्वाब और संघर्ष का मादा था दिल में, तो डटे रहे। और इस तरह से इलैयाराजा की जगह बन गई जी के वेंकटेश की संगीत टोली में। यहां से इलैयाराजा के सीखने की और लगातार आगे बढ़ने की यात्रा शुरू हुई।

आगे चलकर इलैया राजा ने धनराज मास्टर नामक एक संगीतकार का शागिर्द बनना कबूल किया। यहाँ वो उनसे संगीत की बारीकियां सीखते रहे और यही वो हस्ती थी जिन्होंने इलैया राजा के नाम में आगे राजा जोड़ा। सन 1976 में फिल्म अन्नकिली में संगीत देने का मौका आया और इत्तेफाकन इलैया राजा बन गए संगीतकार। 1976 में अन्नकिली नामक फिल्म में जब उन्होंने संगीत दिया तो इस फिल्म का संगीत अचानक इतना लोकप्रिय हुआ कि तमिल सिनेमा में जैसे तूफान आ गया। इलैया राजा ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की। सुनने वाले चकित रह गए कि ऐसे भी गाने बनाए जा सकते हैं। अचानक इलैया राजा की गिनती एक प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के रूप में होने लगी। इलैया राजा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जहां एक तरफ उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत की बारीकियों को अपने फिल्मी संगीत में अपनाया और एक अलग तरह का जादुई फ्यूजन तैयार किया।

बहरहाल अभी उनकी कुछ फिल्मों की बातें करते हैं। सन 1978 में उनकी फिल्म आई कज़ू हंदई, सन 1980 में आई मुडुपानी, इसी साल आई निजलगल, 1981 में नेत्रिकन नामक फिल्म आई और इसी बरस आई निजिन थई किलन थे, 1982 में कोजू कुवुथु नामक फिल्म आई। चूंकि मेरा ताल्लुक दक्षिण भारत की भाषाओं से नहीं है, इसलिए अगर उच्चारण संबंधी कोई दोष होता है तो हम दक्षिण भारत के श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। इलैयाराजा की जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनमें शामिल है 1987 में आई फिल्म नायकन, जो उनकी 400वीं फिल्म थी, 1990 में आई फिल्म अंजलि। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि वो इलैयाराजा की 500वीं फिल्म थी। अब हिंदी फिल्मों की बात करें तो इलैयाराजा का हिंदी फिल्मों में आगमन हुआ कमल हासन के अभिनय वाली फिल्म सदमा के जरिए, जिसके निर्देशक थे बालू महेंद्र। असल में ये फिल्म बालू महेंद्रू की तमिल फिल्म मुंदरम पिरई का हिंदी रीमेक थी।

0: सदमा की रिलीज के 4 बरस बाद इलैयाराजा ने जिस फिल्म में संगीत दिया उसका नाम था कामाग्नि। उसके बाद राज सिप्पी की फिल्म महादेव में उन्हें संगीत देने का मौका मिला। सन 1996 में बालू महेंद्रू की फिल्म और एक प्रेम कहानी में उन्होंने संगीत दिया। वैसे आपको बता दें कि इलैयाराजा ने रामगोपाल वर्मा की फिल्म शिवा के हिंदी संस्करण में भी संगीत दिया है और कमल हासन की फिल्म हे राम में भी उनका संगीत है। एक और हिंदी फिल्म है उनके संगीत से सजी हुई जिसका नाम है मुंबई एक्सप्रेस।
1: बंदर की डुगडुगी है, क्या शोर से बजी है।

साल 2007 में जब आर बाल्की ने फिल्म चीनी कम बनाई तो उसके लिए संगीतकार के तौर पर उन्होंने चुना इलैया राजा को, और यहां से आर बाल्की और इलैया राजा का एसोसिएशन शुरू होता है।

आपको बता दें कि साल 2015 में जब इलैया राजा ने अपनी 1000वीं फिल्म में संगीत दिया तो जाने माने संगीतकार A.R. रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मेस्ट्रो इलैया राजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा देते रहिए।

चूंकि इलैयाराजा के संगीत की बातें हो रही हैं और बातें हिंदी फिल्मों की भी हो रही हैं, तो आपको बता दें कि आशा भोसले से इलैयाराजा ने कुल 53 गाने गवाए विभिन्न भाषाओं में, और लता मंगेशकर से केवल 2 गाने उन्होंने

इलैयाराजा के जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, और वो ये कि जब इलैयाराजा अपना संगीत सीख रहे थे तब उनके ऊपर जर्मनी के क्लासिक संगीतकार बाख की शैली का बहुत गहरा असर पड़ा था। आगे चलकर इलैयाराजा ने अपना पहला फ्यूजन एल्बम बनाया हाउ टू नेम इट। इसके बाद उनका एक और एल्बम आया है जो वेस्टर्न क्लासिकल फ्यूजन एल्बम है और इसका नाम है नथिंग बट विंड।

यहाँ आपको इलैयाराजा के कुछ आध्यात्मिक एल्बम्स के बारे में भी बता दें। इस तरह का काम भी इलैयाराजा ने बहुत सारा किया है। गीतांजलि, राजविन, रामन्ना मलाई, इलैयाराजविन, ये सब ऐसे एल्बम हैं जिनमें आध्यात्मिकता का रस है। इलैयाराजा का संगीत का ये सफर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने कोने में इलैयाराजा के प्रशंसक मौजूद हैं। अगर हम ये कहें कि इलैयाराजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड हैं। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगमम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्र वीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त है इलैयाराजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पुरस्कार जब इलैयाराजा को मिलते हैं तो पुरस्कार सम्मानित होते हैं।

0: पैलेस।
1: चूंकि इलैयाराजा तमिलनाडु के एक ग्रामीण इलाके में पले बढ़े, इसलिए तमिल लोक संगीत जैसे उनकी रगों में बहता है। संगीत सीखते समय उन पर जो असर पड़ा वो पड़ा बाख, हाइडन, मोजार्ट और बीथोवेन का, इसलिए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी उनकी रगों में बहता है। और इसीलिए तमाम तरह की संगीत

इलिया राजा के निजी जीवन के बारे में आपको थोड़ी जानकारियां दे दें। इलिया राजा का विवाह जीवा से हुआ, जिनसे उनकी 3 संतानें हैं, कार्तिक राजा, भावथरिनी और युवान शंकर राजा। इलिया राजा के ये 3 बच्चे फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलिया राजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है, और चाहे वो कॉन्सर्ट्स में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते रहें, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलिया राजा ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहाँ तक कि अपने भाई को भी, इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलिया राजा का कहना है कि यह हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है, और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है। इलिया राजा ने अब तक 1523 फिल्मों में 8600 गाने बनाए हैं। तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। पूरी दुनिया में इलिया राजा 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहाँ इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना था। इस फिल्म का संगीत इलैयाराजा का है और इसके गानों से लोगों को बड़ा प्यार है।

अब आपको बताते हैं मणिरत्नम और एलिया राजा के लंबे साथ के बारे में। सन 1983 में एलिया राजा ने सबसे पहले मणिरत्नम की किसी फिल्म में संगीत दिया, वो थी पल्लवी अनु पल्लवी। ये एक कन्नड़ फिल्म थी। ये वो दौर था जब फिल्मकार मणिरत्नम सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1984 में मोहन लाल के अभिनय वाली उनारू में संगीत दिया इलैया राजा ने। निर्देशन मणिरत्नम का था और ये मणिरत्नम की दूसरी फिल्म थी। सन 1985 इलैया राजा ने तमिल फिल्म पागल नीलवु में संगीत दिया। ये वो फिल्म है जिसके जरिए मणिरत्नम ने तमिल सिनेमा में अपना कदम रखा था। 1985 में आई इदया कोविल, 1986 में आई मौन रागम, 1987 में नायकन आई जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, 1988 में आई अग्नि नटचित्रम, 1989 में आई गीतांजलि, 1990 में अंजलि आई और इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सन 1991 में इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार में भी भेजा गया था। इलैयाराजा और मणिरत्नम का साथ सन 1991 में आई फिल्म थलपथी जो महाभारत के एक किरदार से प्रेरित थी।

जुलाई 1993 में इलैयाराजा ने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अपने सबसे बड़े और पहले काम को रिकॉर्ड किया था। इसे उन्होंने सिम्फनी नंबर 1 का नाम दिया था और इसे रिकॉर्ड किया गया था लंदन के प्रसिद्ध रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जाने माने कंडक्टर जॉन स्कॉट की निगरानी में। आपको बता दें कि रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा दुनिया के सबसे उत्कृष्ट पश्चिमी संगीत से जुड़े ऑर्केस्ट्रा में शामिल

सन 2012 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इलैयाराजा को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। सन 2010 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इलैयाराजा की उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सन 2012 के समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में इलैयाराजा की फिल्म राम लक्ष्मण का एक गाना बजाया गया था। सही मायनों में इलैयाराजा एक लिविंग लेजेंड हैं। अपने काम के प्रति उनका जुनून, उनका समर्पण लाजवाब है। 9 भाषाओं में इतनी बड़ी तादाद में फिल्में करना और लगातार सक्रिय रहना और उत्कृष्ट काम करना उन्हें महान बनाता है।

0: संगीतकार इलियाराजा का संगीत संसार लेकर आया था आज के फनकार। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

इसमें जीत कर भी हार है और हारने वाले की भी जीत। इसकी है ऐसी रीत कि न यहाँ होता है मूल भाव न कोई नापतौल। जनाब ये है दिल का शहर, यहाँ बदलते हैं मौसम हर पहर। धूप में खिलती है चांदनी और रात में बरसते हैं शोले। जैसा जैसा दिल कहे बस कुछ वैसा ही मौसम होले।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। दिल का सौदा है एक ऐसा सौदा जहाँ जो खोए वो पाता है और जो पाता है वो खोता भी है।

खोजती हैं ये नजरें जिसे दिल के बाजार में वो दिल जाने कहाँ गुम है। ढूंढूं कहाँ उसे, ये सितारे भी गुमसुम हैं। जलते हैं अरमानों के दिए, उम्मीदों की रोशनी में ही कहीं मिल जाओ तो क्या बात हो। दिन रात का ये सफर मिट जाए जो हाथों में तेरा हाथ हो। है दिल को बहारों का अरमान तेरे संग, मैं तुझसी बन जाऊं, रंग जाऊं तेरे रंग।

हार जीत का ये दुनियावी तिलिस्म हमें समझ न आया है, हमने तो खोकर दिल को अपने तुझे दिल के करीब पाया है। इस सौदे में लगा हमारा सब कुछ, पर कुछ भी ना गंवाया है। जितना दिया पास से अपने, लाखों गुना वापस आया है। एक ओर दिल का सौदा हुआ खरा, और दूसरी ओर निगाहों ने भी ठंडक पाई है। तेरे साथ जीवन की हर तन्हाई भी शहनाई है।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। दिल की सौदेबाजी में हमने पाया प्यार का रंग, दुनिया के भीड़ में मिला है एक हम कदम। तू मिल ही गया तो क्यों ना तय करें ये सफर अब साथ में ही, हाथों में हाथ थामे मिला लें कदम से कदम। कभी कलियां खिलें तो कभी गलियां मिलें, साथ है तेरा तो मुझे है अब क्या गम। देख ले साथी दिल की सौदेबाजी में, संभाल लेना जो जरा भी लड़खड़ाए हम।

0: ये पहली मुलाकातें, ये प्यार भरी बातें,
1: मिल गए दुनिया में दिन के सहारे सहारे।
2: इस दिल का क्या भरोसा, तेरा होकर भी तुझसे ही शर्माता है। कहते कहते अपनी कोई बात खुद ही चुप हो जाता है। कभी लगता है जैसे बरसों से हो तुम राजदार इसके, और अगले ही पल न जाने क्यों अपनी बातें तुमसे ही छुपाता है। छेड़ता है रागिनी कोई और झूम झूम जाता है, पाकर तुझे खोता है और खोकर तुझे पाता है। हर रोज तेरी एक नई झलक ही पाता है।

जिंदगी के सफर में चल रहे थे तन्हा ही हम, तुम मिले तो बदले मायने सफर के। इस साथ का दिल पे हुआ है असर ये कि अब तन्हाइयों में भी होती है तुमसे ही बातें, याद आती हैं वो मुलाकातें। जब फूलों की चादर पर चले थे हम साथ, यादों में ही थामती हूँ अब तेरा हाथ। तो हकीकत बनकर सामने नजर आते हो तुम, मेरे अफसानों को रंग जाते हो तुम।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

0: कहिए
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
0: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
0: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजे हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

कारिता राज्य मंत्री बी एल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने

0: उत्तरी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकार